0: लोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
2: You're listening to Avineet.
3: Kia ora, bula, salam, namaste, sasriyakal, namaskaram, kem cho, main hu Avi, aapke saath main ho gaya hu on the airwaves of hum, aaj jabki hai Sunday, 13th of September, lekar aaya hu aapke liye just chill mein aapke liye alag alag tarah ke gaane ke selections hote hain, iske alawa dher sari baatein bhi hoti hain aapke saath mein, and in between aapke saath mein kuch competitions bhi khel lete hain, aur iske saath mein Bollywood ka bhi sair lagate hain, weekend mein jitne bhi sporting एक्टिविटीज़ हुई हैं उस पर भी एक झलक आपके साथ में देख लेते हैं, और इसके अलावा वीक भर की जो सुर्खियां थी, जो न्यूज़ थी, उस पर भी एक दोबारा कोशिश करते हैं एक बार रिकैप कर ले। ये सभी कुछ आपके साथ में होगा आज एक बार फिर, और अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आप हमें सुन रहे हैं रोवा पर, साथ में 104.2 FM पर। इसी तरह से साथ देते रहिए, और जो हमारे मैजिक नंबर्स हैं 5599 और साथ में 0800 004866 पर आप हमें टेक्स्ट या कॉल भी कर सकते हैं, जिसका हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो अभी से लेकर 6 तक ये कारवा आपके साथ में चलता रहेगा। आप रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप यू आर हेडिंग आउट टू वर्क, काम पर जा रहे हैं, या फिर घर बैठे बैठे आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, या फिर घर पर काम भी हो रहा है और उसके साथ में आप हम के साथ में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर देट। इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। बस इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं KK और वसुंधरा दास की आवाज़ में, एंड आज के जो गाने हैं ना, ये बिल्कुल कुछ हटके रहेंगे आपके लिए।

हाँ पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल संडे 13th of September और 6 तक ये कारवा सिलसिला आपके साथ में चलता रहेगा और मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। गुड आफ्टरनून लिखा है क्वीन ने, थैंक यू सो मच, आपको भी गुड आफ्टरनून, बस साथ देते रहिएगा हम पर। और एक और एक प्यारा सा मैसेज आया है, एक बर्थडे मैसेज, जबकि प्यारी सी परी है परीशा निधि कृष्णा और आपका आज जन्मदिन है, यू आर सेलिब्रेटिंग योर 9th बर्थडे टुडे और आपके बर्थडे मैसेज को पढ़ते हुए ये अंदाजा लग रहा है कि आपके मम और डैड आपको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज है ना पूरे के पूरे हार्ट इमोजी से भरे हुए हैं और देखकर ही अंदाजा लग रहा है दे अडोर यू सो मच। तो आपका आज जन्मदिन है, ऐसे मौके पर आपको ढेर सारी बधाइयां दिया जा रहा है और आपके मम है, साथ में डैड है रंजीता और निखिल, साथ में बेबी ब्रदर है रिशान, अव्वा तातू है, अरुणा एंड प्रेम कृष्णा, नाना नानी रवेन और सावित्री है, ऑल द वे फ्रॉम लंबासा फीजी द फ्रेंडली नॉर्थ। और इसके साथ में आपको ढेर सारा प्यार दिया जा रहा है। दो लाइन्स है जो मैं एग्जैक्टली एज इज पढ़ने वाला हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपके मम या डैड ने क्या लिखा है आपके लिए। टुडे वी सेलिब्रेट द वंडरफुल गर्ल यू आर एंड द ब्यूटिफुल यंग लेडी यू आर बिकमिंग। और इसके साथ में ये भी लिखा है, मम एंड डैड आर सो प्राउड ऑफ यू एंड विश यू अ lifetime filled with happiness, love, laughter and success. May all your dreams come true. Happy 9th birthday, sweetheart. We love you so much. तो इतना प्यारा सा मैसेज हमारे पास में आया है आपके लिए परीशा। Have a wonderful day. आप अपना जन्मदिन बिल्कुल मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करें and keep smiling always forever. हम की पूरी टीम की ओर से once again happy birthday परीशा। आपका भी जन्मदिन है आज 13th of September. आप भी कुछ स्पेशल मार्क कर रहे हैं तो 5599 पर अपने जो मैसेज है हमारे पास में आप भेज सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती है।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: An award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: 3, 2, 1, rush!
6: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
7: Go deal hunting this weekend at Briscoe's and bring home the savings with price-winning deals and incredible savings store-wide on the best brands for every room of the house. Briscoe's is the place. Saving is the promise till Sunday. See online for T's and C's.
8: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
9: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
10: सबसे बड़े हिट गाने
11: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग जोग
12: हम पर आप सुन रहे हैं जस्ट चिल विद अवी और एक झलक मौसम पर भी देख लेते हैं और आज के लिए बताया जाता है मेट सेविस द्वारा खासकर ओकलैंड सीबीडी के लिए ओकलैंड शहर के लिए सुपर सिटी के लिए क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे विद आइसोलेटेड शावर्स साथ में मेनली इन द वेस्ट ऑफ ओकलैंड तो जितने भी वेस्ट ओकलैंडर्स हैं आपके लिए शायद बारिश होने के भी चांसेस हैं और इसके साथ में कुछ गस्ट रहेंगे इन ईजिंग इन द इवनिंग यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग विंड ब्रीजेस भी आप महसूस करोगे लेकिन ये इवनिंग होते होते ईज आउट हो जाएंगी सनसेट है आज 6:11 पर और जो मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट है एटलीस्ट डबल डिजिट्स में है 11 डिग्रीज तक आप जो टेम्परेचर है ये फील करोगे इसके साथ में अगर जो नेशनली देखें तो काफ़ी शहरों में आज ऐसा ही वेदर फोरकास्ट किया गया है कि क्लाउड्स एंड विथ अ बिट ऑफ सनशाइन इन बिटवीन तो साउथ आइलैंड में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है इसके साथ में नॉर्थ आइलैंड के काफ़ी टाउन्स और शहरों में भी ऐसा ही कुछ माहौल या समा रहेगा तो ये सभी कुछ हमारे साथ में ताकि आप अपने डे को भी अच्छी तरह से प्लान कर सके कमिंग अप नेक्स्ट आर कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ये जो नंबर है काफ़ी फेमस हुआ था रिलीज़ होने पर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो ये गाना बहुत चला था आप भी इसे सुनकर ज़रूर यादों की दुनिया में पहुंच जाएंगे

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूं और आज सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है और कुछ लोग मुझे बताते हैं कि इट्स सपोज टू ब्रिंग यू गुड लक लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है एंड बंद भी नहीं हो रही है फड़कती ही जा रही है तो अगर जो आपके साथ में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि कुछ दाई आंख आपकी फड़की है और आपको एक गुड न्यूज़ मिला हो सुनने को तो इसके बारे में शेयर कीजिएगा हमारे साथ में 0800004866 पर आप कॉल करके बातें भी कर सकते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस को 5599 पर भेज भी सकते हैं या फिर ये भी बता दीजिए कि ये फड़कना बंद कैसे करें क्योंकि इट जस्ट कीप्स गोइंग ऑन जैसे कोई गाड़ी की इंडिकेटर चलाकर छोड़ दे उसको टर्न ऑफ करना भूल जाए बस उसी तरह से ये इंडिकेटर चल रही है।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower dome.
2: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
3: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
4: हैवान इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
5: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
4: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
6: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
5: ये आखिरी है।
4: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: Just chill.
10: That's right, ये है Just Chill आपके साथ में आपके फेवरेट डाल हम पर playing Bollywood's biggest hits. हमारे पास में मैसेज किया है, एक प्यारा से मैसेज आया है, listening to beautiful show and nice songs RJ Avi, thank you so much. 132 आपने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, और इसी तरह से आपको भी कुछ सुनना है अलग, कुछ स्पेशल आपको सुनना है तो सेंड इन योर डेडिकेशंस एंड रिक्वेस्ट ऑन 5599. 10 मिनट बाकी है एक बजने में, एक के बाद में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ और भी आपके साथ में रहेगा, बिल्कुल इंटरेक्टिव.

0: furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezaar kis baat ka? Aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye. Shan Foods, asli swaad har ghar ke liye.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और समय की ओर देखते हैं तो ठीक एक बज रहे हैं. ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे पास में तिपुकी से हरमिंदर ने कॉल किया है किया था और एक गाने की रिक्वेस्ट की है, तो आपके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस गाने को बजाए. और आपके पास में भी कोई रिक्वेस्ट है तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजें या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं. लेकिन अभी के लिए मैंने एक 90s का जो गाना है ये ढूंढ कर रखा है अपने सिस्टम पर, और इसको बजाने से पहले आपके साथ में एक खेल खेलने की कोशिश करूंगा. आपको अगर जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और अगर जो आप काफ़ी रुचि रखते हो गाने में और सॉन्ग्स को सुनने में, तो आपके लिए जो अंतरा होता है ना, जो गाने की बीच की लाइन होती है, जो मेन लाइन नहीं होती है, वो सुनवाने जा रहा हूँ. इसे ध्यान से सुनिएगा और 5599 पर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये गाना जो है किस गाने की लाइन है. अपने समय की बहुत ही फेमस एक फिल्म थी, या यूँ कहें फेमस गाने की थी ये लाइन, और इसको उदित नारायण ने गाया है और साथ में विवेक मुशरान और पूजा भट्ट पर ये पिक्चराइज हुआ था. सो हियर इट गोज, सुनिए इसे और बताइए, अंदाज़ा लगाइए कि आपको क्या लगता है कि गाना कौन सा है. हाँ, तो बस इतना ही आपको सुनवाएंगे और आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसका जो मेन लाइन है, ये गाना शुरू कैसे होती है. बस यही आपको भेजना है हमारे पास में 5599 पर. काफ़ी 90s में फेमस हुआ था ये गाना. बस यही सुनकर आपको 5599 पर अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजना है. और नेक्स्ट आवर पर दो पर आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज भी रहेगा हमारे साथ में.

अभी तक सिर्फ शिखा को ही पता लगा है कि कौन सा गाना है और उसने अपना जवाब भेज दिया हमारे पास में। थैंक यू सो मच। तो चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं और सुनते ही आपको अंदाजा लगाना होगा कि इस गाने की जो मेन लाइन है मुखड़ा क्या है, ये आपको सुनकर पहचानना होगा। बहुत देर तक आपके लिए नहीं बजाएंगे, नहीं तो इट बिकम्स टू ईजी। हाँ, तो आपको यही सुनकर बताना होगा कि गाना कौन सा है। Here it goes one more time. तो अगर जो आपको पता लगता है तो 5599 पर जरूर जवाब भेजे हमारे पास में। इस गाने को बजाने की पूरी कोशिश करेंगे। 90s का एक बहुत ही फेमस नगमा और साथ में फिल्म भी काफ़ी अच्छी थी जिसको डायरेक्ट किया था एक्टा सचिन ने। सचिन जो आपने जिसको जिनको बलूक नहीं शोले में भी देखा था मेरे ख्याल से, और एक और एक फिल्म आई थी उनकी और बाद में चलकर इस फिल्म को भी इन्होंने डायरेक्ट किया। अगर जो आपको पता लगता है कि ये जो गाना है कौन सा है, 5599 इज़ द नंबर।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम पर अभी का साथ है और दो और मैसेज आए हैं. क्वीन, आपने भी सही पहचाना है. आपने लिखा है यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम, इसी तरह से साथ देते रहिए. इसके साथ में श्रुति ने भी सही अंदाज़ा लगाया है. तो कुछ तीन लोगों को ही अभी तक मालूम है और तीनों जो है सही पहचान लगाकर अपना जो मैसेज है भेजा है. क्या और लोगों को इस गाने के बारे में नहीं मालूम है? मैं जानना चाहता हूँ. आई एम क्वाइट इंक्विस्टिव टू नो कि क्या आपको इस गाने की पहचान है या नहीं. तो गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ गो. हाँ, बस इतना ही सुनवाएंगे, नहीं तो इट बिकम्स टू इजी. तो अगर जो आप भी कोशिश करें, अंदाज़ा लगाए, 5599 पर हमारे पास में आप मैसेज करें, व्हाट डू यू थिंक ये गाना कौन सा है. तो देखेंगे कितने लोगों को और मालूम है, कितने म्यूजिकल ईयर्स आपके पास में है जो इस गाने को बीच लाइन से ही आप पहचान लेते हैं. बस थोड़ी देर में आपके लिए ये गाना प्ले करेंगे, लेकिन ये मौका आपके पास में है टू सेंड इन योर मैसेजेस. जबकि ये एक फेमस गाना था 90s के दौर में और शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन जब टेक्स्ट मैसेजेस की ओर देखते हैं तो तीन ही लोगों को सही पता है और तीन ही लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट भी किया है. अगर जो आपको भी जवाब मालूम है तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करें. लेकिन अभी के लिए सलमान अली की खूबसूरत अदाकारी और साथ में मुस्कान, इनकी आवाज़ में ये अगला तराना आपके लिए.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जो अंतरा आपको सुनवा रहे थे, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है। संध्या, आपका भी मैसेज आया है, आपने भी सही जवाब लगाया है, और साथ में 2206 आपने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। और क्वीन श्रुति और साथ में शिखा आपने भी अपना जवाब भेजा था। इसके अलावा रोजलिन आपने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंगली काफ़ी फीमेल्स को ये गाना पता है, और इसके साथ में आप लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया है। और ये जो गाना है, फिल्म प्रेम दीवाने, एक फिल्म आई थी 1992 में मेरे ख्याल से, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नन अदर देन द एक्टर सचिन पिलगांवकर ने, जो कि तूतू मैं भी बाद में बनाई सीरीज़, और इसके अलावा बलिका वधु इस फिल्म में भी उन्होंने एक्ट किया था। तो अगर जो आपने मिर्ज़ापुर देखी है, शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन इसमें इस मिर्ज़ापुर फिल्म में जो अभी चल रही है, करंटली स्क्रीन हो रही है, इसमें इनकी डोटा श्रिया पिलगांवकर ने भी एक्ट किया है। तो जो फिल्म थी प्रेम दीवाने, यहाँ ये काफ़ी अच्छी चली थी और गाने भी काफ़ी हिट हुए थे। पूजा भट्ट और साथ में विवेक मुशरान के अलावा इसमें जैकी और साथ में माधुरी दीक्षित भी थी। एंड अगर जो आप देखना चाहते हैं इसको, तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि अपने समय की काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म थी, हिलेरियस मूवी थी, और साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी थे। तो हियर इट गोज़ आपके लिए ये जो गाना है, अब अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo, and red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Big saves overstocked. Yes, massively overstocked with whiteware, and it all has to go. Need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? We've got huge whiteware deals, like get an 8kg washing machine for just $4.90 or a 332-litre fridge, only $9.99. Get New Zealand's best whiteware today. Stock is limited, only at Big Save.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.in.
13: Non-stop Bollywood.
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
13: हम playing Bollywood's biggest hits.
15: Just chill.
16: जस्ट चिल में मैं हूँ अभी आपके साथ में. और जबकि आज सुबह सुबह सिटी रेल लिंक, ये जो पहला आज जो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है, इसको आज ऑपरेट करने में ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन कुछ डिलेज हुई, जिसके बारे में आप दोपहर समाचारों में भी सुन सकेंगे. लेकिन कहीं पर कोई छोटी सी आग के कारण कुछ डिलेज हुए, जहाँ पर क्विकली फायर को एक्सटिंग्विश किया गया और डिलेज और कैंसिलेशंस के बाद में सारी लाइन्स फिर नॉर्मल ऑपरेट होने लगी. लेकिन आज सुबह सुबह कुछ 400 ओकलैंडर्स आउट देयर आज सुबह सुबह टू कैच द फर्स्ट ट्रेन इनटू द सिटी. और तड़के सुबह सुबह ही ये तैयार थे कुछ 400 लोग, ताकि इस हिस्ट्री में वो भी अपना जो एंजॉयमेंट है ये कर सके. तो ये जो नेटवर्क है अब सामान्य तौर से चलने लगी है. और अगर जो मैं आपको बताऊं कि जब से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने अभी तक किसी भी ट्रेन में सवारी नहीं ली है. आई हैवन बीन ऑन अ ट्रेन. एक जो मेरे ख्याल से वायकू में जो एक ट्रेन होती है, जो यूँ कहें कि इट्स अ रिक्रिएशनल ट्रेन, जहाँ पर आप जाकर वैसे ही उसमें सवार करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने एज अ ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं यूज़ किया है अभी तक. तो शायद पहली बार रहेगा जब मैं CRL में भी ट्राई करूँगा कि इसमें मैं सिटी तक जा सकूँ. तो अगर जो आप मेरी तरह हो, अभी तक आपने इसमें ट्रेवल नहीं किया है, तो जी हाँ, CRL विल बी अ गुड चांस. और या फिर आपको डेली कम्यूट करना पड़ता है ट्रेन से, तो आप ज़रूर हमारे पास में बताएं कि इफ़ यू आर वन ऑफ देम, और कहाँ से कहाँ तक आप ट्रेन करते हो, ट्रेवल करते हो ट्रेन पर, किस डेस्टिनेशन तक आप जाते हो घर से, और कहाँ से ट्रेन पकड़ के कहाँ तक आपको जाना पड़ता है. इसके बारे में 5599 पर आप हमें अपना जो ट्रेवल करते हो आप ट्रेन से, जो कम्यूट है कहाँ से कहाँ तक करते हो, इसके बारे में डिटेल्स शेयर कर सकते हो ऑन 5599 इफ़ इट्स अ डेली थिंग फॉर यू.

हम पर रवि का साथ है और आपका साथ देता रहूंगा 6 तक। आपको बता दूं, स्पोर्ट्स की दुनिया में आज सुबह सुबह ऑल ब्लैक्स की हार स्प्रिंगबॉक से हुई है 43-28 से, और इसके बाद कहीं ना कहीं ऑल ब्लैक्स को एक झटका लगा है और एक सेटबैक भी है इनके लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारियां जबकि चल रही हैं और स्प्रिंगबॉक्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट राइवल्स, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि ऑल ब्लैक्स विल कम आउट एटलीस्ट फाइटिंग, लेकिन ये जो स्कोरलाइन है 43-28 शोज अ बिग डिफरेंस, और इसको लेकर कोच भी काफ़ी नाखुश है, लेकिन इन द कमिंग डेज मे बी दे विल गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड और आगे चलकर और भी कुछ ये प्लान्स बना सके। लेकिन इधर अगर जो लीग की ओर देखें तो अनदर सेट डे, जबकि वॉरियर्स की कल हार हुई है डॉल्फिन्स के खिलाफ 26-16 से, हालांकि कोशिश बहुत की गई लेकिन दे केम आउट लूजिंग टू डॉल्फिन्स। और इसके बाद में अगर जो NRL टेबल की ओर देखें तो वॉरियर्स अभी दूसरे पोजिशन पर है और दे विल ट्राई एंड मेक द वे टू द प्ले ऑफ्स, और ऐसा लग भी रहा है कि दे विल बी एबल टू मेक द कट। लेकिन जबकि स्पोर्ट्स दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो फिजी में बा के शहर में आज 3 पर एक जो BOG बैटल ऑफ द जाइंट्स है, यहाँ पर ग्रैंड फाइनल में बा टेक्स ऑन रेवा, इसका भी एक मैच रहेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं, एक स्पोर्ट है जिसका नाम आचार से रखा गया है। जी हाँ, आचार से उनका नाम, उस स्पोर्ट का नाम रखा गया है। अगर जो आपको मालूम है कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसका नाम आचार पर रखा गया है, जो अचार हम अपने खाने के साथ में खाते हैं वो अचार पर एक स्पोर्ट का नाम रखा गया है। इफ़ यू नो द स्पोर्ट, अगर जो आपको मालूम है तो 5599 इज़ योर मैजिक नंबर, जहां पर आप अपना जो जवाब है भेज सकते हैं। कौन सा ऐसा स्पोर्ट है, ज़रा सोचिएगा, जिसका नाम अचार पर रखा गया है।

0: Just chill.
1: जशिल में मैं हूँ अभी आपके साथ में, और किस गेम का नेम अचार पर रखा गया था, तो ऐसे में काफ़ी लोगों को पता है जवाब, और नायशा आपने भी सही जवाब भेजा इसके साथ में 0008-8514 आपका भी जवाब आया। सेजल आपने भी सही जवाब भेजा है। अंतरप्रीत थैंक यू सो मच, आपने भी सही जवाब भेजा इसके साथ साथ। क्वीन आपने भी सही जवाब पहचान कर भेजा है। जो गेम है जिसका नाम या नेम एक अचार पर रखा गया है, इट्स नन अदर देन पिकल बॉल। अगर जो आपने अभी तक इस गेम को नहीं खेला या इसके बारे में सुना नहीं है, तो ये जो खेल है 1965 में एज चिल्ड्रंस बैकयार्ड गेम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ टेनिस और साथ में हाइब्रिड कह सकते हैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन के बीच में, इट्स अ क्रॉस बिटवीन द टू। तो अगर जो आप अपनी फिटनेस के लिए इसे खेलना चाहते हैं, इट्स हाईली रिकमेंडेड। इट्स अ सॉफ्ट वर्जन ऑफ टेनिस, आपको चोट भी नहीं लगेगी और आप आहिस्ते आहिस्ते इसको खेल भी सकते हैं, और काफ़ी इजी है इसको टेकअप करना। तो अगर जो आप जानना चाहते हैं कि कहां पर कैसे इस गेम से आप वाकिफ हो सकें, हाउ टू टेक अप दिस स्पोर्ट, ऑकलैंड काउंसिल के वेबसाइट में आप पिकल बॉल अगर जो सर्च करेंगे तो आपको एक टैब मिलेगा, फाइंड अ लोकेशन टू प्ले पिकल बॉल, और यहाँ पर आप अपने घर के या फिर काम के एरिया को डाल सकते हैं, एंड इट विल पॉप अप टू शो यू और टू रिकमेंड कहाँ कहाँ पर ये जो गेम्स है आपके इर्द गिर्द में होते हैं। मैंने खेला है, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग गेम और आपके फिटनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो पिकल बॉल अगर जो आप कुछ एक्टिव करना चाहते हैं, यू मे डू सो।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: How fresh is your produce? At Barrow, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Barrow store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. New season asparagus, luscious tomatoes, bright juicy berries. All at the market's best prices. It's fresher from Barrow.
7: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
8: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan. Plus 50% off sleepy head beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
9: Time check.
10: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
9: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Good afternoon to you. I'm Jeff Ryan with the latest at 2. National wants more police on Auckland's public transport network.

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ. 2:02 हो रहे हैं और हमेशा की तरह इट्स टाइम फॉर एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर एवरी वीक कोई एक नया चैलेंज गाना की फॉर्म में लेकर आते हैं आपके लिए, जिसके बारे में आपको क्लूज देते हैं और बेस्ड ऑन द क्लूज आपको गाने का अंदाजा लगाकर और अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजना होता है 5599 पर. जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करके अपना जवाब भेजता है वही उस वीक का जो विनर है ठहराया जाता है. जैसे कि लास्ट वीक स्वस्तिका ने पहचाना था धड़कन का गाना दिल ने ये कहा है दिल से. स्वस्तिका ने पहली बार मेरे ख्याल से कोशिश किया था और लास्ट वीक इस कॉम्पिटिशन को अपने नाम कर लिया था. आज के लिए एक और एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है और ये भी एक टाइटल ट्रैक ही है, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. तो हियर इट गोज, याद रखिएगा 5599 पर अपने नाम के साथ में जवाब भेजना है और मैं इतना ही समय आपके पास में है, ये कह सकता हूँ कि इतना ही समय है कि जब मैं क्लूज बताना शुरू करता हूँ गाना बजाने से पहले का जो बीच का समय है, दिस इज़ ऑल द टाइम यू हैव. सो हियर इट गोज, गेम इज़ ऑन. 2010 की ये फिल्म हमारे इस चैलेंज का पहला फ्रेंचाइज गाना है, यानी कि अभी तक किसी भी फ्रेंचाइज मूवी के बारे में हमने बातें नहीं की थी और ये पहला है और ये जो गाना है टाइटल ट्रैक भी है, इसीलिए काफ़ी आसान रहेगा. यहाँ पर एक भाई ने अपने सुपरस्टार भाई के लिए ये फिल्म प्रोड्यूस किया. फ्रॉम द ऑनसेट बॉलीवुड फिल्म सर्कल को ऐसा लग रहा था कि सुपरस्टार एक्टर भाई ने अपने प्रोड्यूसर भाई को एक फेवर किया है बाय साइनिंग हिज मूवी. लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद जो रिस्पॉन्स मिला इट वॉज आउटस्टैंडिंग और ये जो थॉट था बिल्कुल बदल गया, क्योंकि फिल्म की हीरो के लिए भी ये एक बड़ी हिट थी. इस फिल्म से सोनाक्षी सिन्हा ने डेब्यू किया था. ये पहला क्लू आपका. एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अभिनव कश्यप थे जिन्होंने बाद में प्रोड्यूसर से पंगे भी बहुत किए. फिल्म की सेटिंग है उत्तर प्रदेश में और एक डेयरिंग कॉप की कहानी है जो करप्ट भी है, दिमाग से तेज भी और तीखी जुबान भी है. एक अलग स्टाइल, चश्मे रखने का एक अलग अंदाज, डेंस स्टेप्स भी आउट ऑफ द वर्ल्ड. इस कैरेक्टर का एक अलग चुलबुलापन है जो सलमान को सूट कर गया और ऐसा लगा था कि रोल वॉज टेलर मेड फॉर हिम. एक पॉइंट पर डायरेक्टर एक छोटे बजट पर इस पिक्चर को बनाने की सोच रहे थे. ये आपके लिए एक ट्रिविया है. तब रणदीप हुडा वॉज सेट टू प्ले दिस रोल. फिर इन केम अरबाज खान और बजट को बढ़ाया गया, एक ग्रैंड स्केल पर प्रोड्यूस भी किया गया. मेड एट अ मॉडेस्ट बजट ऑफ 41 करोड़, फिल्म ने टर्नओवर किया कुछ 221 करोड़ का. टाइटल ट्रैक जो आज का चैलेंज है उसको गाया है सुखविंदर सिंह ने और म्यूजिक कंपोज किया है साजिद वाजिद ने. और फिल्म में करेक्टर को रेफर किया गया है एज रॉबिन हुड पांडे. इस फिल्म की ओरिजिनल कट थी कुछ 4 आवर्स तक, लेकिन फिर डेविड धवन को बुलाया गया जिन्होंने इस फिल्म को एडिट किया एंड इट बिकेम अ फ्लॉलेस एंटरटेनर. इस फिल्म की काफ़ी डायलॉग्स हिट हुए जिनमें शामिल है भैया जी स्माइल और थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है. सलमान खान को इस फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ तक फिल्म फेयर अवार्ड्स कंसर्न्ड है उनको कुछ 10 या 12 नॉमिनेशन मिले हैं लेकिन एक भी अवार्ड इनके हाथ अभी तक नहीं लगा है. तो सोचिए चुलबुला पन है इस मूवी में एक्टर में और साथ में रॉबिन हुड पांडे जैसे नाम से भी रेफर किया गया है. चश्मे रखने का अलग अंदाज है. तो अगर जो आपको पता लग गया है तो 5599 पर अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजे. लेकिन इट्स टाइम टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू.

बस यही था आज का जो एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहां पर इस गाने को हमने आपके लिए चुना था। और इस सीरीज या फ्रेंचाइज में 3 फिल्में बनी थी 2010, जबकि पहली बार दबंग को आपने देखा था। उसके बाद में 2012 में इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट थी, इसको डायरेक्ट किया था अरबाज खान ने। वहां तक तो ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वहाँ पर दे हैड लॉस्ट द प्लॉट। और लेकिन ऑलवेज अ ब्यूटीफुल कैचअप। अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा है, शायद मे बी देयर इज अ चांस कि आपने नहीं देखी होगी, तो ज़रूर इसे चेकआउट कीजिएगा, या फिर इट्स अ गुड टाइम टू रिविजिट, जहां पर काफ़ी रेजा शार्प डायलॉग्स लिखे गए थे और साथ में जो एक्शन सीन्स भी थे काफ़ी नए और फ्रेश थे। तो देखते हैं हमारे जो मैसेजेस आए हुए हैं। अनिल, आपने जवाब भेजा है, इसके साथ में नीलेशनी, आपने भी जवाब भेजा, थैंक यू सो मच। 7161, आपने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन आपने भी सही जवाब हमारे पास में भेजा है। मानसी, आपका भी जवाब हमारे पास में आया है। और इसके अलावा श्रुति, आपने भी ट्राई किया। अंतरप्रीत, थैंक यू भाई साहब, आपने भी जवाब भेजा है। इसके अलावा मानसी का जवाब एक बार फिर आया था। एंड सबसे पहला जो जवाब आया था हमारे पास में, ये डबल जोड़ी थी आलिया और आदिल की, और आलिया एंड आदिल ने सबसे पहले इस फिल्म को पहचान कर अपना जो जवाब है हमारे पास में 5599 पर भेजा था। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने इसमें भाग लिया, कंपटीशन में पार्ट लिया। एक बार फिर अगले वीक आपके लिए एक नया गाना, एक नया चैलेंज लेकर आएंगे, लेकिन आज के लिए हमारे जो विनर्स ठहरे हैं आलिया एंड आदिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप सभी के लिए अगला ये गाना ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 2:12 हो रहे हैं।

हम पर रवि का साथ है और आपके साथ में बात करना चाहते हैं किल स्विच के बारे में. किल स्विच, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना था? मैंने तो नहीं सुना था अनटिल दिस वीक. मेरे कुछ बातें हो रही थी दोस्तों के साथ में, जिन्होंने मुझे बताया कि किल स्विच एक ऐसी चीज़ है जहां पर न्यूजीलैंड में इसको इस्तेमाल किया जाता है. और इसको हम, हालांकि फिजी में मैंने सुना था कि लोग इस्तेमाल करते थे, मगर हम इसको किल स्विच नहीं कहते थे. इट वॉज अ सिस्टम जहाँ पर पब्लिक सर्विस व्हीकल में, फिजी में खासकर, आप अपने एक स्विच लगाते थे. अगर जो आप टैक्सी ड्राइवर हो तो अपने इंजन को आप स्टॉल कर देते थे. अगर जो आपको कोई रोंग जॉब मिल गया है, यानी कि कोई गलत सवारी मिल गई है जिससे आपको लगता है कि आपको खतरा हो सकता है, तो आप ऐसा एक स्विच लगाते थे जो टैक्सी ड्राइवर्स थे अपने सेफ्टी के लिए, कि लोगों को लगे कि अब ये गाड़ी नहीं चलेगी. और जैसे ही वो निकलते थे गाड़ी से बाहर, एंड द टैक्सी ड्राइवर्स यूज टू स्टार्ट द कार्स एंड ड्राइव अवे सेफली. तो ये होता था फिजी में और हुआ करता था. और लेकिन अभी जब मैंने किल स्विच के बारे में सुना तो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पर बातें हो रही थी जहाँ पर लोग फाइनेंस पर गाड़ी लेते हैं, तो अगर जो ये अपने पेमेंट्स पर पीछे छूट जाते थे, या दे यूज़ टू फॉल बिहाइंड ऑन द पेमेंट्स, तो फाइनेंस कंपनीज़ क्या करती थी कि रिमोटली ये जो किल स्विच है इसका इस्तेमाल कर दिया करती थी, ताकि गाड़ी जो है ये इमोबलाइज हो जाए, यानी कि जो पर्सन है, जो ओनर है, इसको यूज़ ना कर पाए. तो ये हुआ करती थी. जबकि ये आर्टिकल के बारे में मैंने रिसर्च भी किया था, तो आई कुड ट्रेस इट बैक टू 2022 एंड 2023, जहाँ पर फाइनेंस कंपनीज़ ने ऐसे ऑप्शंस लिए हैं कि किल स्विच को इन्होंने इस्तेमाल किया है, रिमोटली कंट्रोल किया है. अब जब किल स्विच के बारे में बात हो रही है, तो एक और एक बात ये भी हो सकती है कि अपने गाड़ी की सेफ्टी के लिए अगर जो कोई ऐसी सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं जहाँ पर अगर जो गाड़ी चोरी हुई तो आप किल स्विच को रिमोटली एंगेज कर सकते हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. लेकिन अगर जो सोचो, फाइनेंस कंपनीज आपको पहले नोटिसेस भेजा करती थी अगर जो आप पेमेंट्स में बिहाइंड हो गए, और होता भी है क्योंकि अक्सर सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आ जाती हैं. तो फाइनेंस कंपनीज क्या करती थी, ये नोटिस भेजती थी या फिर पेनल्टीज लगाती थी, आपको पेनल्टी चार्ज करती थी. लेकिन आई थिंक किल स्विच इज़ टोटली डिफरेंट और एक अलग लेवल पर है. इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह ठंडे में आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं और वहाँ पर किल स्विच एंगेज कर दिया गया है और यू कांट मूव और यू कांट ट्रेवल. तो आई डोंट नो वेदर स्टिल हैपनिंग टुडे. मैं जानना चाहूँगा, अगर जो आप किसी फाइनेंस कंपनी से हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी अगर जो आप शेयर करना चाहते हैं किल स्विच के बारे में, 0800-004-866 पर आप हमेशा की तरह कॉल कर सकते हैं, या फिर 5599 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं कि क्या किल स्विच का जो प्रैक्टिस है अभी भी फाइनेंस कंपनीज यूज़ कर रही है या नहीं. लेकिन अगर जो किल स्विच के बारे में बात करें, तो आप एज अ सिक्योरिटी भी इसको यूज़ कर सकते हैं.

मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत

हम पर मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं, जबकि बातें हो चुकी हैं बॉलीवुड को लेकर, उस पर सवाल हो गया, गानों को लेकर सवाल हो गया, तो कुछ ऐसे लिसनर्स भी हैं जिनको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए और कुछ नंबर्स को लेकर चाहिए। तो अगर जो आपको नंबर्स का ढेर शौक है, सारा शौक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे हैं आप सुन रहे हैं अपने मम और डैड के साथ में, तो लेट्स डू सम नंबर्स। टेक्निकल है, सिनेरियो बेस्ड है, आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर जो 200 ml का एक कंटेनर है, 200 ml का एक कंटेनर है, उसमें से कोटा हमने निकाल दिया और उस कोटा को निकालने के बाद में उसी कोटा को एक 120 ml के खाली जग में डाल दिया, फिर उसमें 60 ml का पानी ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, यही आपको बताना है। एक बार फिर इसको आपके लिए रिपीट करते हैं। 200 ml का एक कंटेनर है, उसमें से कोटा हमने निकाल दिया, उस कोटे को हमने एक 120 ml के खाली जग में डाल दिया, फिर उसमें 60 ml का पानी ऐड किया, अब उस जग में टोटल वॉल्यूम कितना है, बस आपको हमें यही बताना है।

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी, ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
4: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
5: The masalas are ground fresh in-house every single day.
4: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
5: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
4: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: हम पर अभी का साथ है और 17 मिनट बाकी है 3 बजने में। एक जवाब आया है, हालांकि शायद गलत हो गया है, लेकिन इसको दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूं। अगर जो आपके पास में एक्सेस है मोबाइल पर, नोट्स में आप लिखना चाहते हैं या फिर पेन और पेपर भी है आपके पास में, तो 200 मिलीलीटर्स का एक कंटेनर है जिसमें से हमने कोटा निकाल लिया है। उस कोटा निकाले गए वॉल्यूम को हमने एक 120 मिल के एक खाली जग में डाल दिया। फिर उस 120 मिल के जग में हमने 60 मिल का पानी ऐड किया है। तो अब उस जग में टोटल वॉल्यूम कितना है? एक बार फिर से वापस, 200 मिलीलीटर्स का एक कंटेनर है, उसमें से हमने कोटा निकाल दिया है। और कोटा निकालने के बाद में एक 120 मिल का एक खाली जग में उसमें हमने डाल दिया है, फिर उसमें 60 मिल का पानी ऐड किया। तो अब उस जग में टोटल वॉल्यूम कितना है, यही आपको हमें बताना है। और 5599 पर आप अपने जवाब भेज सकते हैं और थोड़ी देर में आपके साथ में जो सही आंसर है ये शेयर करेंगे।

1990s में एक फिल्म आई थी सपने साजन के, और लॉरेंस डिसूजा ने इसको डायरेक्ट किया था, जहां पर आपने राहुल रॉय और करिश्मा कपूर को साथ में देखा था। उसी फिल्म का ये गाना था। और जबकि 8 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, तो वापस आते हैं सवाल की ओर। कुछ लोगों का जवाब 180 मिल्स आ रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने मैं जवाब बोलने ही वाला था, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। इनमें से बर्थडे गर्ल परीक्षा है जिन्होंने सही जवाब भेजा है, तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू परीक्षा। और इसके साथ में जो सवाल है दोबारा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 200 मिल्स का एक कंटेनर है और इसमें से कोटा हमने निकाल दिया है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोटा कितना हुआ। और उसके बाद में एक खाली जग है, 120 मिल का एक खाली जग है, इसमें हमने कोटा डाल दिया है। फिर उसमें ऐड किया 60 ml का पानी, और जो टोटल वॉल्यूम अब इस जग में है कितना है, यही आपको बताना था 5599 पर। इसका जो जवाब है 3 बजे के बाद में देंगे आपको, और जबकि 7 मिनट रह गए हैं, तो आपको एक और एक गाना सुनवाते हैं। तब तक के लिए आप अपना कैलकुलेशन दोबारा कर ले, और फिर 3 बजे के बाद में वी विल से द आंसर, जिसे मैं ऑलमोस्ट रिवील करने वाला था।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: अजवाइन, सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
4: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.

0: to Avineet.
1: मैं हूं अवि आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में घड़ी इशारा कर रही है कि शाम के 3 बज चुके हैं. यस, इट्स 3 PM और वी आर हाफ वे थ्रू द शो. ऐसे में काफ़ी लोगों के लिए हो गया होगा टी टाइम. तो आप भी अपने चाय का मज़ा ले रहे हैं और हम पर हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ देते रहिएगा और जस्ट चिल का भी मज़ा लेते रहें. जबकि इस आवर पर हमने कहा था कि आपके साथ में शेयर करेंगे जो सवाल हमने किया था नंबर्स को लेकर. तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में ढेर सारे जवाब आए हैं. 829 आपने कोशिश की थी, साथ में संजू आपका भी जवाब आया था विच वॉज करेक्ट. इसके साथ में 1484 आपने भी सही जवाब दिया था. 672829 आपका भी आंसर हमें मिला है. अंतरप्रीत थैंक यू सो मच, आपने भी जवाब दिया. इसके साथ में वेद्यगेल परीशा और साथ में रिशान ने अटेम्प्ट किया था, आपने भी सही जवाब दिया. नायशा थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग, आपने भी जवाब दिया. इसके अलावा रजनी जी हैं ओटाहू से, प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू सो मच. और आपका भी जो जवाब है बिल्कुल सही है. और जो क्वेश्चन हमने किया था 200 मिलीलीटर्स का जो कंटेनर है इसमें से कोटा निकाला तो कोटा हुआ 50 ml. और उस 50 मिल को एक 120 मिल के खाली जग में जब डाला गया तो उसमें क्वांटिटी तब भी 50 मिल ही थी क्योंकि जग तो खाली थी. और फिर उसके बाद में 60 मिल का पानी और ऐड किया तो 60 एंड 50

हुआ 110 मिल, विच वॉज द करेक्ट आंसर. और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि नंबर्स में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. तो मेरे हिसाब से दिस वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग और एक सिनेरियो बेस था, तो इसीलिए छोटे मोटे सवाल आपसे किया करता हूँ ताकि आप भी हमारे साथ में इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि हमें कहना तो है लेकिन इससे ज़्यादा आपसे भी सुनना है. इस आवा की शुरुआत करते हैं सोनू निगम के साथ में, और उनके साथ में है अलका याग्निक. इट्स अ ब्यूटिफुल नंबर फॉर अ लवली संडे आफ्टरनून.

हाँ, पर मैं अभी आपको बता दूं कि जो BOG का फाइनल है ये अब डिले हो चुका है। अब ये 3 नहीं बल्कि 4 PM इसकी जो किक ऑफ है ये होगी फिजी के शहर सोका क्रेजी टाउन बा में। तो बा टेक्स ऑन रेवा एट 4 PM, नोट एट 3 PM एज एलिया स्केड्यूल्ड।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
6: Go deal hunting this weekend at Briscoe's and bring home the savings with price-winning deals and incredible savings store-wide on the best brands for every room of the house. Briscoe's is the place. Saving is the promise till Sunday. See online for T's and C's.
7: Comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
8: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: Yeah. Hello.
9: Hi.
10: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
9: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
10: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
9: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
10: Great. Sing it to me.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
13: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
14: हम पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूं और अगर जो आप ब्रेकफास्ट शो को मिस कर देते हो तो कैचअप के लिए आप BF लिखकर 5599 पर भेजें ताकि आपको यहां से लिंक मिल सके और जो कैचअप है आप इसे सुन सकते हैं ताकि जो विजय और पूजा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं सुबह सुबह अपने शो में जो हमको कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी इम्पैक्ट करती है तो इसको सुनने के लिए आप BF लिखकर 5599 पर भेजें। इसके साथ में सेंडी और रुजबे का जो अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है अब की बार के लिए इन्होंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को टैकल किया है। यहाँ पर बातें की है तानिया पिंटो के साथ में जो कि सीनियर ट्रस्टी है पब्लिक ट्रस्ट। आखिर में विल के बारे में कौन बात करता है जल्दी, तो विल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आपके लिए, इसके बारे में बातें की गई हैं टानिया पिंटो के साथ में और सेंडी एंड रुजबे ने काफ़ी ऐसे सवाल पूछे जो आपके लिए बिल्कुल, अगर जो आप विल बनाने की सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैंडी रहेगी। तो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें और ये लिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ में अगर जो आपकी कोई आने वाली छुट्टियाँ हैं जो कमिंग अप नेक्स्ट है तो ट्रेंड मेकर्स में जो लिस्ट तैयार किया गया है रोड ट्रिप के लिए जहां पर सिंडी और रुजबे ने एक अपना जो पर्सनल प्लेलिस्ट है उसको सेलेक्ट किया है जो वो सुनना चाहेंगे ऑन द रोड ट्रिप, तो अगर जो आप भी इसको सुनना चाहते हैं तो TM लिखकर 5599 पर भेजो ताकि आपको ये मिल सके।

हम पर मैं बता दूं अभी आपको कि हमारे जो फिजी कीर्तन संग्रह है रोवा ऐप पर, अब इसको रिवैम्प किया जा रहा है। तो अगर जो आप भी किसी को जानते हैं या फिर आप खुद है जो अच्छा कीर्तन गाते हैं और आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप अपना जो एक्सप्रेशन है हमारे पास में भेज सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट KR 255 KR, आप जैसे भेजोगे हमारे पास में 5599 पर, आपको यहां से एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। याद रहे रजिस्ट्रेशंस आज क्लोज हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्विक होना होगा, यू हैव टू बी रियली क्विक। और अगर जो आप किसी को और बताना चाहते हैं जिसकी रुचि कीर्तन गाने में है, तो आप प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। जबकि आज ये रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो रहे हैं, तो KR लिख कर 5599 पर भेजें। और हाँ, ये भी याद रखें कि आपके रजिस्ट्रेशन भरने से आपकी स्पॉट कन्फर्म नहीं हो जाएगी। यहाँ से उस लिस्ट को देख कर फिल्टर करके हमारे जो अध्यक्ष है आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और तभी आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो प्लीज डू रिमेंबर दैट। लेकिन KR लिखकर 5599 पर जरूर भेजें।

0: हॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: a vehicle warranty. More ways to save at Winger Motors East Auckland, North Shore and Pukekui or winger.co.nz. On now till 30th September. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: Bollywood ke sabse bade hit gaane
2: kabhi bhi kahin bhi mast malang jo
3: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और आपको लगे हाथ बता दूं कि गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया जाएगा 19th ऑफ सितंबर को 8:11 AM इन द मॉर्निंग और आपको इस मौके पर नोट शो भारतीय संगम इनवाइट कर रहा है ताकि आप आकर इस गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में इस पूजा में भाग ले सके। आपको सिर्फ जाना होगा ताकापुना वो मेमोरियल हॉल जो कि सिचुएटेड है 7 The Strand ताकापुना ऑकलैंड में, जहाँ पर सुबह 11 पर गणेश पूजा साथ में सत्यनारायण पूजा के साथ में ये जो प्रोग्राम है इसकी आरंभ होगी और फिर ये जो प्रोग्राम है दोल ताशा के साथ में और क्लोजिंग सेरेमनी के साथ में 4 बजे शाम को ये समाप्त होगी। तो आपको सिर्फ जाना होगा ऑन द 19th ऑफ सितंबर एट द ताकापुना वो मेमोरियल हॉल एट द 7 The Strand ताकापुना ऑकलैंड में, जहां पर फ्री पार्किंग अवेलेबल है।
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

हम पर रवि का साथ है और आपको बता दूं कि रोवा ऐप पर हमारे हम म्यूजिक स्टेशंस में ढेर सारे चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। अगर जो आपको 60s और 70s का गाने सुनने हैं खासकर संडे इवनिंग को, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर जो आप 80s के हिट सुनना पसंद करते हैं तो इसके लिए आपके पास में हम 80s जुकबॉक्स का ऑप्शन है। साथ में अगर जो आप फीजी भजन सुनना चाहते हैं तो 24/7 ये भी बिल्कुल अवेलेबल है। इसके साथ में फॉर ऑल योर पंजाबी पंपिंग हिट्स आप जाकर चढ़ी कला भी सुन सकते हैं, और फिजी कीर्तन संग्रह भी है जिसको अपडेट किया जाएगा बाय न्यू रिकॉर्डिंग्स, जो कि जो फिजी कीर्तन रिकॉर्डिंग है ये होने को है और यहाँ पर अब इनको नया एक रिफ्रेश लुक दिया जाएगा। तो फिजी कीर्तन संग्रह में भी आप सुन सकते हैं फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ों में जो कीर्तन अवेलेबल है। राहत फतेह अली खान, इनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, जो सूफी ये गाया करते हैं, कव्वालियाँ ये गाते हैं, ये भी आप जाकर सुन सकते हैं।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Yo.
3: You're listening to Avineet.
4: On the waves of हम मैं हूं अभी आपका साथी और जबकि जस्ट आफ्टर फोर तो आपका साथ देता रहूंगा इसी तरह से हम पर और साथ में रोवा पर सुनते रहिए साथ देते रहिए और अब की बार आपको बताएंगे कि कैसे जो वेट लिस्ट है ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है प्रेस रिलीज में कि जो वेट लिस्ट है फो कोलोनोस्कोपीज और साथ में हार्ट टेस्ट और जो स्कैंस थे इनके जो वेट लिस्ट है इनको लेकर क्या आंकड़े या रिजल्ट सामने आए हैं बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कीप हमिंग विद अवी

हम पर. दिस इज मी अवि कीपिंग यू कंपनी. और जैसा कि हमने कहा था कि आपके साथ में शेयर करेंगे वेट लिस्ट के बारे में इन रिलेशन टू स्कैंस, कोलोनोस्कोपीज और हार्ट टेस्ट को लेकर. तो अक्सर जो पब्लिक हॉस्पिटल होती है यहाँ पर आपको अगर जो ये टेस्ट करवानी है तो अच्छी खासी एक वेट लिस्ट होती है जहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ता है. लेकिन अभी हाल ही में हेल्थ न्यूजीलैंड ने एक डाटा निकाला है जहाँ पर कुछ रिजल्ट सामने आए हैं कि इन्होंने अपने लास्ट वन ईयर के लिए जो टारगेट्स थे उनको अचीव किए हैं. और कैसे किए हैं? कुछ 89,000 एडिशनल प्रोसीजर्स को डिलीवर किया है अक्रॉस दिस सर्विसेज. और इसके साथ में जो टोटल वेट लिस्ट है ये रिड्यूस हुआ है बाय 21%. और जो लॉन्ग वेट्स थे इनका जो लिस्ट था ये डाउन हुआ है कुछ 43% से. तो अगर जो आप भी इन आंकड़ों को देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप जाइए beehive.govt.nz. यहाँ पर जो रिलीजेज है गवर्नमेंट की यहाँ पर पब्लिश हुआ करती है. लेकिन अगर जो आप ना भी जाए तो हम तो आपके साथ में हैं ही. ये जो इम्पोर्टेंट डाटा है आपके साथ में शेयर करते रहते हैं ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
5: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
8: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
7: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
9: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
8: ये आखिरी
7: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
11: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: अब पर मैं अभी आपको बता दूं कम्युनिटी न्यूज़ में क्या कुछ होने जा रहा है। जबकि श्रीराम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन पर ये गणेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं, ट्यूसडे 15 सितंबर से लेकर संडे 28 सितंबर तक, और हर रात को 7:20 PM से लेकर 9 PM तक कथा रहेगी। जो फाइनल डे का जो प्रोग्राम है 28 सितंबर को, यहाँ पर पूजा सुबह 9 पर शुरू होगी और फिर जो गणेश विसर्जन है ये दिन में 12 पर होगी। और जानकारी के लिए आप राम मंदिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और आपको बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो अक्सर कुछ कड़वा बोलते हैं, तो कड़वे शब्द किसी के काम की नहीं, ये सिर्फ तीर की तरह चोट देती है। दवा कड़वी तो होती है, लेकिन कुछ तो अच्छे के लिए बदलती है, और कड़वे शब्द सिर्फ बिगाड़ती है।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: You know Elite Bathroomware? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range, curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomware. Kiwi owned and operated. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
3: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
4: At PB Tech, they like to cut out the middleman so you pay less. Smart sourcing means sharper pricing on top tech. Search pbtech.co.nz to see how much you can save. Check, check with PB
5: Tech. Playing Bollywood's biggest hits. Put your head to Gandhi.
6: हम पर दिस इज़ मी अवी कीपिंग यू कंपनी और आपको सैर करा दूँ स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां पर इंग्लिश प्रीमियर लीग के तहत कल सुबह 3:30 एक बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एनकाउंटर होने को है, जबकि इट्स गोइंग टू बी अ लोकल डर्बी जहां पर मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड एक दूसरे का सामना करेगी। अगर जो पूल टेबल की ओर देखें तो मैनचेस्टर सिटी इज़ करंटली सिटिंग ऑन सेकेंड पोजिशन और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है अभी 13th पोजिशन पर है। हालांकि ये जो मैच है यूनाइटेड के होम ग्राउंड में होने को है, ओल्ड ट्रेफर्ड में होने को है, लेकिन बहुत ही टफ मैच रहेगा। और अगर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए तो दे हैव टू स्टार्ट डिलीवरिंग। तो ये जो मैच है मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ फॉर टुमारो मॉर्निंग एट 3:30 वेयर सिटी इज टेकिंग ऑन यूनाइटेड।

0: AG the Gangster.
1: हम पर आगे बढ़ते हुए कम्युनिटी न्यूज में आपको बताते हैं, अगर जो आप भक्ति रस का मजा लेना चाहते हैं साथ में पिछवाई की 100 साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा ब्रज रास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किंकर जी के साथ में, जो श्री धाम वृंदावन से हैं और नाम संकीर्तन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। तो ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 डे का जो श्रीमद् भागवत कथा है, फ्रॉम 14th of September से लेकर 20th of September तक, 7:30 PM से लेकर 9:30 PM तक। आपको सिर्फ जाना होगा भारतीय मंदिर और यहाँ पर जाकर आप इस भक्ति रस प्रोग्राम का मजा ले सकते हैं।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा

हम रवि के साथ है और नाम या दाम नाम मनी फॉलोज माई ब्रदर. तो रवि किशन की ये जो वायरल डायलॉग है इसको लेकर एक गाना भी बनाया गया है और रिलीज होने पर 12 घंटों के बीच में 20 मिलियन प्लस व्यूज मिले हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पर. तो रवि किशन एक ऐसे कलाकार जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है भोजपुरी सिनेमा में भी और बॉलीवुड में भी. जब वो अपना कदम जमाना चाहते थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इनको सही मायने में पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रही है और इसी तरह से आगे आने वाले फिल्मों में भी आप इन्हें देख पाएंगे. मिर्ज़ापुर में तो ये थे ही और आने वाले काफ़ी फिल्मों में ये नज़र आने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे. लेकिन इन द मीन टाइम इनको इनके गाने को 20 मिलियन प्लस व्यूज़ अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स मिल चुका है. मनी फॉलोज माई ब्रदर.

हील्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे

आज हमारी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर आपको एक गजल सुनवाए। अगला जो नगमा है आपके लिए, एक गजल चुनकर लेकर आए हैं फॉर अ ब्यूटीफुल संडे इवनिंग। और 6 बजे के बाद में इसी तरह से जो मेलोडियस नंबर्स आपके लिए लेकर आएंगे जिकाश, उनका भी साथ देते रहिएगा। लेकिन अभी के लिए जो गजल बजाने जा रहे हैं इसको आप बिल्कुल पसंद करेंगे, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट।

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया आप
5: लोग. अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jainku.
7: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

हम पर दिस इज मी अवी और आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कोट लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं इसकी शुरुआत तो आपसे ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भला खुद गुड़ चखे वो दूसरों को कैसे रोके।

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यही तक था। 12 बजे से आपने हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी अगले वीकेंड पर। कल से नए वीक की शुरुआत हो रही है, तो इसके लिए ज़रूर बेस्ट विशेज आपको कह रहे हैं एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। अभी आज के लिए संडे इवनिंग इज स्टिल यंग, इसका मज़ा लीजिएगा, अपने आप को थोड़ा समय दीजिएगा, कीप हमिंग। और इन्हीं बातों के साथ दिस इज़ मी अवि साइनिंग ऑफ, डू टेक केयर, बाय।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आपकी सेहत, आपका हेल्थ. हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट असेट. इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर हेल्थ टुडे, यू विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन इट टुमारो. सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है. आज सेहत के लिए अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो कल सेहत के लिए पैसा निकालना पड़ेगा. ये आपने होते हुए देखा है एंड ज़्यादातर आपके करीबी लोगों के साथ में ऐसा आपने होते हुए देखा है. स्वस्थ रहना कोई महंगा काम नहीं है. थोड़ा नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और अपनी दिनचर्या में अनुशासन, इतना ही काफ़ी है एक स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव के लिए. डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है. क्या आप डिसिप्लिन है? वेल, ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं. इसके बारे में आप सोचिए, विचारिए और अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए और भी कोशिश करते रहिए. मैं हूं जिकाश, आपके साथ में शामिल हो चुका हूं. नमस्कार. आज है 13 तारीख सितंबर, 6 बजने का आए हैं एंड संडे नाइट मेलोडीज का कार्यक्रम लेकर मैं यहां पर अब आ पहुंचा हूं. आपका दिन कैसा जा रहा है? आई होप आपका वीक बहुत ही अच्छा गया. अभी तक आपका वीकेंड भी बहुत ही बढ़िया जा रहा है. जो आराम के पीछे आप भाग रहे थे, वो आराम फाइनली आपको इस वीकेंड मिल चुकी है और थकान ये आपकी दूर हो रही है. जो भी हो, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं संडे नाइट मेलोडीज में. दिल से मैं अभी से लेकर 12 बजे रात तक मैं आपका हम नवा बनकर यहाँ पर आपका साथ देने के लिए आ चुका हूँ. तो आइए

0: अगस्त से दिसंबर के बीच में त्योहारों का मेला लग जाता है एंड अगर आप सनातनी हैं तो रक्षाबंधन, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, अब इसके बाद गणेश उत्सव की तैयारियां लोग कर रहे हैं, फिर पितृपक्ष आ जाएगा और फिर उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी एंड विल बी बिल्डिंग अप टूवर्ड्स दशहरा एंड दिवाली। तो भाई एक के बाद एक कई जगहों पर कई सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और इसकी जानकारियां हम चाहते हैं कि हम तमाम लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डू गेट इन टच विद अस, ताकि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इवेंट्स में हिस्सा ले तो हमारे तक आप जानकारी पहुँचाएँ और उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम आपकी सूचना पहुँचाने वाले हैं थ्रू buzzerhumfm.com. buzzerhumfm.com पर आपको अपना ईमेल भेजना है। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन पर गणेश उत्सव की तैयारी की जा रही है। गणेश उत्सव मनाया जाएगा फ्रॉम द 15th ऑफ सितंबर टिल द 20th ऑफ सितंबर एट श्री राम मंदिर। हर रात 7:20 PM से लेकर 9 PM के बीच में कथा होगी। 20 सितंबर को सुबह 9 बजे कथा शुरू होगी। गणेश विसर्जन ये 12 बजे के बाद में किया जाएगा। भारतीय मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की आयोजना की गई है फ्रॉम द 14th टिल द 20th ऑफ सितंबर। हर रात 7:30 से 9:30 PM पर कथा होगी। सेलिब्रेटिंग द डिवाइन स्पिरिट ऑफ डिवोशन एंड 100 ईयर्स ऑफ पिछवाई विथ ब्रज रास रसिक डॉक्टर श्री कृष्ण किंकर जी फ्रॉम श्री धाम वृंदावन, जो कि नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा बाय द नॉर्थ शो भारतीय संगम और ये सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। ऑन द 19th ऑफ सितंबर सुबह 11 बजे से यहां पर गणेश चतुर्थी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तकपुना वो मेमोरियल हॉल जो कि 7 द स्ट्रैंड तकपुना में है, फ्री पार्किंग यहां पर रहेगा। 11 बजे गणेश पूजा एंड सत्यनारायण पूजा, 1 पर महाप्रसाद और उसके बाद 2 पर कल्चरल इवेंट्स, फिनिशिंग विद ढोल तासा एंड क्लोजिंग सेरेमनी एट 4 PM। तो आपको भी जाना है 19 सितंबर को तकपुना वो मेमोरियल हॉल में फॉर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस विद नॉर्थ शो भारतीय संगम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन विक्रांत खन्ना। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर फ्लाइट।

Sunday Night Melodies में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ कीर्तन. Now I personally promote कीर्तन सिंगिंग और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूँ कि वो और भी अच्छा करे ताकि अपनी कला को ये दुनिया भर के कोने कोने में तक पहुँचाए. एंड इसको और भी ज़्यादा हौसला देने के लिए हमने शुरू किया है हम फिजी कीर्तन संग्रह जो रोवा ऐप पर आप सुनते हैं. नाउ विथ हम फिजी कीर्तन संग्रह we are going to provide an awesome a brilliant opportunity sabhi kalakaron ko auckland ke kalakaron ki recording hum karne wale hain aur aapki awaaz ko duniya tak pahunchane ke liye hum taiyar ho chuke hain to kya aap bhi taiyar hain kyunki friday 25th september ko vedic center mein hamari team aane wali hai papatoyo mein to do some recording for some awesome kirtan artist. अगर आप अपनी recording करवाना चाहते हैं तो आपको registration form fill करना पड़ेगा और ये form आपको तब मिलेगा जब आप KR लिख कर भेजिए 5599 पर. तो लिखिए अभी फटाफट KR और भेज दे 5599 पर अगर आप अपनी कीर्तन की recording करवाना चाहते हैं. ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करें, आप रजिस्टर करके यहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. याद रहे रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म अ रिकॉर्डिंग स्पॉट, सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी और हम रिकॉर्डिंग कन्फर्मेशन के लिए आपको कॉन्टेक्ट करेंगे. रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है आज रात को, तो आज रात तक के लिए आपके पास समय है. आप KR लिख कर भेजे 5599 पर एंड 20 आर्टिस्ट्स की को हम चुनेंगे जिनकी रिकॉर्डिंग हम करने वाले हैं 25 सितंबर को एट वैदिक

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Now the next one is for people who love a good view. ऐसी जगह पर घर चाहते हैं जहाँ पर जब वो खिड़की से बाहर देखे तो शायद नदी दिखे, समंदर दिखे या फिर पहाड़ दिखे, झील दिखे. तो अगर आप ऐसे कोई है, this one is for you. वेलिंगटन में एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एड्रेस है जहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यूज आपको देखने में को मिलेंगे एंड इट कैन बी यूज फॉर जस्ट $175,000. वेल with unrivaled water views and easy access to the airport and the central business district, properties rarely come up for sale in this area. किस एरिया की बातें कर रहे हैं बताएंगे. Well, इस एरिया में ये जो प्रॉपर्टी है आपकी हो सकती है $475,000. There is just one small teeny tiny catch. You are not allowed to actually live there. तो भाई कैसी है, क्या है ये प्रॉपर्टी? ये है एक बोट शेड जहाँ पर आप अपना बोट लाकर रख सकते हैं और छोटा सा शेड है जहाँ पर आप समय बिता सकते हैं. वन ऑफ द 15 बोट शेड्स ओवरलुकिंग इवंस बे एंड द मिरामा पेनिनसुला नंबर 141 हैज बीन हेल्ड बाय द सेम फैमिली सिंस 1992. हेलन स्कॉट सेज इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर हस्बैंड डॉक्टर विलियम गाय स्कॉट टू ऑन वन. वी'd बीन पेइंग रेंट on another boat shed and this one came up, so we just took it. The 26 meter squared shed needed a little bit of work and at one stage it was lifted up slightly but Helen has many fond memories of the family enjoying water from it. We had a laser two at one stage, a little sailboat, and then everybody moved to windsurfers. One of my sons still does that, he enjoys that, and then we got kayaks. Fishing was another favorite pastime, although there were some unexpected visitors. तो भाई कि आपके पास $175,000 है to own a little boat shed 26 meter squared का जहाँ पर से आपको views बहुत ही तगड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप रह नहीं सकते. यहाँ पर अपना kayaks, अपना छोटा सा boat आप store कर सकते हैं. You can call it your own little paradise, लेकिन यहाँ पर amenities नहीं है, वोटा नहीं है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस छोटा सा एक शेड है. $175,000 के आसपास आपको पे करना है एंड दिस कुड बी जस्ट यूज. तो लुकअप करें वेलिंगटन में इवंस बे द मिरामा पेनिनसुला बोट शेड्स. यू विल सी व्हाई दिस स्मॉल बोट शेड इज गेटिंग मोर हिट्स फ्रॉम ट्रेवलर्स.
0: यू आर लिसनिंग टू चिकाश.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on now at Pack and Save. The end of the savey pack and save message coming in 3, 2, 1.
3: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria are apply.
4: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: Dil se,
5: dil se, dil tak.
8: Sunday night melodies ka maza aap le rahe hain, and agar aapke paas bacche hain, and the modern education system. ये बच्चों को कुछ इस तरह से सिखा रहा है कि उससे हम भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। नाउ आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन अभी हाल ही में मेरे घर पर कुछ ऐसा हुआ। मेरी बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी बातें कर रहे थे अबाउट टोमेटोज। बड़ी वाली ने कहा कि टोमेटो इज़ अ फ्रूट, छोटी वाली कहती है नहीं, इट्स अ वेजिटेबल। इन दोनों के बीच में गैप ऑफ 5 years एज डिफरेंस है। तो मैंने हस्तक्षेप नहीं की और मैंने दोनों को कहा कि जाओ पहले पता लगाओ फ्रूट क्या है, वेजिटेबल क्या है, और फिर मेरे पास बाद में आओ और मुझे बताओ कि टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है। तो दे डिड देयर रिसर्च एंड देन दे गॉट देयर आंसर्स। नाउ आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको ये बताना है टोमेटो ये एक फ्रूट है या वेजिटेबल। एंड फ्रूट और वेजिटेबल्स के बीच में भाई अंतर है तो है क्या। अब कटहल को ले ले, इसकी हम सब्जी बनाते हैं, यू नो तरकारी बनाते हैं, करी कुक करते हैं इसका। अब कटहल, इसका अंग्रेजी नाम है जैक फ्रूट, तो क्या ये फ्रूट है या वेजिटेबल है? इसको हम साइंटिफिकली डिसाइफर करेंगे और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ वेजिटेबल एंड अ फ्रूट देखेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, आप जाए पता लगाए और हमें बताए कि टोमेटो फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है।

0: वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। नाउ हमने पिछला घंटा समाप्त किया था विद अ क्वेश्चन कि टोमेटो ये फ्रूट है या वेजिटेबल है। तो टोमेटो के बारे में कहा गया है, नॉलेज इज नोइंग टोमेटो इज अ फ्रूट, विजडम इज नोइंग नॉट टू पुट इट इन अ फ्रूट सैलड। तो भाई टोमेटो इज अ फ्रूट। फ्रूट दे डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स और इनके भीतर सीड होता है, दैट्स द डिमार्केशन बिटवीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स के अन्य भी पार्ट्स है जो आप ईट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेम्स हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, सो दोज आर वेजिटेबल्स। लेकिन फ्रूट इन इट सेल्फ दे डिवेलप फ्रॉम फ्लावर्स एंड हैव सीड्स इन दैम एंड दैट्स द एडिबल पार्ट। सम फ्रूट्स आर नॉट एडिबल एज वेल। तो ऐसा ना सोचे कि जितने भी फ्रूट्स है दुनिया में ये आप खा सकते हैं। एंड जैक फ्रूट, यस जैक फ्रूट इज अ फ्रूट, एंड एक्चुअली जैक फ्रूट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रूट जो पेड़ में उगता है। सो देयर यू गो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्लासेस क्लास 101 आपके हमने ली है। तो होपफुली आप अब और ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं नोइंग योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जानने से बेहतर ये है कि यू शुड ईट योर फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की। इस घंटे पर हम आपके लिए जारी कर रहे हैं, यस यू गेस्ड इट राइट, नॉस्टैल्जिया नाइट्स, जहां पर कुछ गाने बजाएंगे हम और फिर उस गाने के पीछे जो साल रहा है उस साल के बारे में कुछ नॉस्टैल्जिक कुछ मेमोरीज आपके साथ में शेयर करते चलेंगे। क्योरा
1: Hey, बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक है ना,
2: बस चल रहा है भाई।
1: What about you?
2: हाँ चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक है ना,
2: हाँ ठीक है।
1: और तेरा,
2: बस चल रहा है।

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

संडे नाइट मेलोडीज में नॉस्टैल्जिया नाइट्स आप एंजॉय कर रहे हैं एंड मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम द ईयर 1991 फिल्म लम्हे से इस गीत को हमने आपके लिए लिया है. फिल्म लम्हे जिसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर, अनुपम खेर नज़र आए थे. बड़ी ही बढ़िया कहानी इस फिल्म की थी एंड 7.2 out of 10 IMDb रेटिंग इसको मिला हुआ है. मतलब वाकई में ही बहुत ही बढ़िया फिल्म ये रही है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है अगर आप चेकआउट करना चाहें. वैसे 1991 वो साल था जिस साल में WWW ये आपको मिला था. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेसलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब. दिस बिकेम अवेलेबल इन द ईयर 1991. ये वही साल था जहाँ पर कोल्ड वॉर और गल्फ वॉर समाप्त हुआ और जनवरी एंड फरवरी के बीच में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बिगेन एज द US लेड कोलिशन ड्रोव इराकी फोर्सेस फ्रॉम कुवैत. अगस्त में एक फेल्ड कू हुआ था इन मॉस्को एंड मॉस्को कोलैप्स्ड आफ्टर 3 days एंड स्पेड अप द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन. दिसंबर में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ विच स्प्लिट द फॉर्मर सुपर पावर इंटू 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड एंडेड द कोल्ड वॉर एरा. टेक्नोलॉजी की दुनिया में द फर्स्ट वेबसाइट बिकेम पब्लिकली अवेलेबल via CERN created by Tim Berners-Lee to launch the World Wide Web. Right, तो 1991 आपको इस साल के बारे में क्या याद है? आपके जिंदगी में क्यों 1991 बहुत ही इंपॉर्टेंट है? क्या this was the year you got married या फिर आपका first heartbreak? इस गाने को आप सुने और उन यादों को आप जरूर ताज़ा करें.

डू यू फाइंड इट हार्ड सेइंग नो? वेल, मैं खुद अगर अपने बारे में कहूँ तो यस, आई डू फाइंड इट हार्ड सेइंग नो टू पीपल. आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर, लेकिन अगर कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं ना नहीं कह पाता हूँ. अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन काफ़ी बार इसके चलते खुद के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस मैं लाद लेता हूँ. तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, वेल, दिस माइट बी द रीज़न कि आप भी अपने ऊपर बहुत सारा क्लटर लेकर घूमते हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं क्योंकि आप ना नहीं कह पा रहे हैं. तो डू यू वॉन्ट टू डी क्लटर योर माइंड? वेल, यू शुड बी केयरिंग लेस एंड सेइंग नो मोर ऑफन. इसके बारे में हम जानेंगे बस थोड़ी देर में.

फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे, वो फिल्म जिसमें पहली बार ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा साथ में मिलकर आए थे। साल था 2002 और उसी फिल्म का ये अगला ट्रैक हम शामिल करने जा रहे हैं, सावली सी एक लड़की बाय उदित नारायण। बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक है। नाउ इससे पहले हमने कहा था आपसे बातें करेंगे कि क्यों हम अपने आप को ओवरलोड कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्यों हम अपने सभी फ्री स्पेस को, फ्री टाइम को कोई ना कोई इवेंट से, एक्टिविटी से भर रहे हैं और ऐसा करते हुए अपने दिमाग को हम ओवरलोड कर रहे हैं, एंड क्यों ये बहुत ही डेंजरस है और कैसे हम डीक्लटर कर सकते हैं। वेल, एक रिसर्चर है, नाम एनोनिमस इन्होंने रखा है, इन्होंने कहा है कि केयरिंग लेस माइट बी एन ईजी वे टू डीक्लटर एंड सेइंग नो। इन्होंने कहा है कि perhaps one of the reasons we find it difficult to create space with no plans is that we do not know what to do with empty time when we have it. अब तो बहुत ही ख़राब आदत हो गई है, जब भी empty space, empty time मिलता है लोग doom scroll करने लगते हैं, तो और भी अपने दिमाग को engage कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ना भी हो तो ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को बता देते हैं कि आप इस समय free है और उस समय में लोग अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देकर चले जाते हैं। शायद आपको बता देते कि भाई मैं जा रहा हूँ छुट्टी पर, क्या आप मेरे पेट डॉग को देख सकते हैं, एंड नाउ दिस बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक अच्छे फ्रेंड हैं, आप ना नहीं कह पा रहे हैं। या फिर आप को बस एक छोटा सा स्पोर्ट है जो आपके फ्रेंड कर रहे हैं, एंड ही और शी हैज़ आस्क्ड यू टू कम इन, एंड बीइंग अ गुड फ्रेंड आप ना नहीं कह रहे हैं, जो एक दो घंटे आपके पास है आप उस स्पोर्ट में बिता रहे हैं, एंड अगेन यू डोंट फाइंड योरसेल्फ विथ मच टाइम। सो टाइम विदाउट एन एक्टिविटी कैन गिव अस रूम टू थिंक, वंडर और सिंपली नोटिस व्हाट वी फील लाइक डूइंग, बट इट ऑल्सो गिव्स अस समथिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल, द कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू लाइफ एज इट हैपन्स। एन अनप्लैंड लंच विथ अ फ्रेंड, रेस्टिंग वेन फीलिंग टायर्ड रादर देन पुशिंग थ्रू एंड फॉलिंग इल, being able to respond when someone needs our help without our schedule collapsing. There is a luxury in having some of your time unclaimed. The purpose of creating space is not to make room for more. It is to leave room unfilled, room for spontaneity. कि आपके पास फ्री समय है, आप सोचे और ना भी सोचे, बस रिलैक्स करें, और फिर कुछ करने को हुआ तो भाई लो, आपके पास फ्री समय है, अब आप कुछ कर सकते हैं, ना कि चीज़ों के करने के लिए आप समय एडजस्ट करें। तो सोचिएगा इसके बारे में, क्या आप ऐसे कोई है हु हैज़ अ चोका ब्लॉक स्केड्यूल, जहां पर बस खाना खाने के लिए आपके पास 5-10 ही मिनट है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर ऐसा सिनेरियो आपके साथ में हो रहा है तो भाई यू हैव टू रीथिंक एंड री स्केड्यूल स्टफ एंड मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज ओनली थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, अदर थिंग्स You can

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
4: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
5: Already got a quote for your bathroom wear? But what about a second opinion? Email your cart or your list to Elite Bathroom Wear. Right now, take advantage of their massive spring sale and experienced staff. Quality reassurance, trending colored tapware ranges, natural timber vanities, concrete freestanding baths, and everything else bathroom wear. September only, spring bathroom sale in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroom Wear, market leaders in designer bathrooms. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
6: संडे नाइट मेलोडीज में नॉस्टैल्जिया नाइट्स आप एंजॉय कर रहे हैं और इस घंटे हम कुछ बातें करते हैं अबाउट यस्टरडेज। जो गाने हम बजा रहे हैं उस गाना किस साल का है वो गाना ये बताते हैं आपको, और उस साल क्या कुछ अमेजिंग या फिर दुखद हुआ था दुनिया में, ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। ट्राइंग टू टेक यू डाउन मेमोरी लेन, कि आप भी कुछ रिफ्लेक्ट करें अबाउट योर जीवन, कि किस तरह से उस साल ने आपका जीवन बदला है फॉर द बेटर, या फिर शायद कुछ दुखद आपके जीवन में हुआ था विच यू हैव ओवरकम, लेकिन कुछ सीख भी आपने उससे हासिल की है कि क्या कुछ आपको आइंदा दोबारा नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट 2014, जहाँ पर ये गाना आया था, द नेक्स्ट सॉन्ग बाय अंकित तिवारी, गलियां। एंड व्हाट अ सॉन्ग इट वाज। एक विलन से इस गाना को हमने लिया है। 2014 में आई और इस फिल्म में आपने श्रद्धा कपूर को देखा था एंड इसके साथ में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख इस फिल्म में नज़र आए थे। 2014 वो साल, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माई शो, इसके बारे में हमने पहले भी बातें की हैं। दी मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ये वेनिश हुआ था और इसका आज तक नहीं पता लगा है। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था विद 239 पीपल ऑन बोर्ड। इट बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री। नाउ 12 साल हो गए इसके एंड इट स्टिल पेन्स थिंकिंग अबाउट दिस डिज़ास्टर, क्योंकि कैसे हो सकता है, कैसे ऐसा हो सकता है कि यू नो वी ऑल ट्रेवल बाय एयर एंड बस यूं ही गायब हो जाना। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ डेब्री मिली है MH370 का, कुछ लोगों का कहना है नहीं ये बनी बनावटी बात है। वेल द क्वेश्चन स्टिल रिमेंस कि क्या हुआ उन 239 लोगों का और फिर उनकी फैमिलीज, किस तरह से उनको क्लोजर मिला होगा। That was the year 2014. उसी साल ISIS, इस्लामिक स्टेट, इसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, declared a worldwide caliphate after capturing the Iraqi city of Mosul and rapidly seizing territory across Iraq and Syria. West Africa में the deadliest Ebola virus epidemic in history ये हुआ था 2014 में through Guinea, Liberia and Sierra Leone, eventually killing over 11,000 people and prompting a global health response. नवंबर में द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज रोजेटा स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली डिप्लॉयड द फिले लैंडर ऑनटू कॉमेट 67P, मार्किंग द फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी एवर लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन अ कॉमेट। 2014 की बातें, अंकित तिवारी की आवाज़।

Hey Bula and welcome back to Sunday Night Melodies जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। 8 बजने को आए हैं एंड 8 से 9 बजे के बीच में आपके लिए हम लेकर आते हैं बॉलीवुड अनप्लग्ड, जहां पर अनप्लग्ड वर्जन्स ऑफ सम ग्रेट सॉन्ग्स हम आपके लिए पेश करते हैं। एंड नाउ लिसनिंग टू दिस वर्जन्स ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, इसको सुनकर काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिलती है टू डू कवर्स फॉर बॉलीवुड सॉन्ग्स। अगर आप एक बहुत ही बढ़िया गिटारिस्ट है, आई ऑलवेज यू नो आई फील प्राउड टू बी अराउंड पीपल हु नो हाउ टू प्ले गिटार, क्योंकि मुझे गिटार बजाना नहीं आता है एंड थोड़ा थोड़ा एनवी भी फील करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ गिटार बजाना, बट आई थिंक वो समय निकल गया है कि मैं सीखूँ। What do you think? क्या मैं अभी गिटार सीख सकता हूँ? आई एम ओवर 30 एंड दो बच्चे हैं, काम पर जाना पड़ता है, काफ़ी बिजी रहता है लाइफ, तो इज़ देयर स्पेस फॉर मी टू लर्न गिटार? विल इट बी ईजी फॉर मी टू लर्न गिटार? अगर आप एक गिटार प्लेयर है, डू यू थिंक आई शुड स्टार्ट लर्निंग टू प्ले गिटार? क्योंकि मुझे गिटार प्ले करने का आई भी नहीं आता है, मतलब आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। एक दौर था जहाँ पर मैंने गिटार ली थी क्योंकि देखने में बहुत कूल लगता था कि कोई गिटार बजाता है, लेकिन जब मैंने लिया गिटार तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है तो उसको मैंने उठाकर अपने पड़ोसी को दे दिया। लेकिन एनीवे, तो इस घंटे में कुछ ऐसे वाइबिंग सॉन्ग्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जो गिटार पर क्रिएट किए गए हैं, जो यू नो अनप्लग्ड वर्जन्स है ऑफ सम ग्रेट सॉन्ग्स आउट देयर। एंड लेट्स किक इट ऑफ विद नन अदर देन राहुल जैन, हु हैज रिक्रिएटेड दिस ऑसम गाना अपने अंदाज में। मैं हूं जिकाश, रात 12 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कैसे?

A big hi and hello, shout out to people जो अभी खत्म करने वाले हैं अपना afternoon shift. Normally 2 से 10 बजे के बीच में होता है, तो around this time अपना third break आप ले रहे होंगे. जो भी कर रहे हैं, I'm sure कि आप safe हैं and आपने अपनी safety का पूरा ध्यान रखा है. कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं टू गो टू नाइट शिफ्ट वर्क. 10 बजे आप शुरू करने वाले हैं, तो शायद अभी घर पर हैं आप, बस रेडी हो रहे हैं. मेक श्योर अपना रात का जो खाना है आपने पैक किया है. स्नैक्स में मेक श्योर देयर आर फ्रूट्स. कुछ कुछ कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉइज़ को फ्रूट्स देती है इन द कंपनी किचन. मेक श्योर यू ग्रैब वन जब आप जाए, और कीप हाइड्रेटेड. ठंड का समय है तो प्यास लगती नहीं है, लेकिन बॉटल ऑफ वाटर आपके आसपास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी पीते रहे, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो. एज यू नो कि दिस ईयर वी हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्लू केसेस इन न्यूजीलैंड. 10-year रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम an akda. Yeah, I don't want to you to become one of that statistic that goes down the books saying that you were one of the people who were affected by flu in 2026. No, to aisa nahi karna hai. Keep hydrated, fruits, vegetables, greens apna khate rahe, and have a balanced diet jab bhi ho sake. Anyways, enough gupshup from my side. Aiye sunte hain Deepshikha Raina ki awaaz mein ye pyara sa geet.

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

अनप्लग बॉलीवुड म्यूजिक आपके लिए हम पेश कर रहे हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोवा। रोवा पर हमने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है एंड और भी कंटेंट हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली सम आर्टिकल्स जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, सम आर्टिकल्स जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोवोक करता है तो उनको वहाँ पर हम शेयर करते हैं ताकि आपके साथ में कुछ ज़रूरी कुछ चटपटी मज़ेदार स्टोरीज़ हम शेयर करते रहें। तो वट इज़ द लास्ट आर्टिकल दैट यू हैव रेड ऑन रोवा, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। रोवा पर जाए कई सारे आर्टिकल्स हमारे अलग अलग अनाउंसर्स ने डाले हुए हैं और आप देखें कि कौन सा सिनारी या फिर कौन सा जॉनरा आपको पसंद आता है, हमें बताएं ताकि हम ऐसे और भी आर्टिकल्स आपके लिए वहाँ पर डाल सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम वो चीज़ें डालें जो आपको पढ़कर अच्छा लगे या फिर समथिंग दैट ऑलरेडी हैज़ योर इंटरेस्ट। तो शायद वो स्पोर्ट्स है या फिर स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली क्रिकेट, क्रिकेट में पर्टिकुलरली अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर क्लब के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेट अस नो 5599 पर, उसके बारे में हम जांच पड़ताल करेंगे एंड विल ट्राई टू शेयर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर क्लब जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो रोवा पर जाए, रोवा अगर आपके पास नहीं है तो भाई यू आर यू नो रेस में आप काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि रोवा पर हम बहुत सारे चांसेस देते हैं। अभी हाल ही में ख़त्म हुआ हमारा जो सोलमन एयरलाइंस का कंपटीशन था, $1,000 स्पेंडिंग मनी के साथ दो लोगों को हमने रिटर्न या टिकट्स देना था, वो कंपटीशन ख़त्म हुआ है। इफ़ यू डोंट हैव रोवा वेल यू मिस्ड आउट। तो रोवा डाउनलोड करें, ROVA लुकअप करें इन योर एप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर, या फिर ROVA लिखकर भेजें हमारे पास 5599 पर। डाउनलोड करने का लिंक हम आपको तत्काल भेज देंगे।

How much are you getting paid? Now, मैं ये आपसे जानना नहीं चाहता हूँ, क्या आप मिनिमम वेज के इर्द गिर्द में हैं या फिर आपकी कमाई ठीक ठाक है? क्या आपका ये मानना है कि जैसा हमारे मिनिमम वेज होते हैं वैसा मैक्सिमम वेज भी होना चाहिए, मतलब कि एक कैप होना चाहिए कि इससे ज़्यादा पैसे किसी को नहीं मिलने चाहिए इन फॉर्म ऑफ सैलरी? हाँ, अगर किसी का अपना बिजनेस है वो दूसरी बात है, वो बिजनेस चला रहा है, अपना प्रॉफिट बना रहा है, फेयर इनफ। लेकिन अगर मान लीजिए आपके ही कंपनी में, से कंपनी ABC लिमिटेड, इसमें 5 लोग हैं और हायरार्की गोज़ फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन टू द लास्ट पर्सन, लास्ट बंदे को जो सबसे ऊपर है वो सबसे हाईएस्ट पेड है और सबसे कम पेड इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ एट द मिनिमम वेज, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फिफ्थ पर्सन है इनका सैलरी कैप होना चाहिए? इन सम सिनेरियोस आई थिंक दैट शुड बी द केस, एंड वन सच सिनेरियो इज़ आवर पार्लियामेंट, हमारे गवर्नमेंट में। यार ये जो पॉलिटिशियंस है इतना शोर मचा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन 80% ऑफ द टाइम ये जिस चीज़ पर कैंपेन करते हैं होता नहीं है, लेकिन इनको पे बराबर मिलता है। अब देखते हैं, लेट्स टॉक पे फॉर आवर पॉलिटिशियंस। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, बेस सैलरी इनका है $520,500 पर ईयर बिफोर टैक्स, मतलब ग्रोस इनकम इनका है। लेकिन इतना ही नहीं, इनको एडिशनल पर्क्स मिलते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री एंटाइटलमेंट्स सच एज ट्रैवल एंड अकोमोडेशन अलाउंस प्लस एम्प्लॉयर सुपर एन्युएशन कंट्रीब्यूशंस। तो 520,000 के मुताबिक से इनका इनका आवली रेट होगा आई थिंक समवेयर अराउंड $260 पे आवर। देट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। नाउ प्राइम मिनिस्टर है, कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इतना पे उनको मिलना चाहिए? नाउ इसको लेकर एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, और मनी स्टफ जो कि स्टफ वेबसाइट के नीचे है, वी हैव अ मिनिमम वेज बट शुड वी हैव अ मैक्सिमम एज वेल। द आइडिया ऑफ अ मैक्सिमम वेज इज समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन रीसेंट वीक्स आफ्टर द जीरो चीफ एग्जेक्टिव सुखिंदर सिंह कैसेडी रिसीव्ड अ पे राइज टू $30.9 million। ओ माय गॉड, माय हार्ट जस्ट स्किप्ड अ बीट। इतना ज्यादा पैसा किसी को मिलता है, क्यों मिलता है भाई? इट केम आफ्टर रिव्यू फाउंड हर पे वाज बिलो दैट ऑफ अदर कंपेरेबल पोजीशंस। व्हाइल जीरो हैज हेडक्वार्टर्स इन वेलिंगटन, सिंह कैसेडी इज बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यहां पर है भी नहीं। जेंट्रेक चीफ एग्जेक्टिव गैरी माइल्स हैज बीन रिपोर्टेड एज न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पेड चीफ एग्जेक्टिव मेकिंग मोर देन $17 million लास्ट ईयर। मेरे गले में टेंशन बिल्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है, इन्होंने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है, लेकिन हाउ डू यू जस्टिफाई अ $17 million पैचेक? रिसर्चर है मार्क रेशब्रुक, सेड ही डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ मेरिट इन द आइडिया ऑफ कैपिंग पे बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट द राइट अमाउंट वॉज फॉर पीपल, कि कौन कितना ज़्यादा कमा सकता, कैसे कैप करेंगे। हाँ ये तो अलग स्टोरी है, इस पर शायद बहुत ज़्यादा काम लगेगा। लेकिन मैक्स रेशब्रुक, इनका कहना है व्हाट वाज मोर प्लॉजिबल वाज द आइडिया ऑफ पे रेशियो सो दैट अ चीफ एग्जेक्टिव शुड नॉट अर्न मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स द पे ऑफ द एवरेज और वर्स्ट पेड एम्प्लॉय। हाँ ये बात ठीक है कि इन प्रोपोर्शन हो चाहिए, मतलब कि सबसे लोवेस्ट पेड पर्सन का जो तलब है, जो सैलरी है, और सीईओ की सैलरी, ये प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर सबसे कम कमाने वाला बंदा $5 कमाता है तो टाइम्स 50, सीईओ 5 टाइम्स 50 इज 250, सीईओ $250 पे आवा कमाएगा। अगर सीईओ का तलब ऊपर जाता है तो द लोवेस्ट इनकम अर्नर का तलब का सैलरी भी ऊपर जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेटर वे ऑफ पुटिंग इट। अगर सीईओ को $17 million मिल रहा है तो द लीस्ट पेड एम्प्लॉय शुड प्रोपोर्शनली बी पेड इन द सेम वे। क्यों सिर्फ सीईओ टेक्स द
बिग स्लाइस ऑफ द केक. काम तो सभी करते हैं, फ्रॉम द जेनिटा राइट थ्रू टू द लाइन मैनेजर्स टू द जीएम, ऑपरेशंस डायरेक्टर, सीईओ, जो भी हो. क्यों सीईओ को साल दर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं जबकि द ग्राउंड वर्कर्स गेट अ $2 और $5 और इवन अ $10 इंक्रीज पर आवर इन देयर सैलरी. ये बात मुझे कभी कभी बहुत सताती है. इट डजंट लेट मी स्लीप एट नाइट. That connects top and bottom, ensures that if one person is doing well, then everyone else is, and allows for pay variations depending on firm size, etc. It's more flexible and a reasonable fit with most people's institutions. Yeah, I think that's the right fit. It has been reported that typical pay at zero is about $100,000. Zero would not confirm this. आप कोई को जानते हैं जो जीरो में काम करता है? XERO. Let me know.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

buzz@humfm.com पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, अपना सॉन्ग भेज सकते हैं, एंड डू लेट अस नो कि वी हैव द राइट्स टू यूज़ दैट सॉन्ग, ताकि उसे हम बजा सके, उसे तमाम लोगों तक हम पहुंचा सके, एंड लेट्स कोलैबोरेट एंड मेक दिस थिंग बिगर एंड बेटर. मे बी वी कैन क्रिएट अ सेशन जहाँ पर अनप्लग्ड बॉलीवुड में वी स्टार्ट प्लेइंग लोकल कॉन्टेंट. अगर अच्छा कॉन्टेंट हुआ तो क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है. एनीवेज, दिस आवर बिटवीन 9 and 10 हम कहकशन कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं. इन इस घंटे पर हम देखेंगे अबाउट वेदर. आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. वी डू दिस एवरी संडे जब हम आने वाले सप्ताह के मौसम के बारे में देखते हैं, ताकि हम खुद को तैयार कर सके, आपको भी तैयार करने के लिए मदद पहुँचा सके कि आपको कैसी तैयारी करनी है, कि छतरी लेनी है या फिर कपड़े बाहर सुखाना है या नहीं, ये सब बात जानेंगे इसी घंटे पर. फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं पंकज उदास की आवाज़ में, और इससे पहले एक छोटी सी शायरी है आपके साथ में हम शेयर करना चाहते हैं. अपनी निगाहों से ना देख खुद को, अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा. अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा. सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नज़र से देख चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा. कहकशन में मैं हूं जिकाश.

ऑलराइट, कहकशन में आपके लिए हम आपके दिल के करीब गज़ल जो है इनको प्ले कर रहे हैं एंड कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द वेदर फॉर द वीक इन स्टोर. एक्सटेंडेड वेदर पेरेंट्स की ओर अगर देखें तो संडे तो ख़त्म होने ही वाला है, 3 ही घंटे बचे हैं. आज ओवरनाइट बादल छाए रहेंगे और ओवरनाइट टेम्परेचर आज 11 डिग्रीज रहने वाला है. मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे मेनली फाइन, चांस ऑफ अ शावर इन द मॉर्निंग कल के लिए बताया गया है. ट्यूजडे को पार्टली क्लाउडी रहने वाला है विद लाइट विंड्स. वेंसडे को पार्टली क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर फ्रॉम द मॉर्निंग. तो हल्की फुल्की बारिश हो सकती है टुमोरो एंड ऑन वेंसडे, अन्यथा बदली ही छाई रहने वाली है थ्रू टिल वेंसडे. थर्सडे को काले काले बादल घिरने लगेंगे, रेन डेवलपिंग और नॉर्थ ईस्ट की ओर से हवाएं आप महसूस करेंगे. फ्राइडे को भी बारिश हो सकती है विद साउथ वेस्टर्ली विंड्स. नाउ लुकिंग एट द टेम्परेचर, मंडे से फ्राइडे के बीच में 16-17 डिग्रीज के बीच में टेम्परेचर एवरेज करने वाला है इन द डे टाइम. ओवरनाइट 10 या 11 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर रहने वाला है. तो ठीक ठाक ही वेदर रहने वाला है, अच्छी नींद आएगी विद चिली वेदर कंडीशंस एट नाइट. और थर्सडे और फ्राइडे को अपनी छतरी आप अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है. सो दैट वॉज योर वेदर, दैट इज़ योर वेदर फॉर द वीक टू कम. The week from the 14th of September till the 18th of September, Friday tak ke liye.

सन एंड मेलोडीज में कहकशन आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते रहिए। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एंड दिस इज़ अबाउट रिसाइकलिंग। ऑकलैंड में है अगर आप या फिर न्यूजीलैंड में हैं तो रिसाइकलिंग ऑप्शंस आपके पास है। येलो बीन्स, ग्रीन बीन्स विद येलो लिड्स आपको मिलेगा अगर आप रेंट करते हैं तो या फिर हाउस ओन करते हैं। दिस ऑप्शन फॉर रिसाइकलिंग एंड क्या कुछ आप रिसाइकल कर सकते हैं इस पर काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ बताया गया है आपको। इवन बीन्स के ऊपर भी फ़ोटोज़ डाले गए हैं, इंस्ट्रक्शंस डाले गए हैं कि क्या आप छोड़ सकते हैं रिसाइकलिंग में, क्या आप नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा एफर्ट भाई आप ज़रूर लगाएं, कभी कभी आलस हो जाते हैं एंड बस उठाकर डाल देते हैं कूड़ा करकट हम रिसाइकल में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके द्वारा जो कूड़ा करकट डाला गया है रिसाइकलिंग बिन में उससे द एंटायर बैच ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जो जाते हैं ट्रक में दे कैन बिकम कॉन्टेमिनेटेड। एंड अन्य लोगों द्वारा जो एफर्ट डाला गया है टू रिसाइकल प्रॉपर्ली दैट all just lands into the wastelands kyunki recycle nahi ho pata hai. So rotten food and other food scraps is a no-no. A moldy apple or half eaten salad might not seem like a big deal, lekin food waste can quickly spread through recycling load. Once food contaminates paper, cardboard and containers, those materials may no longer be suitable for recycling. To bhai ek sada hua apple ये पूरे रिसाइकलिंग लोड को ख़राब कर सकता है एंड इट विल एंड अप इन द वेस्टलैंड्स जो हम नहीं चाहते हैं। तो पुट फूड स्क्रैप्स इन योर फूड स्क्रैप्स बिन और कंपोस्ट सूटेबल स्क्रैप्स एट होम। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए यू कैन रिक्वेस्ट अ सेकंड फूड स्क्रैप्स बिन फ्री ऑफ चार्ज। नाउ दिस आई डिड नॉट नो, फूड स्क्रैप बिन आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ चार्ज अगर आपके किचन से ज़्यादा फूड स्क्रैप्स निकलते हैं। नेपीज कंटिन्यू टू शो अप इन द रिसाइकलिंग बिन्स। भाई आपके पास बच्चे हैं नाउ, यहाँ पर न्यूजीलैंड में रिसाइकलिंग जो सॉर्ट होता है वंस दे गो इनटू द ट्रक्स एंड थ्रू टू द रिसाइकलिंग सेंटर्स दे आर ह्यूमन एलिमेंट्स जो उसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। अब आप उस सिचुएशन में खुद को डालिए कि एक लोड ऑफ रिसाइकल वेस्ट आता है एंड आप वहाँ पर सॉर्ट आउट कर रहे हैं प्लास्टिक्स टू गो समवेयर एल्स, कार्डबोर्ड टू गो समवेयर एल्स एंड आपके पास आता है एक यूज्ड नैपी, कैसा फील करोगे आप? तो भाई इंसानियत दिखाइए, अगर आपके घर पर बच्चे हैं प्लीज़ डू नॉट पुट नैपीज इंटू योर रिसाइकलिंग बिन्स, अनवॉश्ड बॉटल्स एज वेल। आई पर्सनली डू मेक एन एफर्ट कि मिल्क बॉटल्स हो तो उसको मैं रिंस करके और जितना हो सके उसको सुखा कर तभी मैं रिसाइकल बिन में डालता हूँ। लेफ्ट ओवर स्पॉइल्ड मिल्क एंड अदर लिक्विड्स कैन लीक ड्यूरिंग कलेक्शन एंड सॉर्टिंग एंड सोक ऑन टू पेपर एंड कार्डबोर्ड एंड देयर गोज ऑल योर एफर्ट डाउन अक्रॉस द रिसाइकलिंग लोड एंड इन टू द वेस्ट लैंड्स। तो ऐसा आप नहीं करें, गार्डन वेस्ट हुआ इट्स अ नो नो। और द ट्रूली अनएक्सपेक्टेड, लास्ट ईयर स्टाफ रेस्क्यूड अ लाइव किटन फ्रॉम अ रिसाइकलिंग लोड। नाउ मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने इसको रिसाइकलिंग में डाला, हो सकता है कि आपने रिसाइकलिंग बिन का लीड खुला ही छोड़ दिया हो और उसमें एक बिल्ली घुस गई एंड इट एंडेड अप इन टू द रिसाइकलिंग ट्रक। वेल भगवान का शुक्र है कि इट वॉज फाउंड अलाइव। तो प्लीज़ चेक योर रिसाइकलिंग, मेक एन एफर्ट टू पुट clean stuff in your recycling bins. Hum par aapke saath hain Jikash.

0: Sunday Night Release में कहकशन कार्यक्रम जारी है एंड जितने भी लोग फिजी से हैं एंड इफ यू लव ड्रिंकिंग कावा आई आल्सो एंजॉय ड्रिंकिंग कावा लेकिन आपको मालूम ही होगा कि ग्रोग का दाम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है. अभी फेसबुक मार्केट प्लेस पर मैं देख रहा था $180 पर केजी. एक समय था अ फ्यू ईयर्स बैक, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, 4-5 साल पहले, जब अ गुड क्वालिटी केजी ऑफ कावा वाज अराउंड $90. अब दाम दुगना हो चुका है एंड आई थिंक आई नो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है. डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजी से काफ़ी लोग आ चुके हैं ओवरसीज़, और ओवरसीज़ में द डिमांड ऑफ कावा हैज़ इंक्रीज, और ये बात जानते हैं द कावा सेलर्स, तो उन्होंने दाम ऊपर कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि अफोर्डेबिलिटी अब लोगों की हो चुकी है, क्योंकि ओवरसीज़ में है तो कुछ पैसे ज़्यादा कमाते हैं एंड दे कैन स्पेंड ऑन कावा. पर आई पर्सनली थिंक इट इज़ हाई टाइम वी गेट थिंग्स अंडर कंट्रोल. आई मीन $180 फॉर के जी ऑफ कावा, दैट इज़ रिडिकुलस. एंड ये कंट्रोल में हो सकता है इफ़ वी स्टार्ट पुटिंग लेस प्रेशर ऑन डिमांड. अगर हम इसका यूसेज कम कर दे, डिमांड कम कर दे, तो प्राइसेस ड्रॉप होने लगेंगे. नाउ स्टे विथ मी, क्योंकि दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स. क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है, अगर आपके घर पर फंक्शन है एंड इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग कावा, इसको आप लिमिट कर दे, प्रोवाइड करें लेकिन कम प्रोवाइड करें. टॉक टू योर फ्रेंड्स, पीपल जो वहाँ पर आ रहे हैं, गेट टुगेदर एंड साथ में होकर अगर आप कंज्यूम करना बंद ना करें लेकिन कम कर दे, तो ग्रेजुअली वी कैन गेट ए कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ कावा. सोचिए क्या इसके बारे में, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, यू कैन जस्ट बाय एंड गिव इट टू पीपल एंड उसके ज़रिए ये प्राइस बढ़ता ही रहेगा. या फिर दूसरी ओर, लेट्स गेट अ होल्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कावा दैट वी आर कंज्यूमिंग, कैप ऑन इट, उसको कम करें एंड ग्रेजुअली पीपल सेलिंग कावा विल हैव टू ड्रॉप द प्राइसेस. एंड ऐसा मत सोचिए कि लोग विल बी पीपल विल बी स्ट्रगलिंग टू मेक अ लिविंग क्योंकि वो कावा बेच नहीं पाएंगे. बहुत सारे लोग हैं हु आर कैपिटलाइजिंग ऑन दिस एक्सट्रीम डिमांड ऑफ कावा ओवरसीज, और इसको लेकर काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू प्रोवाइड पीपल विथ कावा जब वो घर पर कुछ होस्ट कर रहे हैं. सोचिएगा इसके बारे में एंड लेट्स गेट टुगेदर एंड मेक अ डिफरेंस.
1: हम पर आपके साथ हैं चिकाश.

इस घंटे को मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. कहकशन बिटवीन 9 and 10 एवरी संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं इन संडे नाइट मेलोडीज. नाउ नेक्स्ट वन इज़ गुलाम अली द लिविंग लेजेंड. इनके गज़ल को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं. आई डोंट थिंक मैंने ऐसे किसी सज्जन से बात की है जिनको इनके गज़ल पसंद नहीं है. भाई बहुत मेहनत करते हैं एंड कमाल के कलाकार हैं. तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये सदाबहार गज़ल. और उससे पहले एक पोएट्री है मेरे पास में जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ. अर्ज है, हस्ती खिलखिलाती वो मन मौजी सी लड़की, हस्ती खिलखिलाती वो मन मौजी सी लड़की, अपने ख्यालों में व्यस्त वो विचारों में मगन लड़की. बहुत बड़ा दिल है उसका, कुछ जख्म दर्द से भरा, फिर भी वो खुशी से भरी है. किताबों में खोई हुई, सपनों में सोई हुई वह किताबों सी लड़की. बहुत माहिर है वो छुपाने में, क्योंकि इस खिलखिलाते चेहरे के पीछे राज गहरा है. बहुत कोशिश करती है वो मेहनती लड़की, दर्द के कुएं सी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए. सब पर विश्वास कर लेने वाली वो भोली सी लड़की. कोई उसकी कद्र नहीं करता, कोई उसका हाल नहीं पूछता, फिर भी वह है एक संतुष्ट लड़की. अकेले छुप कर रोती है वो, अपने आंसुओं से रुकने को कहती है वो, पर अब वो सहम गई है, थोड़ी सी बिखर गई है. अब ज़रा नाप तौल कर हंसती है वो, थोड़ा थोड़ा करके अपने दिल को जोड़ती है वो. सब पर भरोसा ना करना, ये बात समझती है अपने मन को, ये बात समझाती है अपने मन को. धीरे धीरे बदल गई है वो, दूसरों से फासला बना कर चलती है वो. फिर अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार है वो महत्वाकांक्षी लड़की. वो है मुझ जैसी लड़की. पेश है गुलाम अली की आवाज़.

Hey, Bulo, welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर अगले दो घंटे के लिए हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 90s दिल से म्यूजिक. वो दौर जहां पर उदित नारायण, कुमार सानू, हरिहरन, सुरेश वादिकर, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, यू नेम इट, बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स हमारे बीच में आए.

आपको लेना है, प्लीज़ पुल अप समवेयर सेफ एंड आराम फरमाए, हमें सुनते रहे और डू लेट अस नो कि कहाँ पर आप हैं, ताकि आप अकेला ना महसूस करें एंड मैं भी अकेला ना महसूस करूँ। कीप अ टैब ऑन ईच अदर, आपके ट्रक में आरटी है तो एवरी नाउ एंड देन कीप अ टैब ऑन अदर ड्राइवर्स एज वेल, ताकि एक साथ में होकर सेफली सभी अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। आइए शुरुआत करते हैं विद दिस लवली ट्रैक फ्रॉम कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: संडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं एंड 90s दिल से कार्यक्रम में आपके लिए हम बहुत ही लवली ट्रैक्स शामिल कर रहे हैं. नाउ इफ यू फॉलो माय प्रोग्राम, फॉलो करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आपके लिए आपको जो चीज़ें फ़ायदे पहुँचाएँ, स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मैंने लास्ट वीक शेयर किया था इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रे मैटर इन योर ब्रेन, ये श्रिंक होने लगता है जैसे जैसे आप एज होते हैं. तो कैसे अपना दिमाग, अपने दिमाग का ख्याल आप रख सकते हैं, उस पर एक सीरीज हमने लास्ट वीक किया. अभी मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट खबर लगी है, द ब्रेन हेल्थ डैमेज जो आप रिवर्स कर सकते हैं मिड लाइफ. इफ़ यू वॉक इन टू अ रूम एंड फॉरगेट व्हाई यू आर देयर, ऐसा हुआ है ना आपके साथ में, मेरे साथ भी होता है. या फिर यू लूज योर ट्रेन ऑफ थॉट हाफ वे थ्रू अ सेंटेंस, बात करते करते कुछ आपको बताना है एंड बात करते में ही भूल गए कि आपको बताना क्या था. इट कैन बी ईजी टू डिसमिस दीज मोमेंट्स एज इनएविटेबल पार्ट्स ऑफ गेटिंग ओल्डर, बट वॉट इफ योर ब्रेन इज एन सिंपली on a one-way journey towards decline. कल रेडियो पब में हमने बताया कि इन एन आवर 3 लोगों को डायग्नोज किया जाता है विद डेमेंशिया इन न्यूजीलैंड. दैट इज 3 पीपल पर आवर, पर डे नहीं, पर वीक नहीं, पर आवर. तो आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पुअर डाइट एंड लिटिल एक्सरसाइज, दे आर स्टेप्स यू कैन टेक टू रिबिल्ड जो आपके डैमेज हुए हैं आपके ब्रेन में. न्यूरो प्लास्टिसिटी, the brain isn't a static organ. Some of the changes caused or accelerated by unhealthy habits can improve with those habits when those habits change. This is part of what academics call neuroplasticity. नहीं, आपको कोई सर्जरी नहीं करवानी है, बस आपको कुछ आदतें हैं छोड़नी है और कुछ अच्छी आदतें पकड़नी है. And this ability doesn't switch off when we reach middle age. यानी कि अपने दिमाग को आप हेल्थी बना सकते हैं मिड एज एज वेल, मिडिल एज अगर आप पहुंच चुके हैं. तो कैसे कर सकते हैं, कुछ टिप्स आपके साथ में हम शेयर करेंगे बस इस अगले ब्रेक के बाद में.
0: हम पर आपके साथ हैं चिकाश.

0: पर आपके साथ है जिकाश।
1: नाइन्टीज दिल से बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 एंड 12 संडे नाइट को आपके लिए हम लेकर आते हैं। एंड मैं हूं जिकाश, संडे नाइट मेलोडीज में आपका दोबारा स्वागत कर रहा हूं। आपको हमने कहा था कि आपके दिमाग को फिर से तंदुरुस्त बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं हम आपके साथ में शेयर करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द मिडल एजेस, मतलब 30-35 से ऊपर हो गए हैं, 30-50 के बीच में हैं, तो कुछ आदतें जो आप सुधार सकते हैं दैट कैन हेल्प योर ब्रेन टू बी हेल्थियर। तो पहला है स्टॉप ड्रिंकिंग, मतलब आप पीते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप बंद कर दें तो और भी बढ़िया है। Drinking even relatively small amounts of alcohol is associated with changes to the brain. Research led by Dr. Anya Topiwala, a senior clinical researcher at the University of Oxford, found that drinking more than 7 units, matlab the equivalent of around 3 glasses of wine per week, agar aap peete hain, it was associated with shrinkage of the hippocampus, the brain region involved in memory and one of the first areas affected by Alzheimer's disease. Bhai, 3 ग्लासेस अ वीक, अगर आप सोचते हैं कि नहीं एक ग्लास पी लिया पर डे बढ़िया है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल डज डैमेज योर बॉडी, तो अगर आप इतना ही पीते हैं 3 ग्लासेस अ वीक, दिस इज एसोसिएटेड विद श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन रीजन इन्वॉल्व इन मेमोरी। तो अगर आप इतना ही पीते हैं और भूलने लगे हैं, स्टॉप। Chronic heavy drinking is associated with reductions in both gray matter, which is involved in thinking, memory and movement, and white matter, which connects different regions of the brain. Dr. Topiwala ka kehna hai, recovery can begin surprisingly quickly after heavy drinking stops. Dusri baat, get moving. Agar aap aise hain, bas sochte hain ki din bhar jitna kaam par chal liya utna hi kaafi hai, nahin. Exercise can help the brain recover from some of the effects of aging and improve the way it works. Regular physical activity increases blood flow to the brain and can improve memory and thinking. A landmark 2011 trial showed just how tangible these effects can be. Researchers divided 120 sedentary older adults into an aerobic exercise group and a stretching and toning group, and after a year, those doing regular aerobic exercise had increased the volume of their hippocampus by about 2%. That is marvelous. So, bhai, get moving, get exercising. Aur kya hai? Learn something genuinely difficult. I think aaj earlier in the program I talked about learning guitar. Maybe that's my sign. I should pick up a guitar. So learn something genuinely difficult. Sahi difficult aapko lage, lekin that makes your brain work harder and that is beneficial for you. Aur bhi baatein karenge bas thodi der mein.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: सितंबर का महीना चल रहा है और इस सितंबर के महीने में कई सारी चीज़ों पर अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। एंड वन सच अवेयरनेस इज़ अबाउट ब्लू सितंबर। सितंबर इज़ द मंथ जहां पर वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड फंड रेजिंग कैंपेन्स देट आर रनिंग थ्रू आउट द मंथ टू सपोर्ट मैन एंड देयर फैमिलीज अफेक्टेड बाई प्रोस्टेट कैंसर लेड बाई द प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन ऑफ न्यूजीलैंड। तो ब्लू सितंबर 2026 सर्चअप करें, दैट इज़ www.bluesepteber.org.nz और इसके नीचे आपको मिलेगा कि कैसे आप अपना योगदान दे सकते हैं टूवर्ड्स मैन हु आर स्ट्रगलिंग विथ प्रोस्ट्रेट कैंसर या फिर उनके फैमिलीज तक कैसे आप अपना मदद पहुँचा सकते हैं थ्रू प्रोस्ट्रेट कैंसर फाउंडेशन ऑफ न्यूजीलैंड। इसके अलावा सेप्टेम्बर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग, क्योंकि सितंबर इज़ द मंथ जहां पर ऑब्जर्व किया जाता है इन न्यूजीलैंड एज सेकंड हैंड सितंबर। तो सेकंड हैंड से क्या आपके दिमाग में बत्ती जलती है? सेकंड हैंड मतलब चीज़ें जो आपने यूज़ कर लिया है या फिर जो चीज़ें आप सेकंड हैंड यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर फाइव वेज टू टेक पार्ट इन सेकंड हैंड सितंबर। द फर्स्ट वन इज़ चूज सेकंड हैंड बिफोर बाइंग न्यू। मैं ऐसा ज़्यादातर करता हूं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर अगर आप सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं तो एक आप पैसे भी बचाते हैं एंड यू गेट होल्ड ऑफ ऑन टू थिंग्स दैट दूसरे के पास नहीं है, अलग लोगों के पास नहीं है। बिफोर हेडिंग टू द शॉप्स चेक वेदर यू कैन फाइंड आउट फाइंड व्हाट यू नीड एट अ सेकेंड हैंड शॉप। ऑप शॉप्स हैं एंड आई टेक माई डॉटर्स टू ऑप शॉप्स एंड वहाँ पर कुछ बुक्स कभी कभी मैं खरीद लेता हूँ। अभी हाल ही में आई बॉट ए लैपटॉप बैग विच वॉज ब्रांड स्पैंकिंग न्यू, इस पर टैग भी लगा था नया वाला एंड आई गॉट इट फॉर $5। ऑनलाइन गया चेक किया, उसका दाम ऑनलाइन $60 का है, तो आई गॉट अ $55 बार्गेन, $55 डिस्काउंट स्ट्रेट ऑफ द बैट, क्योंकि मुझे एक लैपटॉप बैग की ज़रूरत थी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हाई एंड शॉप्स आई वेंट इन टू सल्वेशन आर्मी एंड फॉर $5 आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लैपटॉप बैग। तो भाई यू कैन बाय फ्रॉम ट्रस्टेड ऑनलाइन रीसेलर्स और चेक आउट लोकल रीयूज और फ्ली मार्केट्स, जैसे कि रीयूज मार्केट इन विक्टोरिया स्ट्रीट कार पार्क जो सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ लगता है, या फिर अपने कम्युनिटी रिसाइकलिंग सेंटर पर भी आप जा सकते हैं एंड वहाँ पर भी आपको क्वालिटी यूज्ड आइटम्स मिलेगा। दैट्स वन वे ऑफ टेकिंग पार्ट इन सेकेंड हैंड सितंबर। दूसरा है डोनेट क्वालिटी आइटम्स यू नो लॉन्गर नीड। SPCA हुआ या फिर आपका सल्वेशन आर्मी हुआ, आपके घर से कई बार बहुत सारे कपड़े निकलते हैं जो आपने पहन लिए हैं लेकिन स्टिल दे कैन बी यूज, तो उनको आप धोकर सुखाकर डोनेट कर सकते हैं। नंबर थ्री इज़ रिपेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लेस। यू कैन गेट इनटू वर्कशॉप आउटेरोवा न्यूजीलैंड रिपेयर फेस्टिवल 26। इट इज़ रनिंग दिस मंथ अंटिल 25th सितंबर विद रिपेयर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑल अक्रॉस ऑकलैंड। तो लुक अप आउटेरोवा न्यूजीलैंड रिपेयर फेस्टिवल एंड यू कैन गेट क्रिएटिव एज वेल। नंबर फोर इज़ स्वैप बोरो एंड शेयर। Instead of throwing it out, you can swap stuff with other people, maybe your neighbors. And number five is learn to service and maintain instead of throwing out and buying new. That's some of the things that you can do for second hand September.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Non-stop Bollywood.
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
6: हम

संडे नाइट मेलोडीज का लास्ट आवर शुरू हो चुका है, मतलब 11 बजने को आए हैं। एंड अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग संडे नाइट मेलोडीज, फॉर चूजिंग हम फॉर द लास्ट आवर ऑफ द डे। हम पर, मैं हूं जिकाश, एंड संडे नाइट मेलोडीज में हमेशा संडे को आपके साथ में मैं जुड़ जाता हूं। एंड आई एम ग्लेड कि आपका साथ मुझे मिलता है, क्योंकि ये सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है जब हमारे साथ में आपके जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लिसनर्स जुड़ जाते हैं। सो कुदोस टू यू फॉर ट्यूनिंग इन ऑन 104.2 FM या फिर रोवा आप यूज़ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। आप होते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है, हम भी और भी प्रोत्साहित फील करते हैं टू डू मोर टू गेट बेटर प्रोग्राम्स, बेटर कंटेंट फॉर यू। इस घंटे में और भी बातें करेंगे अबाउट थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड

0: चिकाश।
1: किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं तो आपको उस जगह की रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है और उस जगह को रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली कमिंग इनटू न्यूजीलैंड, जहां पर यहां के वेजिटेशन, यहां के नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ के रूल्स, यहाँ के नियम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड देयर इज़ ए वेरी ऑसम वेबसाइट एंड ऑथेंटिक वेबसाइट जहाँ पर आप जा सकते हैं टू फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, क्या रूल्स है, व्हाट यू कैन ब्रिंग इनटू द एरिया, वहाँ से आप क्या लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, ये सभी जानकारी दी गई है। द वेबसाइट इज़ mpi.govt.nz, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का ये वेबसाइट है। एंड यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए जानकारी उपलब्ध की गई है। एंड वन ट्रिक आपके लिए मैं बता सकता हूँ, अगर आप इंडिया से हैं एंड यू कैन रीड हिंदी वेल कंपेयर टू इंग्लिश, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप जाए mpi.govt.nz और फिर अगर आप गूगल पर है, टॉप राइट पर तीन डॉट्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप चूज करें एंड ट्रांसलेट ऑप्शन यूज करें, ट्रांसलेट टू हिंदी, वो पूरा वेबसाइट आपको हिंदी में मिलने वाला है और आपको पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी और बहुत ही इन्फॉर्म्ड आप होने वाले हैं वंस यू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। जैसे कि रिक्रिएशनल फिशिंग, यहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं फिशिंग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी मछली कितनी बड़ी और कितने नंबर, कितने तादाद में आप पकड़ सकते हैं। रूल्स बाय एरिया, साइज लिमिट्स कितना है और द नंबर ऑफ फिश दैट यू कैन कैच फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, ये कितना है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बोटिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स, वीड्स एंड डिजीजेस, इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, रिक्रिएशनल फिशिंग है, या फिर अगर आप एक आउटडोर इवेंट होस्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं पेस्ट्स एंड अनवांटेड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो भाई जाइए mpi.govt.nz और यहाँ पर आपको भरपूर जानकारियाँ मिलने वाली हैं। गूगल यूज़ करें, ट्रांसलेट करें उस पेज को हिंदी में और आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाए, रिश्तों को और करीब लाए। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
3: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
4: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 30

हमारी विनिंग टीम अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे, इनके द्वारा एक नया एपिसोड डाला गया है अंडर द अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे एपिसोड्स। रोवा पर और स्पॉटिफाई पर ये अवेलेबल है, एंड यहाँ पर इनके लेटेस्ट एपिसोड अगर आप सुनेंगे तो यू विल बिकम मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई आपके जायदाद को लेकर। ऐसा नहीं है कि बस आपने ढेर सारा पैसा कमाया, बैंक में डाला और इसके बारे में कुछ किया नहीं और सोचेंगे कि भाई हमारे बाद आपके पार्टनर इसका मज़ा लेंगे, आपके बच्चों को भी मिल जाएगा बस यूँ ही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस प्रोबेबली थिंक दैट द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारे मरने के बाद हमारे पार्टनर, हमारे चिल्ड्रन, हमारी फैमिली को सभी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइंग विदाउट अ विल कैन लीव योर एस्टेट सब्जेक्ट टू इंटेस्टेसी लॉ एंड दी आउटकम मे नॉट बी वट यू एक्सपेक्ट। वेल, आप तो होंगे नहीं तो फिर क्या पता लगेगा आपको, लेकिन आपके बाद वाले, आपके नेक्स्ट ऑफ किन शायद इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े टू गेट देयर मच नीडेड इनहेरिटेंस। तो द एपिसोड जो अभी आया है अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे, दे हैव स्पोकन विद टानिया पिंटो, सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट, जिन्होंने ब्रेकडाउन किया है व्हाट हैपेंस व्हेन समवन डाइज विदाउट अ विल, हु मे बी एंटाइटल्ड टू देयर एसेट्स, व्हाई हैविंग अ पार्टनर डजंट नेसेसरली मीन दे विल ऑटोमेटिकली रिसीव एवरीथिंग, एंड व्हाट कैन हैपन व्हेन फैमिलीज डिसएग्री अबाउट एन एस्टेट। तो आपने कई सारे फैमिली ड्रामास देखे हैं कि किसी के जाने के बाद में उनके जायदाद के पीछे झगड़ा झंझट और फिर फैमिली में बंटवारा हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो लिसन टू अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूजबे। ड्राइव लिखे, सैंडी टू 5599 for their newest episode about your jayadat, your property, and aapko kya karna hai, kya aapko nahi karna hai।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया आपको.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Playing Bollywood's biggest hits.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा साजी लो थोड़ा।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99. और वन टूथ एक्रेलिक डेंचर सिर्फ $599 में प्लस फ्री डेंटल एग्जामिनेशंस फॉर न्यू एंड एक्सिस्टिंग पेशेंट्स फ्री विंस एंड एसीसी कोड्स और अंडर 18 के लिए फ्री ट्रीटमेंट विजिट शाइन डेंटल एट 574 ग्रेट साउथ रोड मैनकाउ बुक टुडे ऑन 09277644 टीज एंड सीज अप्लाई
6: हे नेहा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था ये घर कैसे
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया
6: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
9: MediaWorks complaints. How can I help?
10: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
9: Nice.
10: And you talked me into creating this funny character.
9: Great.
10: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
9: Are you?
10: Yes.
9: Are you Bobby the Baker?
10: Yes.
9: What's that thing you do again?
10: Stop it.
9: You bring the mouth.
10: Stop it.
9: I'll bring the pie.
10: Stop it, please.
9: Okay.
10: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
9: So what's the problem?
10: My name's Bruce.
9: Advertise with
11: MediaWorks.
9: New Zealand listens to us.

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
8: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
9: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
8: हैवान, स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
10: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
9: ये आखिरी है।
8: हैवान, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Budget gaane.

ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ।

0: कर दी पई है। बेबे तुसी भी चलो, पापा जी ने हुनी बुलानी है मैं। ले तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजा। छोड़ो जी,
1: ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुड़ी करो का हो गया है।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
6: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया आप
3: लोग. अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuko and Poke Kohi. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Poke Kohi. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jainku.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: हट मत लपट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू
1: कभी 101 कभी 102
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू
1: कभी 101 कभी 100

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is a very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
6: Judi, Kangan, Payal, Bali, Jhumke aur Chokar. ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
8: ग्रेट न्यूज, फ्लू वैक्सीनेशंस आर नाउ फ्री फॉर ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 months टू अंडर 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
0: Time check.
9: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
3: Good morning, it's Samay Thik Chhe Bajre Hain.
0: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 6. Cost increases from grocery suppliers to supermarkets are less intense than expected. They were up 1.9% for the year to August. Infometrics economist Brad Olson says further cost adjustments could be ahead.
11: All those different changes coming through from the Middle East conflict, yes, there are much higher fuel costs, but a lot of other costs haven't gone up quite as much, or at least not yet.
10: Business New Zealand's calling for more investment in new medicines and a list of priorities released ahead of the election. Spokesperson Catherine Beard says we are not getting the latest drugs.
12: We need to spend more on modern medicines. We've fallen way behind the rest of the world. It's about the lowest in the OECD of our health budget goes on medicines.
10: There's a call for government to press pause on ministerial referrals of fast-track housing projects to consider key issues. Local Government New Zealand says developments are putting enormous strain on existing infrastructure. Around 60,000 people got on Auckland trains yesterday, well over 3 times more than recorded the Sunday before. AET says they also had more than double the usual capacity of train units operating. Hundreds of staff were at City Rail Link stations helping people get used to the new services. In sport, to Rugby League with Machinery House in a league of their own on Sky Sport.
13: And Penrith march into the prelim final.
10: The Panthers winning 19-12 over the Roosters, who will now face the Sharks in a sudden death match on Saturday. The Warriors have an elimination game against the Knights at Eden Park on Sunday. And sixth place for Red Bull driver Liam Lawson at the F1 Spanish Grand Prix.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
14: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं. Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
3: सूचित किया जाता है कि सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता, सावित्री के पति यानी कृष्ण के नाना सुरेन चंद की मृत्यु वैठाकरे हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार इसी बुधवार को Anne's Funeral Home and On-site Cremations 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में 1 बजे किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता यानी सावित्री के पति सुरेन चंद की मृत्यु वैठाकरे हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार इसी बुधवार को दिन में 1 बजे Anne's Funeral Home and On-site Cremations 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं.
14: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर 11.6 डिग्रीज है, हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है आज बाद में चलकर. ओवरनाइट टेम्परेचर तो 9 डिग्रीज रहेगा. और मौसम के बारे में कहा गया है कि आज ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बारिश जो है शाम के समय तक होगी. सनराइज इसी घंटे 6:22 AM पर और सनसेट 6:11 PM पर होगा आज.
0: ब्रेकफास्ट कैचअप द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
16: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
3: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 6:00. आज है मंडे 14th of September. आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग आपको भी.
17: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
3: थोड़ी देर में आपको माइक ऑन किया.
17: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
3: आई एम मेरे ख्याल से थोड़ा नींद में. आप कैसे
17: हैं? I'm good.
3: Okay, that's good.
17: Back again, the breakfast show with Vijay and Pooja. हम पर आपका हम स्वागत कर रहे हैं, चाहे 104.2 FM पर या रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. वादे अनुसार आगे हैं आपका साथ देने के लिए. Hopefully weekend आप सभी का अच्छा गया होगा.
3: हाँ, weekend तो है ही ऐसा, मतलब आता है चला जाता है, पता नहीं चलता.
17: सारे दिन ऐसे ही होते हैं.
3: मुझे को तो वीकेंड से ज्यादा शिकायतें हैं, क्योंकि मतलब 5 दिनों तक इसका इंतजार करते हैं हम, और ये 2 दिन कब निकल जाते पता नहीं चलता. मेरे को ना सबसे बुरा तब लगता है जब सैटरडे का दिन खत्म हो जाता है,
17: क्योंकि अचीव नहीं करती आप कुछ.
3: सैटरडे को करती हूँ ना, बहुत कुछ अचीव करती हूँ मैं.
17: नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना.
3: नहीं तो मैं वही बताती हूँ कि मैं बहुत कुछ अचीव करती हूँ.
17: अच्छा,
3: पर फिर भी मेरे को बुरा लगता है कि सैटरडे इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया. बहुत कुछ अचीव करने की मेरी लिस्ट जो है वो भी काफी लंबी है.
17: तो होपफुली यू गेट वन थिंग डन एट अ टाइम एंड धीरे-धीरे मूव क्लोजर टू योर टारगेट जो भी हो आपका.
3: अच्छा अच्छा, सुबह-सुबह मतलब इतनी सीरियस बातें करनी जरूरी है आपको ना.
17: नहीं मैं सीरियस बातें कहाँ कर रहा हूँ.
3: आप ऐसे थोड़ा से क्या बोलते वो सीरियस मोड में लग, नॉट सीरियस लाइक क्या बोलते उसके यार, स्पिरिचुअल मूड और फिलोसफिकल मूड. हाँ, फिलोसफिकल मूड इज द राइट वर्ड. यस, इस मूड में लग रहे हैं आप मुझे. बट खैर, आज है मंडे 14th of September और ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ. खबरों में क्या कुछ है, क्विक कैचअप आपके साथ जरूर करेंगे इसी घंटे. और साथ में आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज यानी कि 14th September को क्या कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है इसके बारे में जानकारियाँ, और साथ ही साथ आज का पहला सवाल भी. तो तैयार रहिएगा इसके लिए जो थोड़ी देर बाद आपके लिए रहेगा.

0: सनी साइड अप।
1: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी जो है ये आपके लिए, जबकि हम लेकर आ रहे हैं, आई पर्सनली फील यार बहुत खूबसूरत कहानी है ये, तो इसे शेयर करनी बनती है। बट ऑन दी अदर हैंड्स, आज जबकि है 14th ऑफ सितंबर और आज से कई जगह पर गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये मनाया जा रहा है ना,
2: बहुत सारे लोग गणपति को लेकर आएंगे अपने घर आज ना।
1: जी बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत हो रही है और एक बड़ी खूबसूरत कहानी जो है द सेम ये शेयर की गई है इन रिगार्ड विद दिस ब्रूट इंडिया के चैनल पर। नाउ ब्रूट इंडिया जो है एक ऐसा चैनल है जहां पर बहुत सी खबरें जो है इंडिया में होती है इसके रिगार्ड्स में, या वर्ल्ड वाइड भी जो काफ़ी पॉपुलर होती है ये शेयर करते हैं। और आज जब से गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस शुरू हो रहे हैं तो ये कहानी तो एकदम अप्रोप्रिएट है आज के दिन शेयर करने के लिए। अपेरेंटली इन्होंने एक व्यक्ति से बातें की है जिनका नाम बताया गया है अमर प्रकाश। और अमर प्रकाश की जो फैमिली है, पार्टीशन के बाद इनकी फैमिली ने पाकिस्तान में रहने का फैसला जो है ये किया था।
2: ओके।
1: और ये कई सालों से पाकिस्तान में जो है ये पले बड़े हैं, वहाँ पे रहते हैं। कमाल की बात ये है कि हर साल ये पाकिस्तान में पिछले आई थिंक यू नो 10 सालों से भी ऊपर हो चुके हैं, 2022 से इन्होंने बेसिकली शुरुआत की थी ये गणेश चतुर्थी जो है वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं।
2: ओके।
1: और नॉर्मली पाकिस्तान में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन जब की करते हैं तो इनका कहना है कि ये मराठी हैं और बहुत से ऐसे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं और गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशंस मनाते हैं, पर नॉट जस्ट द पीपल फ्रॉम इंडियन कल्चर, लेकिन जो मुस्लिम यानी इस्लाम के बिलीवर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी दरअसल इनके साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं।
2: ओके।
1: और इनकी कहानी जो है तब सामने आई जब इन्होंने एक फैसला किया कि ये अपनी जो गणपति बप्पा की मूर्ति है ये खुद बनाकर उसे पेंट करना पसंद करेंगे। बट इन्हें कोई पेंटर नहीं मिल रहा था जो उनकी मूर्ति को पेंट कर सके। तब उनके पिताजी को दरअसल एक लोकल व्यक्ति जो ये मिले जो पेंटिंग का काम करते हैं और बाय बिलीफ ही इज़ अ मुस्लिम। तो जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि इन्होंने उनकी वीडियो जो है ये बनाई थी इंटरनेट पर डाली और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो शख्स जो ये मूर्ति कलर कर रहे थे जब मेरे पिताजी ने उनको ढूंढा था तो उन्होंने बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और वो अपने बिलीफ प्रैक्टिस करते हुए भी ये मूर्ति जो है उनके लिए कलर कर सकते हैं। और जब वो वीडियो सामने आया, अ लॉट ऑफ पीपल गेव इट अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, जिसके बाद चलकर अमर का ये वीडियो भी वायरल हुआ और फिर उसके बाद इनकी बातें जो है ब्रूट इंडिया के साथ हुई, जहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि 2002 से ये मनाते आ रहे हैं। नॉर्मली वहाँ पर हॉलीडे रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, क्योंकि छुट्टियाँ जो इनको लेनी आई थिंक पड़ती है पर्टिकुलर हिसाब से, तो जिसकी वजह से वो पहले शुरुआत में आई थिंक 1.5 डे के लिए गणेश चतुर्थी मनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने पूरे 7 डेज के लिए सेलिब्रेशन जो है ये इसका हिस्सा बनना शुरू कर दिया है एंड दे आर एंजॉइंग इट। और साथ ही साथ वो ये इस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी है और ऐसा बताते हैं कि शायद अलग अलग किस्म की बिलीव्स होती है लोगों की, जब वो उस कंट्री में नहीं रहते तो उस कंट्री के बारे में सोच जो अलग होती है। बट वीव बिन लिविंग हियर और इतने सालों से हम अपना जो रिलीजन है ये ओपनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है ना।
2: yeah, exactly.
1: जब आप गणेश चतुर्थी के लिए गणपति बप्पा को घर लाते हैं या उनका विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो सबको पता है कि ढोल बजते हैं, लोग डांस करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कहा कि अगर ये गणपति पप्पा को लेकर आ रहे या लेकर जा रहे हैं और उस दौरान कहीं पर भी कहीं किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ आए तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो थम जाते
2: रुक जाते हैं।
1: जी, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जब अजान जो ये ख़त्म हो जाता है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन जहाँ पर दो डिफरेंट कल्चर्स प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक कंट्री में रहते हैं और अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी कहानी जो है ये सामने आई है।
2: आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो इस पूरी कहानी से सामने आई है कि एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान का होना।
1: एग्जैक्टली, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। अगर समय रहा तो आपके लिए अपने सोशल मीडिया पेज पर भी इसे हम पोस्ट करेंगे ताकि आप भी जाकर इसे चेकआउट कर सकें। पर फिलहाल के लिए 18 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर, कमिंग अप नेक्स्ट ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए हम लेकर आएंगे।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
5: कॉफी the usual?
6: How about the unusual?
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी? तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से, जिसका हर spoon है एकदम delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect है smoothies बनाने के लिए, tangy dips बनाने के लिए, पनीर या chicken marinate करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz.
10: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
11: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: अच्छा?
11: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं?
12: मिसेस सिंह का।
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
15: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Global Headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, अमान के एक नए प्लेन पर चर्चा करने के लिए गल्फ डिप्लोमेट्स और ईरानी ऑफिशियल्स आज मिल रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नॉर्मल टैंकर ट्रैफिक के लिए फिर से खोला जा सके, लेकिन इस बैठक में यूएस शामिल नहीं होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वहां पर स्थिति अभी ठीक है, लेकिन क्षेत्र के घटनाक्रम को न्यू नॉर्मल के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वहां पर एक कमर्शियल वेसल पर हुए हमले के बाद 13 इंडियन सी फेरर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक मिसिंग इंडियन नागरिक की तलाश अभी भी जारी है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस अटैक की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि इंडियन एम्बेसी ओमानी अथॉरिटीज के साथ मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। फिजी में सुपर पॉइंट में पिछले थर्सडे को एक घर में चोरी करने के आरोप में 31 यानी 31 साल के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, जिसे आज सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। घर के मालिकों को मोबाइल ऐप पर लाइव सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपने प्रॉपर्टी पर अक्यूज्ड के घुसने का अलर्ट मिल गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर बर्गलरी का एक काउंट जो है ये लगाया है। इंडिया ने दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर वुमेन्स एशिया कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, जो उनका रिकॉर्ड 8 टाइटल है। स्मृति मंदना ने 59 रन, शिफाली वर्मा ने 68 रन के रिकॉर्ड के साथ 129 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुरू की, जिसके दम पर इंडिया ने 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ी खोकर 183 रन बनाए। जवाब में बॉलिंग करते हुए श्री चरानी ने 4 विकेट्स और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट्स जो है गे लिए और 2024 फाइनल की हार का बदला लेते हुए इंडिया को शानदार जीत दिलाई। बासो का टीम ने इस साल का एक और टाइटल अपने नाम कर लिया है। कल एक्स्ट्रा बैटल ऑफ द जायंट सॉकर टूर्नामेंट के फाइनल में मुंबा की जीत रेवा के खिलाफ 2-1 से हुई। फिलहाल सेंगांगा सॉकर टीम अब सुपर प्रीमियर डिवीजन के लिए क्वालिफाई हो चुका है, या प्रीमियर लीग में अगले साल से टीम जो है ये खेलेगी। कल एलिमिनेशन मैच में सेंगांगा की जीत तावो के खिलाफ 7-6 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Most wanted.
16: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
17: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड में तमाम चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी रेवलेशंस जो है ये भी हो रहे. वैसे ओवर द वीकेंड कई चीज़ें जो है कि रिलीज हुई, इंक्लूडिंग हैवान और साथ में घमासान एंड नेटफ्लिक्स पर चुंबक जो है ये भी आई.
1: हाँ जी, तो काफ़ी प्रोग्राम्स जो है ये और काफ़ी मूवीज जो है ये भी रिलीज हुए हैं. नॉट श्योर कि आपने कौन सी देखी है कौन सी नहीं देखी है, बट अगर कोई फीडबैक हो आपके पास, इफ यू सीन समथिंग.
0: यू मैनेज्ड टू वॉच समथिंग?
1: नहीं, मैंने मतलब ये तो नहीं देखी जो आपने मेंशन किया है. हाँ. मैंने वो बबीता सिंह रिपोर्टिंग जो ये देख ली, बिकॉज व्हेन इट केम आउट आई थिंक प्रीवियस वीक, नहीं बिफोर लास्ट वीकेंड ये आया था ना. हाँ. तो मैंने नहीं देखी थी एंड दिस वीकेंड आई टुक आउट टाइम एंड आई वॉच्ड इट. अच्छी थी मूवी, नो डाउट. पर मेरी किसी से बात हो रही थी और आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर उसे सच में एक वेब सीरीज में वो लॉन्च करते रादर देन अ मूवी.
0: ओके,
1: वेब सीरीज वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग. मूवी जो है आजकल ना पहले की तरह 3 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्में नहीं आती अब.
0: Yeah.
1: अब 2 घंटे जो है ये उसमें लोग अपनी फिल्में जो है रिलीज करते हैं. तो आई थिंक या इट
0: वुड बिकम अ बिट टू लॉन्ग.
1: नहीं टू लॉन्ग, इट वॉज अ बिट टू शॉर्ट आई थिंक. और शॉर्ट इन अ वे कि जल्दी जल्दी खत्म कर दिया.
0: अच्छा, ओके.
1: हाँ, तो शायद एंडिंग में उतना एनर्जी या उतना अटेंशन नहीं किया, बट इट वाज नॉट बेड आई वुड से. एंड जैसे कि सभी देखने के बाद, बबीता सिंह रिपोर्टिंग जो है ये देखने के बाद अपने रिव्यूज़ दे रहे थे ना, दैट वरुण सोपती भले ही उन्होंने 2 मिनट का ही रोल किया हो, उनको 2 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला, बट ही डिड एन अमेजिंग जॉब. कि आपके दिल में वो बंदा, वो कैरेक्टर बंसी जो उन्होंने प्ले किया था, वो छप जाएगा, वैसा था.
0: ओके, तो वहीं पर अक्षय कुमार हैवान में इनका किरदार बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम हिज यूजुअल कैरेक्टर्स दैट ही प्लेज. एंड सिमिलरली अरशद वारसी,
1: ओके,
0: अभी आई थिंक ओवर द वीकेंड हैवान के बारे में लोगों को काफी कुछ पता था कि अक्षय किस तरह का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं. लेकिन घमासान जो है इस फिल्म को लेकर और अरशद वारसी के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ट्रू इवेंट्स.
1: ओह रियली?
0: नॉर्थ ऑफ इंडिया का की ये कहानी है. तो अगर आपने नहीं देखी है आप देख सकते हैं ये फिल्म, बता सकते हैं कि कैसी आपको लगी.
1: राइट, आपने अपने फीडबैक्स जो है ये आप हमारे पास जरूर भेज सकते हैं. फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, इट्स 25 मिनट्स अवे फ्रॉम 7 फॉर नाउ. थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे डिटेल्स अबाउट 14th ऑफ सितंबर और साथ में आज चेकआउट करेंगे आपके गुड मॉर्निंग के मैसेजेस और आज का पहला सवाल भी.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Risco's 25k birthday giveaway.
6: A little sun today, mostly cloudy with a high of 18 degrees. Coming into the city, a pretty quick drive so far. Southern Motorway just slow tucking in to Manurewa and building overall. 22 minutes Manukau to town, 38 from Drury. Northwestern, 20 minutes in from Massey. Bit of traffic around Te Aratu and close to the city. Northern slow at Silverdale, heavy at Constellation, then slow to Milford. 20 minutes Constellation to town.
5: Risco's club members could win 25k cash. T's and C's apply.
7: Professional financials है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
12: डिब्बा खुल गया
13: भरत भाई, टिफिन खुल गया. छे संजना का डिब्बा खुल गया.
14: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा,
13: डिब्बा खुल गया.
14: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
15: Thinking of an EV? Think MG.
4: Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एंड आज हमारे इस शो में ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ कर रहे हैं शुरुआत. गुड मॉर्निंग के कई मैसेजेस आपने भेजे हैं हमें. सबसे पहले आज मिस्टर माटा माटा इनका मैसेज जो है ये आया और इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मंडे एवरी वन, हैव अ गुड डे. और इसके अलावा गुड मॉर्निंग टू ऑल. राज, आपका भी मैसेज आया, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, हैव अ गुड डे आपने कहा है. बॉबी मान जी ने कहा गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, शिवास ब्लेसिंग्स, हैव एन अमेजिंग वीक अहेड. और इसके साथ साथ आज रवनेश पुदलियार जी ने भी हमें याद किया है, गुड मॉर्निंग कहा है, नमस्कारम कहा है और सभी को हैप्पी हैप्पी डे जो ये भी विश किया है. गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट वीक, विनीता जी की ओर से भी मैसेज आया है. साथ में परमा महाराज जी, जय सियाराम पूजा एंड विजय, लॉर्ड शिवास ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे इन्होंने कहा है.
3: तो आप सभी को ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. आज 14th of September, जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, आज गणेश चतुर्थी जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसके अलावा आज USA में कलरिंग डे ये मार्क किया जाता है और साथ ही में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य कंट्रीज में बॉस एम्प्लॉय एक्सचेंज डे कुछ कुछ जगह पर ये आज मार्क किया जाता है. USA में आज पेरेंट्स डे ऑफ होता है.
2: डे ऑफ?
3: हाँ,
2: मतलब फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग अ पेरेंट.
3: या
2: ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग.
3: और इसके अलावा आज ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में और USA में सोबर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है. एंड उसके साथ क्रीम फील्ड डोनट डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है.
2: अमेजिंग सेलिब्रेशंस टू बी पार्ट ऑफ. तो जो भी आपका दिल करे, जो भी आप सेलिब्रेट करना चाहे, वो आप जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं ना.
3: हाँ, आज बहुत सारे लोग अपना बर्थडे जो है ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनमें शामिल हैं टू लीड द लिस्ट आयुष्मान खुराना.
2: ओह इंटरेस्टिंग. तो हैप्पी बर्थडे भी आपको बाय द वे हम विश करेंगे अगले घंटे, जिसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है. पर फिलहाल के लिए रिमेंबर, बीइंग हैप्पी डजंट मीन यू हैव इट ऑल, इट सिंपली मींस यू आर थैंकफुल फॉर ऑल यू हैव.
4: लेट्स गो
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
2: तो ये गाना एंजॉय करते हैं. आज का पहला स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट विशाल मिश्रा की आवाज़ में आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. और बहुत ही कमाल की फिल्म योद्धा 2024 में आई थी, उसी का ये ट्रैक इस बार आपको हम सुना रहे हैं. इस गाने के ठीक बाद आज का पहला सवाल आपके नाम करेंगे.

0: तो बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक आज सुबह सुबह आपके लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में हमने पेश किया. और इधर चलिए, हमने कहा था कि आज का पहला सवाल ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. आज चलिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहाँ पर बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे ये आपको हम गेस करने के लिए कहते हैं, कुछ क्लूज देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अच्छा आप बताइए कि हम आज किस मूवी के बारे में बातें कर रहे हैं. इफ़ यू रिमेम्बर, हमने एक चलन भी शुरू किया था जहाँ पर वी वर ब्रिंगिंग ऑल दीज एक्टर्स, उनके नाम आपको बताते थे और फिर आपको रिवील करना होता था कि अच्छा कौन सी ये मूवी हो सकती है जिसमें ये सारे एक्टर्स हैं. तो आज चलिए वापस से वही खेल आपके साथ खेलेंगे. और क्या आप हमारी लिस्ट ऑफ एक्टर्स का नाम सुनते हुए अनुमान लगा पाते हैं या नहीं कि आज की हमारी मूवी ऑफ द डे जो है ये कौन सी फिल्म है? तो आज सबसे पहले आपके लिए जो नाम हम रिवील करने जा रहे हैं वो है ऋषि कपूर. ऋषि कपूर.
1: अच्छा,
0: दूसरा नाम जो हम रिवील करने जा रहे हैं इज काजोल.
1: ऋषि कपूर और काजोल.
0: जी, तो कौन सी फिल्म हो सकती है? अभी एक एक्टर का नाम बाकी है, पर देखते हैं क्या आप इन दो नामों के साथ बता पाते हैं हमें आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी मूवी है. अगर हाँ तो कमाल ही हो जाएगा, और अगर ना तो जो तीसरा एक्टर है इनका नाम रिवील करेंगे. एंड लेट्स सी क्या तब आप अपना जवाब दे पाएंगे या नहीं.
1: ऋषि कपूर और काजोल कौन सी फिल्म हो सकती है? अनुमान लगाने की कोशिश आप करें. BF अपना आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao. Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
4: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan the.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
5: Hum, accurate traffic.
6: Spring starts with HRV.
7: A high of 18, fine spells on, quite a cloudy one today. Coming into the city, Southern Motorway, 26 minutes, Manukau to Town, slow Papakura to Manurewa, add Papatoetoe and East Tāmaki to Mount Wellington. Southwestern looking okay. Northwestern, 25 minutes, Massey to Town, slow at Te Aratu, Partiki and then from Greylin. Northern, 20 in from Constellation, slow at Silverdale, heavy at Constellation, slow to Waito Valley.
6: Spring clean your air at home with HRV.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, where आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन. ये हमेशा आपके पास है. गो बनानास चाइल्ड केयर 12 पर डे ऑफर, 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस. ऑफर एंड्स 30th सितंबर. लिमिटेड स्पेसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड. तो जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो स्पेशल ऑफर्स. कॉल 0800 46 26 26 26 टुडे. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: Oh, I was just overtaking someone, officer. Could have only been a couple of k's over. But just for a second to get round them, you know? You're not going to ping me for that, are you? Surely just a warning. I've never even had a...
10: Crash involving three injured parties. Reported speeding vehicle collided with an SUV at an intersection. Two victims, stat one. We've lost the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
11: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: 10 मिनट ही बाकी है समय हमारी स्टूडियोज में, वैसे सुबह 7 बजने में ठीक 7 पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, पर फिलहाल के लिए इधर जो सवाल हमने पूछा था देखते हैं क्या हाल हो रहा है इसका, क्या आंसर्स जो है ये हमारे पास आए हैं ना सुबह सुबह।
1: बिल्कुल, एंड बॉबी मान जी इन्होंने अपना जवाब जो है ये हमारे पास भेजा है, साथ में मनजिंदर सिंह अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, फजीलत ने कहा है इन्होंने बस पार्शियली ही आपका जो सवाल है ये सुना, और सल्लू है गल्फ ऑफ फंगपरोव से, विकी ने अपना जवाब भेजा है, साथ में विश्नेल है और प्रतीका, और आपने इन्होंने आंसर भी भेजा है और अपना गुड मॉर्निंग मैसेज भी भेजा है, आपको भी ये सुबह मुबारक हो प्रतीका जी, थैंक यू सो मच।
0: ओके, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, आपके साथ के लिए। तो अगर आपने सवाल अच्छे से नहीं सुना, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज का हमारा सवाल जो है वो क्या है, आज की आज के सवाल में आपको मूवी जो है हमारी ये पहचाननी है, मतलब बॉलीवुड मूवी जो है ऑफ द डे ये पहचाननी है, और क्लू के तौर पर हमने आपको उस मूवी में दो एक्टर्स जिनका नाम शामिल है बस ये रिवील किया है, सिर्फ दो ही नाम रिवील किए हैं, ऐसा नहीं कि यही दो एक्टर्स हैं इस फिल्म में, और भी एक्टर्स हो सकते हैं पर नाम दो है जो ये हमने रिवील किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अनुमान लगाना है इन दो एक्टर्स के नामों के हिसाब से कि आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे कौन सी है, और जो पहले दो नाम हमने रिवील किए थे वॉज ऋषि कपूर एंड
1: काजोल,
0: राइट। वैसे कुछ लोगों ने अपने आंसर्स भी हमारे पास भेजे हैं, राजू चाचा कुछ ने कहा है और किसी ने कुछ खट्टी कुछ मीठी जो है कि लिखकर भेजा है, आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने कुछ खट्टी कुछ मीठी जो है कि लिखकर भेजा है, और कमाल की बात ये है कि इन दोनों फिल्मों में यस देवस ऋषि कपूर एंड काजोल, और ये दोनों फिल्में कहीं ना कहीं वैलिड होती अगर ये लास्ट नाम जो अब हम आपके रिवील करने जा रहे हैं ये भी इस फिल्म का हिस्सा होते। तो आज का आखिरी नाम जिसके ज़रिए आपको अंदाज़ा लगाना है कौन सी फिल्म है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी, और लास्ट नाम इज आमिर खान। सो ऋषि कपूर,
1: अब तो बहुत इजी हो गया,
0: ऋषि कपूर काजोल एंड आमिर खान डेफिनेटली इजी हो गया, पर क्या आपने इनका नाम, इनका मतलब फिल्म का नाम जो है ये पहचाना है कि नहीं, इफ यस तो जल्दी से हमारे पास अपना आंसर लिखे 5599 पर, BF लिखना है सबसे पहले, फिर आंसर, फिर नाम और भेज देना है आपको। याद रहे ऋषि कपूर काजोल एंड आमिर खान, कौन सी फिल्म हो सकती है जिसमें ये तीनों एक साथ दिखे थे आपको।

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: Hello, Kia ora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aaj hai Monday, 14th of September. और आज की ये सुबह जहाँ पर आपके नाम करते हुए 3 मिनट हो रहे हैं 7:00 मॉर्निंग मैडनेस मेगा फाइनेंस की ओर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं.
2: और आज आपको तो पता ही है जो सिटी रेल नेटवर्क है उसे कल शुरुआत हो गई एंड फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स गो दिस मॉर्निंग.
1: मैंने कई बार पढ़ा था कि कल द वेरी फर्स्ट डे जब सिटी रेल लिंक सर्विसेज जो है ये शुरू हुए तो कुछ तो हुआ था. As in some malfunction happened. वो मैंने कुछ कहीं पर पढ़ा था but I'm not really sure what exactly. However, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कल से इसकी शुरुआत जबकि हुई है after more than a decade of construction preparations. और प्रोजेक्ट को तैयार करने में $5.5 billion लगे हैं including a 3.45 kilometer twin underground tunnel. और there are 3 new underground stations जिसमें करंगहापे और साथ में मेरे ख्याल से दो और हैं जो मेरे लिए भी प्रोनाउंस करना थोड़ा हार्ड होगा.
2: ओके,
1: तो आई वुड नॉट इवन ट्राई. और साथ में यू नो इसके बारे में बताया गया है कि दिस रेल नेटवर्क वाज एक्चुअली रीऑर्गेनाइज्ड ताकि जो न्यू ईस्ट और वेस्ट और साउथ सिटी लाइंस है ये एक नया टाइम टेबल में आ जाए ना और इजी हो जाए कम्यूट करना लोगों के लिए.
2: सो लेट्स सी अपडेट्स जो भी होंगे ये हम आपको देंगे. 7:30 न्यूज हेडलाइंस भी हैं आपके लिए. आज 14th ऑफ सितंबर अगर बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मेक श्योर अपने मैसेजेस टाइम से पहले ही आप हमारे पास भेज दें ताकि इस घंटे हम आपको विश कर सकें.
1: राइट, ये सब कुछ इसी घंटे आपके लिए रहेगा तो हमारे साथ ही बने रहिएगा. फिलहाल हमने आपसे सवाल भी किया था पिछले घंटे जिसके आंसर्स आपने भेजे थे. लास्ट आई थिंक हमने प्रतीका का मैसेज पढ़ा जिसके बाद रोनिल इनका मैसेज आया फिर फिजा है रोहिणी है. कुछ लोगों ने मैसेजेस भेजे नाम नहीं लिखा है. नितिका गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज. दवनेश वेरी गुड मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी मैसेज के लिए. सो वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर साथ में काजोल और उसके अलावा आमिर खान इन सब ने एक साथ काम किया था. एंड द आंसर इज फना जो कि आई थी ईयर 2006 में. तो अगर आपने ये फिल्म देखी है यू नो विच मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. नहीं देखी है तो कभी मौका मिले टू रिविजिट सम मूवीज दैट रिलीज मेनी इयर्स अगो तो फना जो है ये आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए विकास का मैसेज आया है. इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है और कहा है इफ वी कैन प्ले मोरिया सॉन्ग फ्रॉम डॉन मूवी.
2: हाँ आज तो बनता है ना वो.
1: डेफिनेटली बनता है. गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है आज से तो डेफिनेटली विकास आपके लिए हम इसे लाने की कोशिश करेंगे इसी घंटे. पर फिलहाल इस गाने में आप सभी को हम याद कर रहे हैं.

0: finance experience, call 0800 634 234.
1: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है, बिजनेस डील्स और आगे बढ़ेंगे, पर्सनली भी आज आप ग्रो करेंगे, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है।
3: उसके बाद वृष ने टूरिस्ट, आज आपके लिए कहा गया है कि पेशेंस जो है ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आज बहुत अच्छा दिन है अपने फाइनेंसेस को प्लान करने का, और साथ में आपके लिए बताया गया है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ा स्टेडी रहिए, कंफर्टेबल रहिए और टेक टाइम विद थिंग्स। ऐसा नहीं कि चीज़ों को रश करना है आपको रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में।
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके लिए कहा गया है कि कॉन्टैक्ट्स और आपके बनेंगे जिससे बिजनेस में फायदा

0: हो सकता है हेल्थ बढ़िया रहेगा एंड यू विल बी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक टुडे।
1: और उसके बाद आज अगर देखा जाए तो कर्क यानी कैंसर आपके लिए कहा जा रहा है कि इट्स अ डे टू बी ओपन अबाउट योर फीलिंग्स, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, फाइनेंसेस को सिंपल रखें एंड आपके फैमिली मैटर्स में कहा गया है कि कोई हो सकता है आपके परिवार में जिसको आज आपकी अटेंशन की ज़रूरत हो, तो आइडेंटिफाई द पर्सन और जितना आप हो सके उतना उन पर ध्यान दीजिए।
0: सिंह यानी लियो, बिजनेस में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी दिन आपका बढ़िया रहेगा।
1: और उसके बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि एक थॉटफुल जेस्चर आज आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। इट कुड कम फ्रॉम समवन यू ट्रूली ट्रूली लव और ये आपके लिए बहुत खुशी का जो रीज़न है ये बन जाएगा आज के इस दिन। आपके लिए कहा गया पैसों के मामले में थिंक बिफोर यू स्पेंड, अगर ऐसा करेंगे कि जहाँ बिना सोचे समझे पैसे आप खर्च कर रहे हैं, भविष्य में चलकर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आपके लिए भी कहा गया है कि नौकरी के मामले में सक्सेस हासिल करेंगे आज।
0: तुला यानी लिब्रा, आज मेंटली आप काफ़ी क्लियर रहेंगे अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। जो लोग फैशन या लग्जरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं या बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अच्छा फ़ायदा आपको होगा और आज आपका भी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा।
1: वृश्चिक एंड स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आपके और समवन स्पेशल के बीच आज आपका रिश्ता जो है और भी गहरा होगा। एक ज़रूरी बात आपके लिए बताई गई है कि अगर अपने करियर को लेकर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, कीप योर प्लान्स फोकस्ड और साथ में हर किसी के साथ इसके बारे में डिटेल्स शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
0: यानी सेजिटेरियस, आज आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं जो है ये पूरी हो सकती हैं, बिजनेस में कुछ तेजी आप नोटिस करेंगे, इन्वेस्टमेंट का बड़ा फायदा हो सकता है।
1: और मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि आपका हार्ड वर्क धीरे धीरे जरूर पे ऑफ हो रहा है, यू गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द हार्ड वर्क जो आपने किया था और समवन जो आपको बहुत वैल्यू करते हैं वो आज आपके पास आएंगे किसी सलाह मशवरा के लिए, तो उनका साथ भी आप ज़रूर दीजिएगा। अ गुड डे इज प्लान्ड अहेड फॉर यू, सो आज के इस दिन को भरपूर इंजॉय आपको करना है।
0: कुमियन एक्वेरियस, डिजिटल या फिर ऑनलाइन बिजनेस में आप बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कैश फ्लो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और आज अपने सेविंग्स पर आप कुछ फोकस कर सकेंगे और इम्पोर्टेंट है कि आज अच्छी तरह से आप रेस्ट करें।
1: और इसी के साथ साथ फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है फॉलो योर हार्ट लेकिन रियलिस्टिक रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपकी क्रिएटिविटी स्टैंड आउट होगी जिसकी वजह से प्रोफेशनली आपको काफी अप्रिशिएट किया जाएगा। और साथ में पैसों के मामले में आपको एक सलाह दी जा रही है कि आज इमोशनल स्पेंडिंग बिल्कुल भी ना करें, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल स्पेंडिंग। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे। थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म,
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
3: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
4: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
3: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
5: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
8: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Lucifora mandarins, just $5 a kg. And Waddy's baked beans or spaghetti, 420 gram 3-pack, just $5 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
11: Celebrity Alarm. Hit it.
3: चलिए अब बारी है सेलिब्रिटी अलार्म की आज की आवाज़ के साथ भी हम एकदम तैयार हैं पहले आपको सुनाते हैं इनकी आवाज़ फिर उसके बाद बाकी बातें
12: पढ़ लिख कर थोड़ा बड़ा तो हो जाए समझ तो सके कि मयूर कुटुंब और उसके पिता में ऐसी क्या दुश्मनी थी करोड़ों की दौलत को गन समझ कर थूक कर
3: तो ये किसकी आवाज़ है आपको बताना है क्या आपको कुछ भी आइडिया
13: है या I know she's an actress
3: okay ये तो हाँ डायलॉग डिलीवरी से तो पता ही चल गया होगा उतना तो ऐसे ही पता चल गया होगा
13: तो अब आप बताएं मैंने एक क्लू दे दिया अब बाकी आप पूरा करो BF आंसर नाम की ये कौन एक्ट्रेस हो सकती हैं
3: आवाज हमने आपको इनकी सुना दी है और आपको बस इनका नाम जो है ये हमारे पास सेंड करना है 5599 पर याद रहे BF लिखना है सबसे पहले फिर आंसर फिर नाम तो एक बार फिर आपको इनकी आवाज हम सुना रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा
12: पढ़ लिख कर थोड़ा बड़ा तो हो जाए समझ तो सके कि मयूर कुटुंब और उसके पिता में ऐसी क्या दुश्मनी थी
3: तो ये कौन है जिनकी आवाज़ हमने आपको सुनाई अगर आपने आवाज़ पहचान ली है तो फटाफट हमारे पास अपना मैसेज सेंड कीजिए और इन्होंने तो क्लू भी दे दिया कि एक एक्ट्रेस है अगर नहीं पहचानी है तो क्या कर सकते हैं अभी हम इंतज़ार करते देखते हैं पहला गाना 5 मिनटों का है उसके बाद अगर आपकी हेल्प हम कर पाएँ इन एनी वट वॉइस फॉर यू टू आइडेंटिफाई द वॉइस तो ज़रूर करेंगे लेकिन आपको आवाज़ जो है इनकी ये पहचाननी है ना
13: बिल्कुल और जवाब जो है ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वैसे न्यूज़ हेडलाइंस भी हैं और उसके अलावा देयर समथिंग जो पहले के मिलान में अब छोटा होता जा रहा है
3: हैं
13: हाँ
3: समथिंग जो छोटा होता ग्लेशियस की बातें तो नहीं कर रहे
13: हैं इट्स नॉट ग्लेशियस
3: ओके
13: इट्स समथिंग जो हम सभी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
3: सूरज
13: नहीं,
3: सन सन कैसे छोटा होगा, वही तो मैं भी सोच रही हूँ।
13: क्या अर्थ छोटा हो रहा है?
3: ओह दैट वुड बी इंटरेस्टिंग।
13: क्या हम छोटे हो रहे हैं?
3: हम तो छोटे नहीं हो रहे किसी भी तरह, बड़े हो रहे हैं दिन ब दिन, इंसान जो है हर एक इंसान बड़ा हो रहा है। बट लेट्स सी क्या है ऐसा, इसके बारे में पता करेंगे थोड़ी देर बाद। 22 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर, हमारे पास पहले दो मैसेजेस आ चुके हैं। इमरान ने कहा है जूही चावला, नीलेश ने कहा है जूही चावला। क्या ये आवाज जूही चावला की है या नहीं, जरा सुनिएगा ध्यान से।
12: पढ़ लिख कर थोड़ा बड़ा तो हो जाए, समझ तो सके कि मयूर कुटुंब और उसके पिता में ऐसी क्या दुश्मनी थी, करोड़ों की दौलत को गन समझकर थूक कर।
0: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
15: मैं लाऊं अपना A game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: finance experience. Call 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड के नोचो में कल शाम एक फाइट के दौरान गन दिखाए जाने के बाद आर्म्ड पुलिस ने दो सबर्ब्स में सर्च ऑपरेशंस चलाए। बेकनहेड के माविक इयन माविक प्लेस पर लोगों के बीच हुए इस झगड़े के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद 13 किलोमीटर दूर ब्राउन्स बे के एरन रोड को भी कॉर्डन ऑफ किया गया, जहां लगभग 7 पुलिस कार्स और ईगल हेलीकॉप्टर ने इलाके को घेर कर तलाश शुरू की। पापामोआ में 2 घंटे के अंदर करीब 30 पॉलिटिकल होर्डिंग्स खराब करने के आरोप में 43 वर्षीय एक व्यक्ति पर विलफुल डैमेजेस के चार्जेस लगाए गए हैं। लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने टौरांग के इस व्यक्ति को थर्सडे को ही अरेस्ट कर लिया था, जिसे अगले महीने कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पॉलिटिकल होल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना इलीगल है और इस तरह के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को ऑल ब्लैक्स टीम जो है 4-2 से हार गई है। कल सुबह न्यूजीलैंड की हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ 43-28 से हुई। इसके अलावा आज सुबह इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराया और लगातार 8वीं बार टाइटल को अपने नाम कर लिया, या ये टाइटल 8वीं बार इंडिया ने अपने नाम किया है। दूसरी तरफ मेंस टीम का जो पहला T20 मैच अफगानिस्तान के खिलाफ आज सुबह खेला गया, जिसमें भारत की जीत 7 विकेट से हुई। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2 मैचेस आज सुबह खेले गए। ब्राइटन की शानदार जीत कोवेंट्री सिटी के खिलाफ 5-0 से हुई, जबकि मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau. Accurate traffic.
5: Kitchen Mania free installation.
6: Quite cloudy today, a few fine spells, high of 18 degrees. Into the city, motorways are fairly good so far. Northern 25 minutes, Constellation Drive to town. We're slow at Silverdale, heavy at Constellation and slow right to the bridge. Northwestern 35 minutes in from Massey, heavy there to Te Aratu and slow to the city. Southern 35 minutes, Manukau to town. Slow patches, Pampakura on and off to Mount Wellington and again at Green Lane.
5: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.

0: You filled the pinata before I sealed it, right?
1: No, you did.
0: Oh, I thought you did.
2: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
3: Versace, Lancome, Marc Jacobs, Cavalli, Guess, Elizabeth Arden, First Aid Beauty.
4: Oh, there's too many. Just say all the biggest names.
3: Oh, okay. All the biggest names in beauty, 15 to 25% off. Big Beauty Week, 9 to 15 September at Life Pharmacy.
5: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
6: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havil Jolion, Havil H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GW. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
7: Birthday greetings.
9: Iska birthday bhai?
10: Mera bhi birthday hai. Chalo line mein aa jao.
9: Happy birthday to you.
11: आज 14th of September, सबसे पहले आज अशोक जंगियानी मेडो बैंक में और रजनी काला जी हिल्सबरा में अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हमारी ओर से भी ये दिन आपको मुबारक हो.
12: और इसके अलावा वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तनीषा आपको विश करना चाहती है. अपना 17th बर्थडे आप मना रही हैं कैल्स्टन में. आज जन्मदिन के खास मौके पर बेस्ट विशेस आपको. डैड है जॉनी दत्त, मम्मी है सीमा, आपकी आजी है कलावती दत्त, इनकी ओर से मिल रहा है. हमारी हम टीम की ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तनीषा. ये दिन आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां जो है ये लेकर आए.
11: और इनके साथ आज मेरी छोटी बहन है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, जश्विन. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. पति हैं आपके नरेंद्र, बेटी हैं आपकी जियाना और बहुत बड़ा परिवार है सभी की ओर से. अ वेरी हैप्पी बर्थडे.
12: हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज आप जहाँ कहीं भी अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं.

0: So, काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म, क्योंकि हमने आपसे पूछा कि ये आवाज जो आज हमने सुनाई आपको, ये किसकी आवाज है।
1: अच्छा,
0: कमाल की बात ये है कि क्लूज में आपने ये कहा था कि ये एक एक्ट्रेस है, डायलॉग से पता ही चल जाता है, और मुझे लगा कि यू नो इजी हो जाएगा और लोग जो है मैसेजेस सेंड करेंगे विद द राइट नेम, विद द करेक्ट नेम। लोगों ने मैसेजेस तो किए लेकिन अभी भी नाम जो है ये गलत आया। देविका है, साथ में एल्विन है, श्वेता है, इसके अलावा हमारे पास कृष्णील आपका भी मैसेज आया है, निखिल है, आरती है, श्यामल है, आपने भी अपना मैसेज हमें सेंड किया है। अभी अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए। और आप सब ने कहा है जूही चावला। जब हमने पहले दो मैसेजेस पढ़े थे नीलेश और इमरान के, हमने उसी टाइम पर कहा था कि ये जूही चावला की तो आवाज़ नहीं है।
1: तो सुनाएं फिर से आप
0: एक आखिरी बार, ठीक है।
2: पढ़ लिख कर थोड़ा बड़ा तो हो जाए, समझ तो सके कि मयूर कुटुंब और उसके पिता में ऐसी क्या दुश्मनी थी, करोड़ों की दौलत को गन समझकर थूक कर।
0: तो ये आवाज किसकी है ये आपको बतानी है। और एक चीज तो आपने सही कही कि एक्ट्रेस है, कोई और क्लू अगर आपको देनी हुई इनके बारे में तो कैसे बताएंगे आप।
1: वेरी ब्यूटीफुल।
0: हाँ, एक्चुअली शी इज वेरी ब्यूटीफुल।
1: I think she went through a very difficult phase of her life also.
0: Medically, yeah, health wise. और एक कैंसर डायग्नोसिस जो इनका हुआ था, आफ्टर विच शी फॉट कैंसर, शी केम बैक, और उस दौरान भी ये थोड़ी यू नो गायब सी थी, बट देन शी केम बैक एंड शी डेफिनेटली स्पोक अबाउट इट।
1: आई थिंक टीवी पर भी उन्होंने एक रियलिटी शो होस्ट किया था
0: रिसेंटली।
1: ओके,
0: यस।
1: तो लो, काफी आसान हो गया। अब BF अपना आंसर और अपना नाम तब तक आप हमारे पास भेजे जब तक ये गाना एंजॉय कर रहे हैं।
0: यस, एक और एक क्लू अगर देना हुआ तो 90s के दौर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस में से एक ये है डेफिनेटली, और इनके हस्बैंड एक फिल्म मेकर है, कम्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री द हस्बैंड इज वेल, लेकिन फिल्म मेकर है ये। तो अभी जितना क्लू हो सकता था हमने दिया टू मेक थिंग्स ईजी, बिकॉज इसे स्पेसिफिक क्लूज देंगे तो नाम ही बता दें उससे अच्छा। बट क्या इतने क्लूज में आप पहचान पाएंगे कि आज की हमारी सेलिब्रिटी कौन है। वैसे हमारे पास रविनेश फ्लैटबुश से और विकी मनोरेवा से आपके भी मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेजेस के लिए।
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: मैंने बोला था कि कुछ है जो अब और छोटा हो गया है या हो रहा है वक्त के साथ धीरे धीरे.
2: मैंने कहा ग्लेशियर्स, तो आपने कहा नहीं वो उसकी बात नहीं कर रहे आप. फिर मैंने ऐसे अनुमान लगाया सूरज बोला, पर वो तो पॉसिबल नहीं है. फिर आपने बोला कौन हो सकता है, क्या इंसान छोटे हो रहे हैं या धरती छोटी हो रही है ना, तो है क्या सही जवाब?
1: जो अब साइज में छोटा हो रहा है इज द पैसिफिक ओशन.
2: छोटा हो रहा है,
1: पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है. अभी आप देखो, कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जगह की वजह से पानी का लेवल ऊपर जा रहा है.
2: हाँ.
1: अब पानी का लेवल ऊपर जा रहा है लेकिन पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है.
2: ऐसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा,
1: ऐसे पॉसिबल है. नेशनल ओशनिक एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बताया है कि पैसिफिक ओशन जो है इज मोर देन 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स.
2: ओके,
1: धरती का, पृथ्वी का एक तिहाई यानी 1/3 सरफेस जो है ये पैसिफिक ओशन इटसेल्फ कवर करता है, होल्डिंग रफली हाफ ऑफ ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड्स ओशन.
2: ओके,
1: ये पैसिफिक ओशन में है. एंड पैसिफिक का ओशन फॉर्म हुआ था अराउंड 200 टू 250 मिलियन ईयर्स अगो, और ये उस टाइम पर हुआ था जब सुपर कॉन्टिनेंट पांगेया ये टूटा था. एंड द एंशियंट सुपर ओशन जो है ये धीरे धीरे फ्रेगमेंट होना शुरू हुआ था. और जो पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है उसके पीछे वजह जो है इज बीनीथ द ओशन फ्लो. नए सी फ्लो फॉर्म्स फॉर्म होते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये एक दूसरे से खींचते हैं, अलाउिंग मोल्टन रॉक टू राइज एंड सॉलिडिफाई. और ये इतना बहुत धीरे धीरे इनफेक्ट ये श्रिंक हो रहा है. बट एक 2022 में एक स्टडी जो है ये हुआ था जिन्होंने सुपर कंप्यूटर का सिमुलेशन जो है ये यूज़ किया था, और फ्यूचर जो है ये प्रेडिक्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया था दैट पैसिफिक कुड क्लोज विद इन 200 टू 300 मिलियन ईयर्स.
2: ओके,
1: इवेंचुअली ब्रिंगिंग एशिया एंड अमेरिकाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सुपर कॉन्टिनेंट दे नेम्ड अमेजिया.
2: Oh, interesting.
1: Just imagine. तो एशिया और अमेरिका करीब आ जाएंगे.
2: जैसे जैसे ये होता हो जाएगा.
1: अभी तो 200-300 मिलियन ईयर्स ही बाकी है.
2: अच्छा, 200-300 मिलियन ईयर्स ही.
1: हाँ.
2: अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग.
1: पानी कम नहीं हो रहा है पैसिफिक ओशन में, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द ओशन बेसिन जो है
2: ये छोटा हो रहा है,
1: ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ
2: ओशन फ्लो बेसिकली. यस, राइट. फिलहाल समय की ओर देखें तो 8 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में. आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए लेकर आए थे. क्लूज हमने कई दिए, कोशिश भी की बिना सही जवाब दिए आपको थोड़ा हेल्प करे. सनी ने हमारे पास अपना आंसर भेजा रानी मुखर्जी लिखकर, फिर उसके बाद कुछ और लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे, थोड़ी देर बाद हम जरूर देखेंगे, पर गलत जवाब फिर भी काफी आए. बट द करेक्ट आंसर इज सोनाली बेंद्रे. विकास, आज गणेश चतुर्थी के शुरुआत के मौके पर आपने जिस गाने की फरमाइश की थी, हमने वो गाना जो है आपके लिए रखा, बट देन वी रियलाइज्ड कि वो तो विसर्जन वाले दिन ही सूट करेगा. इसीलिए आज ये गाना आप सबके नाम.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: अगर आप सोच रहे हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा एंड यू आर नॉट क्वाइट श्योर, तो आपको बता दें, इट्स गोना बी अ क्लाउडी डे, लिटिल बिट ऑफ शावर्स अंटिल आज शाम तक बारिश जो है होगी. सनसेट तो 6:11 PM पर होगा. करंट टेम्परेचर 13.1 डिग्रीज है एंड ओवरनाइट आज 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: आज नोएडा का एक शख्स है, शिवम मिश्रा इनका नाम है. इनकी ट्रेंडिंग कहानी जो है, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं. ये ट्रेवल कर रहे थे नोएडा से लखनऊ, और उन्होंने उसी दौरान एक वीडियो जो है ये बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की. एक कैब में, टैक्सी में ये जा रहे थे, और जब वीडियो इन्होंने बनाई तो उस समय पर ये दिखा रहे हैं कि ड्राइवर जो है ये सो रहा है.
1: है?
3: ड्राइवर सो रहा है.
1: Oh my God. अभी इस पे क्या ही बोलूं मैं.
3: ड्राइवर सो रहा है क्योंकि टैक्सी ये खुद चला रहे थे.
1: अच्छा.
3: तो उन्होंने बताया कि वीडियो में कहा, I'm traveling from Noida to Lucknow. I had booked a cab, but the driver has been driving since yesterday and was really tired.
1: Okay.
3: तब उन्होंने जाकर जो वीडियो है ये दिखाई कि ड्राइवर पीछे सो रहा है. ड्राइवर पीछे सो रहा है
1: और ये ड्राइव कर रहे हैं.
3: उन्होंने कहा, इन सिचुएशंस लाइक दिस आई डोंट थिंक यू शुड गेट एंग्री विद द ड्राइवर. इंस्टेड आई टुक ओवर द व्हील मायसेल्फ. मेरा भाई मेरे साथ बैठा है, तो भाई को भी उन्होंने कहा हाय या बोलो, और फिर यू नो नाराज होकर क्या करेंगे, मैंने टैक्सी बुक की थी. सो यू हैव टू ड्राइव मी ऑल द वे, कीप ड्राइविंग. तो उन्होंने ऐसा बोलने के बजाय मैंने कहा कि इंस्टेड I'll take turn. आप थोड़ी देर आराम कर लो. When you are fresh and energetic, आप बताना and then you can continue driving. तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे.
1: That is really nice though, na? I mean, it's a very good way of looking at it. अगर वो चाहते तो यही बोलते कि भाई आपको हायर किया गया है, आप हैं मेरे ड्राइवर, आप ड्राइव कीजिए, मैं क्यों करूँ. But on the other note, you have to think about the fact कि safety measures ज़रूरी है ऐसे situation में, क्योंकि long hours driving जो है आसान काम नहीं होता ना. और अगर कोई थक जाए, इवन अगर आप ऐसे ही रोड ट्रिप वगैरह के लिए भी जा रहे होते हैं, या न्यूजीलैंड में देख लो कितनी जगह पर इतने मैसेजेस होते हैं, इफ यू आर टायर्ड टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, है ना. और लोग अक्सर दो तीन लोग के ड्राइवर्स के साथ ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, सो दैट दे कैन स्विच एंड ड्राइव. अगर आप भी एक ड्राइवर हैं, इफ यू आर ऑन द रोड राइट नाउ, तो आपका वो ट्रिक क्या है जिससे जब आप टायर्ड होते हैं एंड यू आर ड्राइविंग अलोन, तो आप कैसे अपने आप को एनर्जाइज रखते हैं, या फिर आप अपना रेस्ट ब्रेक वगैरह जो है कैसे लेते हैं?
3: I have a co-pilot.
1: Co-pilot?
3: हाँ.
1: अच्छा, मतलब?
3: Co-driver.
1: Oh, you have a co-driver?
3: हाँ.
1: कौन है भाई जिनके साथ आप ट्रेवलिंग करते हैं?
3: मेरी बीवी ना.
1: ओहे यार, हम ट्रेवलिंग ही कितनी करते हैं, हम तो वो अलग बात है.
3: When I want to rest, वो ड्राइव करती है, but I can't rest.
1: सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है ये अलर्ट मोड पे रहता है ना.
3: सी, इफ आई एम ड्राइविंग, द फनी थिंग इज आई गेट टायर्ड. मैं थक जाता हूँ ना,
1: ऑब्वियसली
3: लंबे ड्राइव पर जब हम जाते हैं, मैं थक जाता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा मैं आराम कर लूँ. फिर उसके बाद बीवी आकर स्टीयरिंग व्हील पर बैठती है, मेरी थकावट वैसे ही चली जाती है. क्या आप रेस्ट क्या करूँ?
1: अच्छा, यू हैव टू स्पेसिफाई, ये क्या डर की वजह से कि बिकॉज ऑफ द डिमांड्स आई हैव व्हाइल आई ड्राइव, ये पास कर दो, वो दे दो,
3: नहीं,
1: ये खिला दो, वो चीजें ओके. तो आपको भरोसा नहीं मेरी ड्राइविंग पर?
3: नहीं, मैंने ऐसा कब बोला?
1: नहीं बोला तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं बोला, इशारे इशारे में काफी कुछ बोल दिया आपने.
3: यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, या भरोसा नहीं है?
1: नहीं भरोसा नहीं, इसीलिए तो डरते हैं.
3: इट्स जस्ट कि व्हेनेवर यू स्टार्ट ड्राइविंग, मेरी थकावट ऐसे ही खत्म हो जाती है भाई,
1: डर की वजह से
3: हो सकता है.
1: सात मिनट हो रहे फिलहाल हमारे स्टूडियोज में 8:00 और इधर बहुत से लोगों ने सुबह सुबह हमारे साथ प्रोग्राम में मैसेजेस जो ये भेजे थे अपने अपने, मोनिका है साथ में, लोकेश है, प्रिया, इमरान, विनिल मनुरेवा से वेरी गुड मॉर्निंग, शेखर आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, रेशमी है, शेल्विन आपका भी मैसेज आया था, साथ में चरीशा है, नितिका है, उसके अलावा नंदिनी ने मैसेज सेंड किया था, अरविंद जी हैं, जयंती जी आपका भी मैसेज मिला, वेरी गुड मॉर्निंग, रवि गुड मॉर्निंग टू यू, एंड लेश गुड मॉर्निंग आपके भी मैसेज के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो याद रहे हमने एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, अगर आप एक ड्राइवर हैं बाय प्रोफेशन, जैसे कि पता है बहुत से ड्राइवर्स हमें हमेशा सुनते रहते हैं, तो आप भी बताइए व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, अगर आप लंबे ट्रिप्स के लिए जाते हैं, थकावट से डील करने का आपका ट्रिक, आपका टिप क्या है टू अदर ड्राइवर्स, 5599 पर इफ यू कैन मैसेज और इफ यू कैन गिव अस अ कॉल तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक ये भी रिवील करेंगे ना
3: जी।

0: तो बड़ा ही कमाल का ये गाना, आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग, शिल्पा राव और साथ में अमित त्रिवेदी की आवाज़ में. एंड आई लव्ड द मूवी एज वेल. अमित त्रिवेदी बेसिकली बड़े इंटेलिजेंट कंपोजर है, आई वुड से. इनके कॉम्पोजिशंस जो है काफ़ी अलग, काफ़ी खूबसूरत रही है, और उनमें से एक ये जो उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश फिल्म के लिए किया था. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी. इट्स समथिंग जो आपको बताती है कि बीट एनी एज के आप हो, बीट एनी जेंडर के आप हो, बीट आप कुछ नया अगर लाइफ में करना चाहते हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे करते हैं, शुरुआत करनी ज़रूरी है. एंड वंस यू स्टार्ट, तो आपको उसमें पूरा डेडिकेशन जो है ये देना भी ज़रूरी है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी. श्रीदेवी जो है इन्होंने इसमें काम किया था. अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. लेकिन अब फिलहाल
1: आज हम बातें करेंगे अपने बारे में. हम सभी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बातें जो है ये करेंगे. और आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हम लोग जो हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू वंडर हाउ टू पुट इट अक्रॉस टू यू, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर. क्या हमारे में ये आदत है, ये हमारी हैबिट है, दैट वी कीप ऑन गोइंग अबव एंड बियॉन्ड फॉर वर्क इवन दो वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट.
0: ओके,
1: यू नो, ज़रूरत से ज़्यादा काम क्या हम करते हैं हालांकि और उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हो, तो वो आज आपसे जानना चाहते हैं क्या
0: like
1: ये
0: नौकरी
1: पैशन?
0: नौकरी की बात करें, नॉट योर बिजनेस, क्योंकि अपने बिजनेस को लेकर तो हर कोई पैशनेट होता है.
1: ऑब्वियसली होता है, मैं नौकरी की बात
0: कर रहा हूँ. But if you're working for someone else,
1: हाँ, क्या ये पैशन है या फिर ये प्रेशर है, क्या है ये?
0: Okay.
1: क्योंकि मैंने सुना है कि यू नो इंडियन कम्युनिटी में हम लोग जो है जरूरत से ज्यादा काम हमेशा करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं. तो क्योंकि शायद हम जहां से आते हैं या आप जहां से आते हैं वहां पर जो वर्क कल्चर है कुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट. एंड हालांकि आपने जगह बदल ली और यहां पर वर्क कल्चर शायद कुछ और होगा, लेकिन वो आपने नहीं बदला. सो आर वी टू पैशनेट अबाउट आवर वर्क and we keep on doing despite not getting paid, तो ये क्या है? क्या ये passion है या pressure?
0: Okay, so what are your thoughts? What's your take on this? Do let us know. आज का हमारा what's your take topic है ये, और इसके लिए आप तैयार रहिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए. आप हमें कॉल कर सकेंगे थोड़ी देर बाद 0800-004-866 पर, और अपना take आज के topic के बारे में आप जरूर share कर सकते हैं.
2: Mornings made better.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: 80s के रेट्रो गाने.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Ka āwhinatia a Bunnings kia whakapiki ai tō māra I tēnei kōanga. Bunnings helps you to elevate your garden in spring. It's a great time to get the one, soil, ready and old, or new garden beds.
2: You reset, you recycle, you dig, and start all over.
1: Whether you're thinking about planting huarākau, fruit, huawhenua, veggies, putiputi, flowering plants, or rākau, native trees, we've got what you need. Come into Bunnings and have a kōrero with us to get your garden humming this kōanga.
3: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Naya hybrid dhoon rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Merukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada Kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
6: What's better than getting the latest Galaxy phone? Getting a bonus 50-inch Samsung TV with it from Spark. Buy the new Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra or S26 Ultra interest-free over 24 or 36 months with an eligible pay monthly mobile plan and you'll get a bonus 50-inch Samsung TV. New Galaxy phone, new Samsung TV from Spark. Minimum $99 deposit, TV delivered separately. T's and C's apply.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: 21 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का टाइम अब हो चुका है और टॉपिक हमने तकरीबन 2 मिनट पहले ही आपको बता दिया. अब होपफुली आपने इसके बारे में कुछ सोचा होगा और तैयार होंगे अपना जो टेक है ये शेयर करने के लिए. तो लाइन सब हम खोल रहे हैं. आओ 800-00-HUM और 800-00-4866. क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हम पर टू परफॉर्म. एंड जब आपने न्यूजीलैंड में काम करना शुरू किया था डिड यू फाइंड योरसेल्फ वर्किंग वे हार्डर और स्टेइंग लेट कंपेयर टू जो लोग पहले से वहाँ पर काम करते थे. और यू नो डू यू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स क्योंकि आपको जेन्युइनली अपने काम से प्यार है या फिर आपको ये फील होता है कि यार बॉस क्या बोलेगा या आप नो बोलने में मना करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं. ना ये सारी चीज़ें जो हैं. कभी आपने कोई ऐसा जॉब इंटरव्यू किया है जहां आपसे कहा गया हो कि यू नो कि काम आपको इतना भारी काम करना पड़ेगा इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा लेकिन जो सैलरी आपको ऑफर की गई
11: वो अप टू द मार्क नहीं है. इज टू व्हाट
10: इट्स बेसिकली लाइक पीनट्स.
11: इट्स नॉट व्हाट यू आर गिविंग टू द कंपनी इज व्हाट कंपनी जो है आपको रिटर्न दे रहा है सैलरी के हिसाब से.
10: गुड मॉर्निंग. हेलो.
12: गुड
11: मॉर्निंग जी.
12: जस्ट माय टेक. मुझे लगता है कि आपका बैकग्राउंड प्लेज अ बिग रोल यहाँ पे. हम जहाँ से आते हैं आई डोंट फील इट्स अ डेडिकेशन और हमारा जो पैशन टूवर्ड्स वर्क है बट इट्स अ हैबिट वी बिल्ड बिकॉज हम जहाँ मैं तो इंडिया से आती हूँ तो बेसिकली हम लोग को ऐसे कुछ यहाँ पर जब मैं जॉब करती हूँ तो एक पर्टिकुलर टास्क होता है बस उसको ही करना है एंड दैट्स इट योर डे इज डन लाइक ओनली योर जॉब. पर हम जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता कि ये सिर्फ मेरा जॉब है या वो तुम्हारा जॉब है. सबको सब कुछ करना होता है. सो वी हैव बिल्ड दैट हैबिट एंड व्हेन वी कम हियर वी फील कि हमसे कम करते हैं लोग. तो यू नो वी लाइक क्योंकि उनका वो जो वर्क कल्चर है वैसे है ना कि ये आपका जॉब है, ये आपका पर्टिकुलर टास्क है, आपको उतना ही करना है. सो बिकॉज वी हैव डिफरेंट नेचर बिल्ड इन अस, तो हम सारा कुछ करना चाहते हैं, सारा कुछ, बिकॉज दैट्स आवर हैबिट.
10: अच्छा, हमारी आदत की वजह से, ये बताइए, हमारी ये जो हैबिट है आप जो कह रही हैं, क्या उसको हमारे कोलीग्स किस तरह से देखते हैं या आपके कोलीग्स किस तरह से देखते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क इन योर ऑफिस?
12: मुझे लगता है कि दे थिंक दैट वी मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू प्रूव आवरसेल्फ, कि उनको लाइक दे एक्चुअली फील, जहां से मैं देखती हूँ जैसे हम बात करते हमारे कॉलीग से बात करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर होता है ज्यादा करने का. तो वो हमें, मुझे बोलते हैं मेरे कॉलीग कि इतना क्यों करती है तू, तेरी वजह से हमको भी करना पड़ता है, यू नो. तो मैं बोलती हूँ मैं ऐसे कुछ इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कुछ नहीं करती, मेरी आदत है ऐसे काम करने की ना, तो मैं करती रहती हूँ. सो दे से कि नहीं, बिकॉज यू आर डूइंग इट वी हैव टू ऑल्सो डू इट. तो हमारा इंडियन, जहाँ से हम आते हैं, हमारी आदत है वैसे ना कि वैसे ही करना होता था इंडिया में ना, कि बॉस को बोलने से पहले काम खत्म कर दो, क्योंकि डांट तो पड़ती थी.
10: तो बेसिकली आप कह रही हैं ये पैशन नहीं है, ये हैबिट है.
12: हैबिट है मेरी तरफ, मेरा ये मेरा टेक है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई एम नॉट सेइंग, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ मैं. दिस इज माय थिंकिंग कि ये हमारा बिल्डिंग नेचर है.
11: दिस इज योर टेक बेसिकली ना कि
10: चलो. थैंक यू सो मच मैम आपके कॉल के लिए, आपके टाइम के लिए.
11: एटलीस्ट दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. वी आर नॉट सेइंग कि सब आपसे एग्री करेंगे, सब आपसे डिसएग्री करेंगे. द सेगमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट्स योर टेक. तो ये आपकी राय है जो आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग
11: जी. बढ़िया जी, आप कैसी हो?
9: I think I agree with the caller just before. I think it is a habit. But मुझे ऐसा क्यों लगता है the habit? I think in general, not naming any other community or society, but you know, race. I think Indians in generally are hardworking. और उसका reason to an extent, I think जहाँ तक मेरी सोच मुझे लगती है, I think it's because of the population that we have. You know, because you grew up in such a big country where you have competition around you right from your school age all the way to your working age, you know. आपको अपने आप को दूसरे से बेटर प्रूव करने के लिए आपको वो कंपटीशन शुरू से करना पड़ता है because of the population. Because अगर आप नहीं करोगे तो there is always second person and then third person and the fourth person is available to do that, you know. तो मुझे ये लगता है क्योंकि आप उस प्रेशर में, उस कंपटीशन में ग्रो अप होते हो, तो वो उसकी वजह से आपकी वो आदत हो जाती है, वो हैबिट बन जाती है कि आपको करना ही है. और इट्स नथिंग बैड, लाइक इट्स नॉट रॉन्ग. मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, बिकॉज हार्ड वर्किंग इज समथिंग दैट्स गोना टेक यू फार. आई जस्ट रियली थिंक, बट समटाइम्स आई डू फील कि कभी कभी, जैसे आपने कहा पहले, कि कभी कभी आप काम इतना ज्यादा करते हैं और आपको उसके हिसाब से कभी मिलता नहीं है. बट आप उसके बारे में सोचते जरूर है, या यू थिंक अबाउट इट इन यू से कि ओह माय गॉड आई एम डूइंग सो मच वर्क एंड नथिंग इज हैपनिंग. बट देन इट्स योर नेचर, राइट? योर नेचर इज टू वर्क हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ एंड इट डज गेट पेड. मे बी शायद उस टाइम पे नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन इन फ्यूचर आपको मिलता है, इन अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन या इन अ फॉर्म ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और इन फॉर्म ऑफ मोर एक्सपीरियंस इन व्हाट यू डूइंग. सो इट्स हार्ड वर्क इज नेवर गॉन इन टू वेस्ट. वो आपको आज नहीं तो कल उसका हार्ड वर्क का कुछ ना कुछ मिलेगा ही. बट मुझे इन जनरल लगता है कि हमारी रेस जो है, हमारा कॉम्पिटिशन जो है, जो पॉपुलेशन है जिसमें हम ग्रो हुए हैं, उसकी वजह से वी आर वेरी हार्ड वर्किंग. And I can also give you an example of another race, like Chinese people. If you look at their population and the amount of hard work they put in, says a lot. Same as us, you know, because hamare paas itna competition hai around, you have to prove, you have to do it. But like I said, you know, it's not a waste. आज नहीं तो कल आपको उसके उसको मिलेगा जरूर, उसका फेवर मिलेगा आपको. एंड आई बिलीव इन दैट.
10: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपको शेयर करने के लिए. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो है ये अभी तक दोनों से सुनने को मिली है. एंड कहीं ना कहीं अब ये यू नो इट्स मोर सो गोइंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जहां पर इट्स नॉट पैशन पैशन बट द वे
11: वी हैव बीन ब्रॉट अप लिव्ड. या
10: We've lived in our previous countries. उसकी वजह से शायद इस तरह का वो कल्चर या इस तरह का कल्चर हमें बिल्ड हो गया है दैट वी कंटिन्यू विद दैट. हालांकि हमने देश बदल लिया, काम जो है नौकरी जो है ये बदल ली, काम करने का तरीका नहीं बदले.
11: Yeah. So, आप भी अपनी राय जो है आज के टॉपिक के बारे में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पर. बट जस्ट इन केस इफ यू गॉट समथिंग टू शेयर एंड यू कांट गिव अस अ कॉल तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर दीजिए. और जैसे जैसे इस घंटे प्रोग्राम में समय मिलता रहेगा वैसे वैसे आपके मैसेजेस जो है ये हम शेयर करते हुए चलेंगे.
13: अपना ए गेम
7: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Accurate traffic.
2: Auckland Pet Expo this weekend.
3: Quite cloudy today, a little sunshine, high of 18. Coming in on the southern motorway, got a crash after Princes Street coming in, blocking the left lane. We're fine to Papatoetoe, but then quite heavy there to Green Lane, 50 minutes from Manukau to the CBD. Northwestern 37, Massey to town, slow all the way from Massey, heavy patches to St. Luke's. Northern 32, Constellation to town, heavy at Silverdale and Constellation to the bridge.
2: Auckland Pet Expo, Auckland Showgrounds this weekend. PetAnimalExpo.co.nz.
4: Sona Sansar Papa टोटियों के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
8: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $2.99. Iceland fridge freezer, just $2.99. My Dear washing machine, just $2.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Tūriki. Altogether Auckland.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoetoe and Hamilton.
12: The Rush Hour आपके लिए लेकर आ रहे हैं on the Breakfast Show with Vijay and Pooja. और इधर 20 मिनट टिपकी बाकी है हमारी स्टूडियोज में ठीक 9 बजने में. तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज का व्हाट्स अ टेक टॉपिक, इसे हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं. जितने लोगों ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, थैंक यू सो मच. और याद रहे कि कल एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे.
13: बिल्कुल जुड़ेंगे. और भी बातें जो हैं लाइफ के, या फिर एक और ऐसे पहलू पर करेंगे जो हम पर कहीं ना कहीं असर जो है ये करता है. तो ये सारी चीज़ें हर दिन होती हैं. बाय द वे, एक नया हफ्ता शुरू हुआ है. इसी फ्राइडे को द बिग ड्रॉ इज हैपनिंग.
12: व्हाट बिग ड्रॉ?
13: पता चलेगा वो कौन है जिनको टू रिटेन या टिकट्स टू वनुआतु मिल रहा है.
12: लास्ट वीक कंपटीशन फिनिश हुआ, सो इस वीक फ्राइडे को नाम पता चल जाएगा फाइनली, बिकॉज इट वाज डन ऑन रोवा एंड मोर देन 5,000 एंट्रीज जो है ये आई हैं. सो इट नीड्स टू बी स्कैन्ड एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी डन एंड देन द ड्रॉ विल हैपन. और ऑन द अदर हैंड, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई जस्ट रेड. क्या आपको पता है लाइट जो बोलते हैं ना, ये जो लाइट हमारी स्टूडियो में भी है,
13: हाँ हाँ,
12: ये हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने ये कहा है कि लाइट जो है, इट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू आवर हेल्थ एज फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक एंड एयर वी ब्रीद. तो क्यों इन्होंने ये कंपेरिजन किए हैं और क्यों इतना जरूरी है ये लाइटिंग हमारी हेल्थ के लिए, ये जानेंगे थोड़ी देर में.
14: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: Accurate traffic.
2: Leap Motor electric vehicles are unignorable.
3: Sunny patches on a mostly cloudy day, a high of 18. Southern Motorway coming in, a crash after Princes Street blocking the left lane. We're very heavy Monaco to Princes. Clear to Ellerslie, then heavy again from there. 50 minutes Monaco to the CBD. Northwestern, half an hour Massey to town, slow from Te Aratu, heavy at Partiki and Point Chev. Northern at 28 Constellation to town, heavy there to Waido Valley, then slow to the city.
2: Buy a Leap Motor this month, pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
4: Sona Sansar Papa Tutu के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
8: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
9: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: तो मैंने कहा था कि आपको बताएंगे कि क्यों हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं जिनका ये कहना है कि लाइटिंग जो होती है ये हमारे हेल्थ के लिए एज इम्पोर्टेंट है एज द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ। एक्चुअली ये फॉर्मर हार्वर्ड के फॉर्मर प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर मार्टिन मोरहेड। और डॉक्टर मार्टिन ने कहा है कि मॉडर्न होम्स जो है आर इंक्रीजिंगली फिल्ड विद व्हाट ही कॉल्स जंक लाइट।
13: अच्छा,
12: पर्टिकुलरली ऐसा लाइट जो एलईडी बल्ब्स या हमारे स्क्रीन्स के जरिए जो है हमारे आसपास रहता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्टिन, वी आर गेटिंग मच लेस एक्सपोजर टू द रेड एंड इन्फ्रारेड पार्ट्स ऑफ लाइट जो नेचुरली हमें सनलाइट से मिलता है, आग से मिलता है या जो ट्रेडिशनल बल्ब्स होते थे ना उससे मिलता है।
13: जी,
12: इनका कहना है कि स्पेंडिंग मोर टाइम आउटडोर्स स्पेशली नेचुरल लाइट पाने के लिए इन द मॉर्निंग, ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि अच्छी नींद आती है इससे और लाइटिंग का एक कनेक्शन होता है हमारे मेंटल वेलबींग के साथ। जब लाइट हम देखते हैं स्पेशली सूरज की किरणें, इट्स सच अ पॉजिटिव थिंग टू सी अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अगर सनराइज देखो एंड यू सी दिस ब्यूटिफुल लाइट अर्ली इन द मॉर्निंग तो आपको ऐसा फील होगा कि यू नो देयर इज समथिंग अवेकनिंग इनसाइड यू। आप एक ऐसा ब्यूटीफुल फील जो है ये पाते हैं कि कुछ खूबसूरत आपके अंदर यू नो इट्स जाग रहा है बेसिकली। और वो जो कनेक्शन है वो आप लाइट के साथ कर सकते हैं।
13: अच्छा, एक बात बताओ
12: जी,
13: थोड़ा सा आपको डिबेट कर रहा हूँ मैं टॉपिक से,
12: बोलिए।
13: आपको आपके अंदर ज्यादा खूबसूरत कब जागता है, कुछ जब आप सनराइज देखती है या सनसेट देखती है?
12: आई थिंक मेरे लिए इट वुड बी सनराइज। अनफॉर्चुनेटली मेरे को सनराइज इतना देखने को नहीं मिलता है, गेस दैट्स व्हाई, बट सनसेट आई गेट टू एक्सपीरियंस एवरी नाउ एंड देन, तो शायद मेरे लिए इट्स बीन अ नॉर्मल थिंग। बट सनराइज बहुत कम देखने को मिलता है बिकॉज मंडे टू फ्राइडे बिफोर सनराइज हम स्टूडियोज पहुंच जाते हैं.
13: नहीं, आप बाहर निकलकर देख सकते
12: जा
13: हैं,
12: सकती हूँ, बट देन आई डोंट डू दैट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इफ आई गो आउट एंड वॉच द सनराइज तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा ना.
13: गाना
12: बजता रहे, फिर आप ही शो करेंगे अकेले अकेले. और द अदर थिंग इज वीकेंड्स में मैं सनराइज से पहले उठती नहीं हूँ. मैं सनराइज के बाद उठती हूँ.
13: ओके,
12: तो या आई वुड से दैट. बट एनीवेज, गेटिंग बैक टू दिस इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो पब्लिश की गई है, और डॉक्टर मार्टिन का कहना है कि ये एक रिसर्च इन्होंने की थी जिसमें ये सजेस्ट किया था कि अगर आप अपनी लाइटिंग जो है खासतौर पर इवनिंग के समय बदल दें, वोमा लाइट्स, ब्लू फ्री लाइट्स ये इस्तेमाल करें, तो ये आपके स्लीप को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, एजिटेशन रिड्यूस कर सकता है, और पर्टिकुलरली अमंगस्ट ओल्डर पीपल, जो एल्डरली लोग हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है. एंड ऑन द अदर हैंड, इन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि सम ऑफ दीज क्लेम्स आर स्टिल बीइंग रिसर्च्ड. इसका मतलब ये नहीं कि एलईडी लाइट्स जो है ये ऑटोमेटिकली हार्मफुल है, लेकिन बेटर है या नहीं वो ज़रूर उस पर अभी जाँच जो है ये चल रही है. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आउट ऑफ दिस आर्टिकल दैट वी कैन गेट इज get plenty of natural daylight lighting, basically daylight जो ये आप explore करें during the day, और रात के समय blue light और warm lights जो है ये आप इस्तेमाल करें, कम करें bright lights जो है इसका इस्तेमाल कम करें. and before bed don't use your devices or screens, especially TVs वगैरह भी ये आप before bed अगर ना देखें at least an hour before your sleep time, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको सोने में आपकी आंखों को रेस्ट मिलता है, सोने में आसानी होती है.
13: So there are some things, कभी-कभी it's very important to read.
12: Yeah.
13: हम लोग आजकल क्या है, वीडियोस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं.
12: हाँ.
13: I'm talking about all of us, जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, वीडियोस पर, फोटोज पर, इन पर हम ज्यादा डिपेंड करते हैं कि वहीं से स्टोरी मिल जाएगी, पढ़ने का एफर्ट भी हम नहीं ले रहे हैं.
12: एग्जैक्टली. तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना है बिफोर योर बेड टाइम, मतलब सोने से पहले, रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग. And this is something you can do as a family. If you've got kids around, unko bhi aap encourage kar sakte. Read anything, pick up anything and start from anywhere. So, a very interesting article. We hope ki isse aapko bhi kuch seekhne ko mile.

0: accurate traffic.
1: Kitchen Mania free installation.
2: Lots of cloud, a little sun, a high of 18 today. Southern motorway coming in. We had a crash after Princes Street blocking the left lane. It's been sorted, but still quite heavy Manukau to Otahu, and then heavy again Ellerslie through the green lane. 44 minutes Manukau to the city. Northwestern 26 in from Massey, heavy Pātiki to Point Chef, then slow from there. Northern 26 in from Constellation, heavy there, slow all the way from Greville.
1: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
3: Coffee? The usual?
4: How about the unusual?
5: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Poke Kohe, where dreams begin.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मैनुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मैनुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है.
8: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
9: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
7: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
10: Time check.
11: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
12: Good morning, it's Sivatik Nobajre here.
10: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 9. Auckland City Rail Link appears to have passed its first major test. There have been no reports of any issues for commuters using the service on their way to work this morning. Officials were expecting thousands of passengers to give the CRL a thorough workout from when it opened just after 5 a.m. The Financial Services Council is welcoming Labor's plan to strengthen KiwiSaver. The party wants employer contributions to continue even when workers reduce or pause their own payments, along with a gradual increase to 6%. Deputy CEO Amy Hines says it's a great idea.
14: We've strongly advocated for that to happen, and it's particularly important that those measures support New Zealanders through different stages of their lives. That includes parental leave, but also working beyond 65 and also for self-employed New Zealanders.
13: Rakaia River Bridge has reopened on State Highway 1 in Canterbury. It was closed after a serious crash blocked the lanes in both directions just before 7 a.m. Motorists are warned to expect delays until congestion is cleared. The Duchess of Sussex has posted an Insta video of a family life in the UK to Wham's Wake Me Up Before You Go-Go. It begins with her and Prince Harry walking along a country path with their dog, then to some mud puddles splashing, a crackling fire, Archie running towards deer, Lilibet riding her bike with a doll on the back, and river fishing. In sport, redemption for Hayden Wild, who's won the Ironman 70.3 World Championship for the first time. The Kiwi triathlete is delighted to win in France after finishing second in Taupo 2 years ago.
15: Yeah, it was tough, you know, in front of a home crowd, but to finish off in front of Christian in yellow was super satisfying.
13: And to Rugby League with Machinery House, the Warriors host the Knights at Eden Park on Sunday in week two of the NRL Finals, with a winner to face the Panthers, who beat the Roosters 19-12 last night.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: याद रहे सुपर सिटी ऑकलैंड में आज बताया जा रहा है बादल ज्यादातर छाए रहेंगे और लिल बिट ऑफ शावर्स जो है ये होगी अंटिल दिस इवनिंग. सनसेट आज का होगा एट 6:11 PM पर एंड ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज. करंट टेम्परेचर 13.5 डिग्रीज है.
10: The breakfast show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
10: What's going on? क्या बकते हो?
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: Oh my God, you know, I came across this story on Friday only. और मैंने तब से इसको बचा के रखा था कि आज जब मंडे होगा और आपके लिए हम क्या भक्ति वो लेकर आएंगे ना, तब मैं ये स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी. And I completely forgot about it until a few seconds ago, जब मुझे पता चला कि यार मेरे पास था, मैंने कहीं पर तो इसे सेव किया था, so let's find it out. And मुझे मिला तो I was like, मेरे को तो इसके बारे में बात करनी है. Apparently Friday को मैंने ये देखा, ऑनलाइन रिपोर्ट किया गया by one of leading news channels here in New Zealand. और इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिन्होंने एक वीडियो कॉल जो है इसकी रिकॉर्डिंग की थी और इसे इन्होंने ऑनलाइन डाला और इन्होंने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हुए इसका कैप्शन दिया था, जस्ट हैपेंड टू मी. अपेरेंटली एक ऑस्ट्रेलियन लॉयर है हु वाज इन अ मीटिंग विद हिज कलीग्स, प्रोबेबली इट्स फ्रॉम अ लॉ फर्म, दैट्स व्हाई ये लॉयर प्रोफेशन जो है इसे अटैच किया गया स्टोरी के साथ. तो दे वर हैविंग अ मीटिंग, टीम मीटिंग इनका जो ये चल रहा था, एंड देयर वाज दिस गाय हु वाज रिकॉर्डिंग दिस होल कन्वर्सेशन. क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन लॉयर है ये अपने टॉयलेट से इस जूम कॉल को अटेंड कर रहे थे.
17: अच्छा,
12: तो इन्होंने इसका वीडियो शायद इसी वजह से बनाना शुरू किया. एंड व्हेन ही केप्ट ऑन गोइंग ही सेड दिस वन एंड देयर इज मी एंड देन देयर इज दिस गाय, ऐसा उन्होंने बोला. एंड ही व्हेन फिल्म्ड इट तो इन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है इन्होंने पहले तो अपना लैपटॉप नीचे रखा, then he pulled his pants down and sat on the seat and he was attending to his business. जब सब जितने भी लोग जूम कॉल पर थे सब घबरा गए और उन्होंने उनको बताया कि भाई आपका कैमरा अभी भी ऑन है. And then he said like, you are kidding me. And इन्होंने from the seat he rushed towards his laptop और इन्होंने कैमरा बंद किया कि डायरेक्ट इन्होंने कॉल ही एंड कर दिया मेरे ख्याल से, बिकॉज आई कुडंट कंटिन्यू विद द वीडियो, बिकॉज जितना था उतना ही देखा मैंने. बट सम ऑफ हिज कॉलीग्स अपेरेंटली वर मोटिफाइड, कुछ तो एकदम सन्नाटे में चले गए कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया अभी, जबकि अदर्स डिडंट रियली पे अटेंशन कि हुआ क्या था. दैट वॉज द इंटरेस्टिंग बिट. सो ये वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर और ये ऑस्ट्रेलियन लॉयर जो है इनकी कहानी भी सामने आ रही है. आई जस्ट डोंट नो, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब कोई वीडियो कॉल पे होता है, बिकॉज वी ऑल्सो डू सर्टन ऑनलाइन मीटिंग्स एंड स्टफ, तो उस दौरान हम काफ़ी श्योर होते हैं कि वीडियो ऑन है या वीडियो ऑफ है. मी फॉर इंस्टेंस आई विल पे अटेंशन टू इट कि मेरा मीटिंग ज्वाइन करने से पहले मेरा वीडियो ऑफ हो और मेरा माइक म्यूट पे हो, बिकॉज आई नो कि एनी टाइम मैं कुछ भी बोल सकती हूँ ना. तो अपना खुद से खुद की दुनिया में भी हूँ मैं, आई एम नॉट इवन अवेयर कि मीटिंग में क्या चल रही है, तो उस हिसाब से भी रिएक्ट कर सकती हूँ. सो आई मेक श्योर आई डू दैट. मुझे समझ भी नहीं था इनको कैसे नहीं पता चला कि ही वॉज ऑन कॉल एंड ही डिडंट स्विच ऑफ हिज वीडियो.
17: अरे ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने उस टाइम पे.
12: और देखो कितना महंगा पड़ा इनको ये.
17: क्या महंगा पड़ा?
12: He has become an international news now.
17: Obviously.
12: For a very wrong reason.
17: सोचो, he's so passionate about his work. पिछले घंटे ही हम या हाँ पिछले घंटे हम बातें कर रहे थे.
12: Passion या pressure?
17: इसको
12: वेरी ट्रू. 7 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. आज की क्या वक्त है स्टोरी आपके लिए हम लेकर आ रहे थे. फिलहाल चलिए अब थोड़ी देर बाद व्हाट्स अप ऑकलैंड आपके लिए लेकर आएंगे.

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो चलिए देखते हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जिसका हिस्सा आप ज़रूर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि श्री राम मंदिर यहाँ पर 11 ब्रिक्सिट हैंडरसन यहाँ पर गणेश उत्सव जो है ये मनाया जाएगा कल यानी 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर तक एवरी नाइट 7:20 PM से 9 PM तक और फाइनल डे जो है 20 सितंबर को यहाँ पर सुबह 9 बजे से पूजा की शुरुआत होगी। गणेश विसर्जन ये दिन में 12 बजे जो है ये किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए या जानकारियों के लिए आप राम मंदिर को ज़रूर संपर्क कर सकते हैं।
3: इसके अलावा ऑकलैंड आर्य समाज द्वारा सालाना वेद प्रचार जो है के होने जा रहे हैं 28 सितंबर से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एव पापाटोईटोई में आचार्य वीरेंद्र कुमार जी रहेंगे और साथ में 30 ईयर्स ऑफ आर्य समाज जो न्यूजीलैंड में है इसका सेलिब्रेशन भी होने जा रहा है सैटरडे 3 अक्टूबर को। तो इस पर और भी डिटेल्स आने वाले दिनों में हम आपको जरूर देंगे।
2: नोट शो भारतीय संगम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गणेश

0: मूर्ति सेलिब्रेशंस और ये रहेगा 19th ऑफ सितंबर को, यानी कि ये इसी सैटरडे को होने जा रहा है, जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। दिन में 11 बजे से ताकापुना वो मेमोरियल हॉल, 7 द स्ट्रैंड ताकापुना, यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, जहाँ आपके लिए पार्किंग बिल्कुल मुफ्त में है और एंट्री भी बिल्कुल मुफ्त है। दिन में 11 बजे से, याद रहे, यहाँ पर गणेश पूजा और सत्यनारायण पूजा के साथ प्रोग्राम की शुरुआत जो है ये होगी और इसका हिस्सा आप शोली बन सकते हैं।
1: 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आज से आरंभ होगी भारतीय मंदिर पर। ये जो भागवत कथा है, ब्रज रास रसिक डॉक्टर श्री कृष्णा किनकर जी से आप सुन सकेंगे, श्रीधाम वृंदावन से, जो कि नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और 100 ईयर्स ऑफ पिछवाई का सेलिब्रेशन जो है ये भी रहेगा इस दौरान, तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं।
0: और याद रहे, अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आप अन्य लोगों तक अगर पहुंचाना चाहें तो हमारे पास ईमेल अपना सेंड कर सकते हैं buzz@hamfm.com पर, buzz@hamfm.com पर। बट बिफोर यू मूव ऑन, आपको याद दिला रहे हैं हम कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर को रहेगा एट वैदिक सेंटर, यानी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को वैदिक सेंटर पापा टोईटोई में। और रिकॉर्डेड कलाकारों के जो कीर्तन है ये आप रोवा ऐप पर हम फीज कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे। आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर हमारी हम टीम भी रहेगी। सभी के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, आपको कोई एंट्री फी नहीं पे करनी है, बस यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट्स और कावा वगैरह जो रहेगा वो ऑन सेल रहेगा, अदरवाइज दी एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, आ सकते हैं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए और यहाँ पर देखने के लिए कि कीर्तन रिकॉर्डिंग जो ये कैसे की जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड आपको इनाम जीतने के मौके जो है ये भी मिलेंगे।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: देखो हम आ गए।
2: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं है उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया
5: अभी, ब्रांड हो गया ना
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
8: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। That's commonwealthvault.co.nz।
1: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
2: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
1: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
3: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
2: ये आखिरी
1: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। Distribution partner, Forum Films. Rating TBC.
4: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: फिलहाल 21 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजकर, आज है मंडे 14th of September, और आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जहां पर आपके नाम व्हाट्स गोइंग ऑन का ये सफर हमने किया है इस घंटे. थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आज का डेली राउंडअप भी, और खबरों के मामले में क्या कुछ आज सुबह से हमारे हाथ लगाई गई भी आपके साथ हम जरूर शेयर करते हुए चलेंगे.
3: पिछले साल आमिर खान एक पैन इंडिया सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट डिस्कस कर रहे थे लोकेश कनगराज के साथ, आपको याद होगा, कल इसके बारे में बातें की थी. मीटिंग्स चली, नरेशंस हुए कई महीनों तक, लेकिन बाद में चलकर स्क्रिप्ट इश्यूज कुछ हुए एंड प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया गया. अब खबर आ रही है कि आमिर खान एक बार फिर एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट जो है ये डिस्कस कर रहे हैं.
2: ओके,
3: एंड ये प्रिलिमिनरी डिस्कशंस है साजिद नडियाडवाला के साथ एक एम्बिशियस सुपर हीरो फिल्म जिसे आर बाल्की डायरेक्ट करेंगे. आर बाल्की आई थिंक विद्या बालन की एक फिल्म उन्होंने हाँ वो डायरेक्ट की थी, और स्क्रिप्टिंग प्रोसेस वो सारी चीजें चल रही हैं. आमिर को अप्रोच किया गया है, उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया है, बट कोई फॉर्मल कमिटमेंट अभी तक नहीं हुआ है. लेट्स सी, आई डोंट नो सुपर हीरोज का क्या चल रहा है अभी,
2: ट्रेंड चल रहा होगा शायद सुपर हीरो मूवीज का, तो इसी वजह से सभी इस यू नो इस फील्ड में जाकर अपना जो है या आजमाने की कोशिश कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग रहेगा, लेट्स सी. आमिर खान जो है काफ़ी पैशनेट होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये तो सबको पता है, पर ये सुपर हीरो मूवी उनके लिए कितना सही या गलत साबित होता है, दैट वुड बी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. बाय द वे, आपको याद है सुबह हमने बातें की थी अबाउट ड्राइविंग, एंड ड्राइविंग करते समय अगर टायर्ड फील करे तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे आपके उस टायर्डनेस को ओवरकम करने के लिए. तो उससे मेरे मन में ख्याल आया, वी आर अ वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ पीपल, जहाँ पर हमारे साथ आप एज लिसनर्स जुड़ते हैं और हम दो एज होस्ट ऑफ दिस शो. हम तो और भी बड़ी हो जाती है, बिकॉज अलग अलग शोज के अलग अलग लिसनर्स भी होते हैं. ऐसा भी नहीं होता कि जो ब्रेकफास्ट प्रोग्राम सुन रहा हो वो लंच बॉक्स सुनता हो, या जो लंच बॉक्स सुन रहे हो वो ब्रेकफास्ट सुनते हो. टाइमिंग का भी फ़र्क होता है ना. तो बहुत बार मैंने लोगों से सुना है कि आपका प्रोग्राम जब आता है, लाइक जानते हैं आपको, पर आपका जब प्रोग्राम आता है तो हम ये कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, काम पे नहीं होते हैं, या ड्राइविंग नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, नहीं सुन पाते. तो मैंने सोचा उस हिसाब से आज जानते हैं कि हमारे साथ किस किस प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं एज लिसनर्स.
3: अच्छा,
2: ऑफ कोर्स वी कांट सी अभी जितने लोग शायद अर्ली इन द मॉर्निंग सुन रहे थे, वो पता नहीं अभी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, पर इस घंटे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं राइट नाउ, अगर मेरी ये आवाज आप तक पहुंच रही है आज, चलिए बताइए किस फील्ड को, किस प्रोफेशन को आप बिलोंग करते हैं. और हमारे पास अपने नाम के साथ अपना मैसेज 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं.
3: इंटरेस्टिंग रहेगा टू सी किस प्रोफेशन के लोग सबसे ज्यादा, तो लोग राइट नाउ हमें सुन रहे हैं.
2: एग्जैक्टली, तो बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट, लाइक
3: क्योंकि मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मे बी
2: समवन एसोसिएटेड विद ड्राइविंग प्रोफेशन
3: वो शायद सबसे ज्यादा सुन रहे
2: हैं, दैट्स व्हाट आई फील. पर ये फीलिंग जो है ये किस हद तक सही है या गलत है ये खैर अभी पता चली जाएगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें होगा इस के बारे में डिटेल्स हासिल करने के लिए. तो जल्दी से हमारे पास टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ 15599, आपके लिए शाउट आउट भी करेंगे हम जरूर, और हमें बताइए कि आप किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं एज वी आर ट्राइंग टू डिपेक्ट कि कौन से प्रोफेशन के लोग हमें सबसे ज्यादा सुनते हैं. हमारे शो की टाइमिंग की वजह से हम इस सवाल को कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आस्किंग दिस, राइट. तो चलिए देखते हैं आप किस प्रोफेशन के हैं और कौन है जो फिलहाल हमें सुन रहे हैं. 26 मिनट्स आफ्टर 9 फोर नाउ. अब बारी है एक बड़े खूबसूरत गाने की जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं इन बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: तो आपके लिए हम लेकर आ रहे थे नेहा कक्कर और साथ में अरिजीत सिंह की आवाज में ये आज का हमारा चार्ट बस्टर, और थोड़ी देर बाद डेली राउंडअप जो है ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. बट बिफोर वी डू दैट, सवाल हमने पूछा था तो काफी लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे. आई एम काइंड ऑफ
1: सरप्राइज्ड. अच्छा,
0: क्योंकि जो प्रेडिक्शंस किए थे वो कुछ हद तक सही है बट नॉट लाइक 100% करेक्ट. सबसे पहला मैसेज आज हमारे पास जो आया था ये जगदीप जी की ओर से आया. इन्होंने कहा कि ये बाय प्रोफेशन कूरियर ड्राइवर है. निलेश ने कहा ट्रक ड्राइविंग करते हैं ये. फिर बिनाइफा का मैसेज आया, इन्होंने कहा अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट OCFO. और डोजा ऑपरेटर है मुनेश कुमार जी. फरजाना हेल्थ इंश्योरेंस अंडर राइटर है.
1: सलमा कूरियर चलाती है. गुड मॉर्निंग, आई एम जसजीत आहूजा, आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट इन ऑकलैंड. पूरा का पूरा पढ़ दूं?
0: एडवर्टाइज नहीं करेंगे जब तक तो नहीं पढ़ सकते हम ना. उसके अलावा मैनी का भी मैसेज आया है, इन्होंने कहा कि ये ट्रक ड्राइवर है बाय प्रोफेशन. और पोरस बिल्डर है और इंटीरियर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट है. और साथ में एक और एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग, प्लीज लेट अस नो हु ओन द सलमन आइलैंड ट्रिप और एटलीस्ट अनाउंस व्हेन इट विल बी ड्रोन. देयर इज नो टॉक अबाउट इट एनी मोर. थैंक्स, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर मैसेज. बट आज सुबह ही हमने ऑन द ब्रेकफास्ट शो अपडेट किया था, आई थिंक पिछले घंटे या 7 o'clock के अराउंड, कि फ्राइडे को ड्रो होगा और फ्राइडे को पता चलेगा हु द विनर इज. और ये जो टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु है ये किसने जीता है ये फ्राइडे को अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी एंट्रीज जो है ये फिल्टर हो रही हैं, एनालाइज हो रही हैं,
1: टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह चेक किए जा रहे हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: फरजाना मेनुकाउ से वर्क्स इन गवर्नमेंट एजेंसी स्लैश लॉ फर्म.
0: एक मैसेज आया है स्पेशली आपके लिए.
1: हाँ,
0: नमस्ते विजय भाई एंड पूजा जी. लुक्स लाइक विजय भाई हैज ब्लॉक्ड मी, लॉल. फिर लाफिंग इमोजी इन्होंने डाला हुआ है. एनीवेज, आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ यू गाइस फ्रॉम 6 a.m. to 10 a.m. प्रोफेशन इज सीनियर एवियोनिक्स टेक्नीशियन एट रॉकेट लैब. एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे, गॉड ब्लेस. अनिश ने ये मैसेज भेजा है. क्यों ब्लॉक किया आपने अनिश को और कहाँ पे ब्लॉक किया?
1: किधर ब्लॉक किया मैंने अनिश आपको?
0: इनको खुद ही नहीं पता अनिश. आई डोंट थिंक सो ही इज डन इट, या फिर इनको कोई आइडिया नहीं है.
1: मुझे तो पता नहीं मुझे ब्लॉक करना भी आता है कि नहीं.
0: हाँ, वो सबसे जरूरी सवाल है.
1: किधर ब्लॉक किया है वो बताओ, फिर मैं चेक करता हूँ
0: कि ब्लॉक किया भी है
1: कि कैसे ब्लॉक किया जाता है. आप ही पे ट्राई करूंगा मैं.
0: Good morning guys, I'm Wasim. I have a panel beating workshop. I listen to you guys on my way to drop kids to school. Then ye ek motor company jate hai jahan se gaadiyan pick up karte hai for repairs, and then all the way to his workshop jo ki East Tamaki mein hai. Inhone kaha hai ki on my way back to Manukau if I have to pick up more cars, so I always listen whenever I'm driving, inhone kaha hai.
1: आप वर्कशॉप में भी चालू कर लो वसीम, अच्छा रहेगा.
0: रेडियो होगा अगर आपके पास 104.2 FM पर. आप फ्रीक्वेंसी तलाश करके वहां पे प्ले कर सकते हैं, वो जस्ट ब्लूटूथ रोवा ऐप.
1: गुड मॉर्निंग विजय पूजा, ऑलवेज लिसनिंग टू हम, हैव अ ब्लेस्ड डे. राज AA के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, सो थैंक यू सो मच.
0: वेरी इंटरेस्टिंग. कहीं ना कहीं व्हाई आई सेड कि वी आर करेक्ट इज बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव टेक्स्टेड कि ड्राइविंग करते समय सुनते हैं या ड्राइविंग प्रोफेशन से रिलेटेड है. The others जो different profession से related है, we don't really know कि आप किस दौरान कैसे में सुनते हैं. Is it just when you're driving you're listening? But अगर आप चाहें आप भी अपने messages send कर सकते हैं. We are talking about the fields we are in, किस particular field में हम नौकरी करते हैं, किस profession को हम belong करते हैं, वो आप हमारे साथ share कीजिए. Because we are talking about listening to the breakfast show and according to what we were analyzing, हमें लगा कि ज़्यादातर people who are associated with driving field वो हमारे साथ जुड़ते होंगे ना. शो की टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टोल्ड अस जिससे भी मुलाकात हुई है. तो 5599 पर आप भी अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, नॉट फुल डिटेल्स, जस्ट कि किस फील्ड को आप बिलोंग करते हैं. थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंड अप.

0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की?
3: बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
11: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
0: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
13: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
14: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Tip Top Toppers or Jelly Tips, 6 to 10 pack, just $5 a pack. And Paseo King Size or Ultra Soft Luxury Long Roll 6 pack, just $5. Only at Woolworths. T's and C's apply.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: What's going on?
17: 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। डेली राउंड अप का वक्त है। क्राइस्टचर्च में आज तड़के सुबह लगी आग में एक घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। ये आग जो है सुबह 4 बजे के से पहले लगी थी, जिसके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। रोली एफ स्थित हुनहे में ये आग जो है लगी और पुलिस अभी आग के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि घटना के वक्त घर के अंदर कोई भी नहीं था।
18: दूसरी ओर कहा गया है कि फिलहाल पुलिस एक मामले की जांच कर रही है, जहां पर एक व्यक्ति ऑकलैंड में मिडलमो हॉस्पिटल पहुंचे विद अ गन शॉट वूंड, और ये कल रात की बात है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कैरन ब्राइट ने कहा है कि ये जो व्यक्ति है, ही वाज इंजर्ड, प्रेजेंटेड एट मिडलमो हॉस्पिटल लास्ट नाइट अनएक्सप्लेन्ड गन शॉट वूंड के साथ। उन्हें काफ़ी सीरियस इंजरीज आई हैं और वो अभी भी फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, और पुलिस जबकि इस मामले की जाँच कर रही है, तो दे आर डिटरमिन्ड टू फाइंड आउट फुल सर्कमस्टांसेस के एस टू क्या हुआ है और कौन रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी डिटेल्स हो ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, तो आप 105 नंबर के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं इस मामले को टू द पुलिस एंड हेल्प आउट इन इन्वेस्टिगेशन।
17: इसके अलावा नीली हाफ ऑफ न्यूजीलैंड के जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं, दे स्टिल हैव ए जीपी वैकेंसी। हालांकि जो सेक्टर है ये अब रिकवर कर रहा है, फ्रॉम ईयर्स ऑफ इंटेंस फाइनेंशियल एंड वर्कफोर्स प्रेशर स्टफ की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जिसमें जेन प्रो का जो लेटेस्ट एनुअल पल्स है उसमें ये पाया गया कि द प्रोपोर्शन ऑफ प्रैक्टिस विद जीपी वैकेंसीज 54% से कम होकर 47% हो गया है. नर्स वैकेंसीज भी कम हुई है फ्रॉम 23% टू 18%.
15: Breakfast show with Vijay and Pooja.
9: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
11: Let's go.
15: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
18: याद रहे कि हम आपके लिए प्रोग्राम्स जो है ये ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ज़रूर लेकर आते हैं. आप हमें सुन सकते हैं 104.2 एफएम पर अगर आप ऑकलैंड में हैं तो, या आउट ऑफ ऑकलैंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड हमारे साथ रोवा ऐप के ज़रिए आप जुड़ सकते हैं. और रोवा ऐप के बारे में बातें की तो बता दें, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, जिनमें म्यूज़िक स्टेशन हमारे जहाँ बैक टू बैक म्यूज़िक जो है ये आप सुन सकते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स. तो वहीं पर हमारा पॉडकास्ट जो है ये भी आपके लिए अवेलेबल है. इनफैक्ट ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट जहां हम बातें करते हैं अबाउट कुछ टॉपिक्स जो हमें लेकर काफ़ी यू नो रिलेटेबल हो, कंसर्निंग हो हमारी कम्युनिटी को लेकर, और आपके साथ भी डिस्कशन होती है ना इसके बारे में, तो उसके बिट्स एंड पीसेस ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट में आप जाकर जरूर सुन सकते हैं. इस लेटेस्ट एपिसोड में सोसाइटी मेजर्स सक्सेस फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज एंड व्हाई लिसनर्स आर रीडिफाइनिंग कि इसका एक्चुअल क्या मतलब है जब कोई कहता है कि अब आप सेटल हो चुके हैं, इसके बारे में कुछ बातें हमने की.
17: वहीं पर अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड में पब्लिक ट्रस्ट के एक ट्रस्टी तानिया पिंटो से सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं ऑन सम अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स लाइक विल्स, एस्टेट्स. आपकी जब आप इस दुनिया में नहीं रहते तो उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीजें जो है अगर आप सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें.
18: और फुल लिंक जो है इस पॉडकास्ट का ये आपको मिल जाएगा. फिलहाल हमारे पास कुछ और मैसेजेस आए हैं. उन्होंने कहा विजय भाई इनके my workers are from Sri Lanka. They don't understand Hindi. Ulta, I have to listen to Sri Lankan music. इन्होंने कहा है.
17: सिखा दो भाई. हिंदी सिखाना बहुत जरूरी है उनको.
18: आप थोड़ा थोड़ा सिखाओ उनको और थोड़ा थोड़ा उनका भी सीखो.
17: हाँ.
18: और दूसरी ओर इलेक्ट्रिशियन है ये by profession and listens while driving, लेकिन नाम नहीं भेजा इन्होंने. थैंक यू आपके मैसेज के लिए.
17: और अश्विन चंद कुरियर ड्राइवर ऑलवेज लिसनिंग टू यू गाइस. यू आर ऑसम. थैंक यू सो मच अश्विन. यू आर ऑसम.

0: द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ दिस आवर जो सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में आपके लिए दबंग फिल्म से हम लेकर आ रहे थे. फरजाना ने मैसेज किया वापस से, उन्होंने कहा नॉट श्योर इफ आई गॉट अ शाउट आउट, हैड टू टेक अ कॉल फ्रॉम अ क्लाइंट, लॉल. ये हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम, बट यस फरजाना, वी डिड गिव यू अ शाउट आउट. पर कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से आपको याद कर लेते. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो ये देने के लिए.
1: विशाल का मैसेज आया है, मॉर्निंग विजय भाई एंड पूजा जी, ऑलवेज लिसनिंग टू योर शोज, आई एम डूइंग रेसिडेंशियल क्लीनिंग वर्क. Thank you so much. Have a blessed day ahead. You also have a wonderful day, Vishal. Thank you so much. Aapke message ke liye. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
0: Oh my goodness.
1: ये दो बातें नहीं थी.
0: अपने अपने हेडफोन का वॉल्यूम कम कीजिए. आई हैव टू टीच यू लाइक इट्स अ रियली बैड थिंग कि अगर मुझे आपको सिखाना पड़े.
1: नहीं, आई एम डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम.
0: नो, द एटिक्विट्स यू हैव टू फॉलो इनसाइड द स्टूडियो.
1: अभी क्या है कि जब गाना चल रहा होता है तो मैं कुछ और कर रहा हूँ.
0: हाँ. नहीं, आप इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम पर एक काम कीजिए.
1: नहीं,
0: तीन चार चीजों
1: खत्म नहीं होगा काम ना.
0: तीन चार चीजों के पीछे भागेंगे तो कुछ भी नहीं होगा.
1: फिर पैशन खत्म हो जाएगा, प्रेशर शुरू हो जाएगा. आज की पहली बात
0: जी,
1: कोशिश तो कीजिए कोई तो फायदा होगा. कोशिश तो कीजिए कोई तो फायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से ज्यादा होगा.
0: क्या बात है भाई,
1: कोशिश करो भैया, अटेम्प्ट तो करो.
0: दूसरी बात,
1: आज की दूसरी बात अच्छी तरह से इसको सुने. सफर क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी हम घर में नहीं अपने दिमाग में कैद हो जाते हैं.
0: यप, वेरी ट्रू.
1: इसीलिए सफर जरूरी है. हिंदी सफर,
0: नॉट सफर, इंग्लिश वाला नहीं. चलिए इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की. आज आप सबने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. एक नई सुबह के साथ एक नए वीक की शुरुआत आपने हमारे साथ की, विच वी ट्रूली अप्रिशिएट. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. हम मिलेंगे आपसे अब कल ठीक सुबह 6 पर एक बार फिर, और द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए लेकर आएंगे. जाते जाते आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमेजिंग कॉम्बिनेशंस केके और सुनिधि चौहान की आवाज़ों को छोड़े जा रहे हैं, और एंजॉय कीजिएगा ये थ्रोबैक हमारी ओर से.

ये म्यूजिक सुनने में इतना मजा आता है ना, उसका मतलब लगता है पेप अप हो जाते हैं हम अच्छी तरह से. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू. स्टूडियो की घड़ी में 10:03 हो चुके हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज में. 12 तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. वैसे बताइए आपका वीकेंड कैसा गया? आई एम वेरी श्योर अच्छा ही गया होगा. बाय द वे, एक काउंट डाउन जो है मैं आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ कि हम का जो कीर्तन संग्रह है 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में होने वाला है, और रिकॉर्ड करने के लिए जो कलाकार हैं वो भी जुट चुके हैं. हमारी जो टीम है वेट कर रही है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा आपके लिए रेडी किया जाए. सो आइएगा, एंट्री बिल्कुल फ्री है, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. रिफ्रेशमेंट्स एंड कावा विल बी ऑन सेल. दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन प्राइजेस एज वेल. सो कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है, जहां 10 से 12 मंडे टू फ्राइडे मैं आपका साथ निभाती हूँ. वेलकम ऑन माई टाइम. बजाऊँ क्या? एक ऐसा दिवस, एक ऐसा दिन आ जाता है जहाँ पे गणेश जी की महिमा से हमारा जीवन और भी उजागर हो जाता है, और ऐसे में उनकी भक्ति से दूर होता है हर अंधियारा. तो जितने भी लोग आज गणपति का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगमन किया है आपने गणपति बप्पा का अपने घर पे या अपने मंदिर में, या जो भी आपकी आस्था है जिस तरह से, तो आप सबको हैप्पी गणपति डे मैं यही कह सकती हूँ. गणपति बप्पा मोरिया यही कह सकते हैं. और एक बहुत खूबसूरत श्लोक भी आता है, लेकिन रिश्ते और प्यार के विश्वास में मजबूत होते हैं. गणेश जी भी हमारे परिवार में इसी तरह से हर वक्त प्राथमिकता लेकर आ जाते हैं.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो मेरे साथ आज एक्सपर्ट अड्डा में आ चुकी हैं आशिमा जी। एंड मैंने सोचा बड़े दिन हो गए, ये बहुत शिकायत करती है कि तुम मेरे को कॉल करती नहीं हो, हमेशा रात से ही बात करती हो, तो मैंने आज इनका दूर कर दिया दुख। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आशिमा?
2: गुड मॉर्निंग जी। दुख आपने दूर करा, जरूरी बात है काशिका जी। मेन बात पता है क्या होती है? हाँ। आप मेरे को समझ आ गई आपकी स्ट्रेटेजी। रात जब कोर्ट में चला जाता है आप मुझे पकड़ लेते हो, ऐनी मुझे कह रहे हो मेरा दुख दूर कर दिया, बस आप ध्यान दो।
1: मतलब ये बात बतानी जरूरी थी तुम्हें?
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: नहीं, अब मैं अगली बार एकदम रैंडम कॉल करूंगी और मैं उनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि क्या करे ना कि लीगल असिस्टेंट का जब नाम आता है मैंने अनाउंस, तो राज्य के लिए क्वेश्चन आने लग जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई हैव टू कॉल हिम। आज मैंने अनाउंस शायद नहीं किया होगा और मैं मुझे लगता है मैं बतियाने लग गई, तो फिर क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कहा चलो आज तुमसे ही बातें कर लेती हूँ फिर।
2: नहीं नहीं, अच्छा वो क्वेश्चन आ जाता तो आज वो आ भी नहीं सकते थे। आज उनकी वो आईपीटी अपील कोई है तो अच्छा। इसके लिए वो कोर्ट गए हुए हैं तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है पूरा दिन, तो इसीलिए मैं हाजिर हो गई, आपने मुझे फोन करा आने।
1: अरे वाह, तो बताओ
2: बताएं क्या करें,
1: क्या चल रहा है?
2: चल क्या रहा है, मार्केट बहुत ही वल्नरेबल है। हाँ। बट अगर फर्स्ट होम बायर हो तो ले लो, ये बहुत बढ़िया मार्केट है। आपने बहुत सारे मॉर्गेज ब्रोकर से सुना ही होगा, अपने रेडियो पे भी कही उनसे कि ओसीआर का ऊपर जा रहा है, तो क्या करें, कब करें, कैसे करें। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। इफ यू हैव मनी प्लीज आप अभी बाय करो घर, बिकॉज क्या होता है ये वाला ना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थोड़ा ट्रेंड भी रहता है हमेशा। हाँ। ये थोड़ा पीक टाइम शुरू हो जाता है, जैसे होता है ना बिजनेस का सीजन, तो ये प्रॉपर्टी मार्केट का सीजन है, तो इस टाइम पे क्या होता है बहुत सारे सेलर्स भी आ जाते हैं मार्केट में टू सेल देयर प्रॉपर्टीज, और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं कि कुछ ले लेते हैं। अब इससे पहले कि आगे कोई और झटका लगे, कोई और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या कुछ है, अगर आपने सोचा है कि आपको लेनी है प्रॉपर्टी, तो आप अगले साल तक वेट ना करो, इस साल आप ले लो, ये अच्छा। बहुत सही टाइम है। इस टाइम बहुत प्रॉपर्टीज बाहर हैं आउट देयर, आपके पास बहुत अच्छी बार्गेनिंग पावर भी है इस टाइम, बिकॉज इट इज अ बायर्स मार्केट। आपने करना क्या है, जब आपको अच्छी लगे कोई प्रॉपर्टी, आपने अपने हाथ में बैंक अप्रूवल, प्री अप्रूवल जरूर रखना, उसके बाद अग्रीमेंट साइन करने जब जाने लगो तो हमें याद कर लेना, बिकॉज उस अग्रीमेंट में आपने कंडीशंस डालनी है। हाँ। और जो कंडीशंस डालनी है जो आपके फेवर में होनी है वो हमने लॉयर ने ही आपको बतानी है। यस, एजेंट्स विल बी देयर टू हेल्प यू टू आउटलाइन द बेसिक कंडीशंस जो सबको पता है कि फाइनेंस जरूर डालनी चाहिए, बिल्डिंग रिपोर्ट जरूर डालनी चाहिए, लिम रिपोर्ट कंडीशन जरूर डालनी चाहिए, वो आप डालो 100% डालो। 10 वर्किंग डेज का आप टाइम लो, उसमें लिखो कि 10 वर्किंग डेज की कंडीशन हमने डालनी ही है। बट जहां पर लॉयर्स की बात आती है, जहां पर मुझे है कि साइन करने से पहले आप मुझे दिखाओ, वो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, बिकॉज उस अग्रीमेंट में फर्दर टर्म्स ऑफ सेल का एक सेक्शन होता है जिसमें कितनी बार ऐसी टर्म्स लिखी जाती हैं जो लीगली यू वोंट अंडरस्टैंड एज अ कॉमन पर्सन, बिकॉज उसमें बहुत सारे लीगल जागन्स यूज होते हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा हाँ सब ठीक ही होगा, चलो साइन कर दो। हाँ। तो वो साइन एक बार आपने कर दिया

0: गया तो देन देयर इज नो यू टर्न. तो वो हमें आपको फिर प्रोटेक्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है. तो इसीलिए बिफोर यू साइन आप हमें दिखाओ ताकि मैं वो फर्दर टर्म्स पढ़ के आपको समझा सकूं कि आप ये चीज इस प्रॉपर्टी में है, ये चीज सेलर बोल रहा है, तो अब आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो विद दिस प्रॉपर्टी. सो टू गाइड यू लीगली इज व्हाट आवर जॉब इज. तो आप जरूर जाओ बाय करो प्रॉपर्टी, बट प्लीज साइन करने से पहले आप हमें एक बार दिखा दो सो दैट वी कैन हेल्प यू टू डू द मेक द राइट डिसीजन.
1: एब्सोल्युटली. एंड द मैजिक नंबर भी आप बता ही डालिए इस चक्कर में.
0: अच्छा जी, 09279439 9 to 5:30 ऑफिस हमारा खुला है. आप हमें फोन करो, आप हमारे ऑफिस आ जाओ, बेशक वॉक इन नो प्रॉब्लम. जब भी आओ अपना पासपोर्ट साथ ले आना, क्योंकि AML रिक्वायरमेंट होती है तो पासपोर्ट चाहिए होता है. सो वी कैन सर्टिफाई योर आईडी और बस देन वी कैन जस्ट गाइड यू देयर और फिर वहीं से ही आपकी जर्नी शुरू. हम आपके साथ हैंड होल्डिंग के लिए तैयार बैठे.
1: ओह हाउ स्वीट, दिस इज सो नाइस एंड सो पर्सनलाइज्ड. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके आशिमा. आई विल कीप कॉलिंग यू ऐसे रैंडमली, डोंट वरी. ओके
0: है ना, ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम.
1: टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.
0: चलो, यू टेक केयर टू.
1: बाय.
0: थैंक्स, बाय बाय.
2: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
4: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
5: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.

0: ऑफिस शट आउट की बात करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास अब ये बड़े दिनों बाद आप आई हैं एंड टीना फ्रॉम बगार किचन, हाउ आर यू? एंड आपने मुझे यहाँ टेक्स्ट किया है कि आप गाने सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है और गणपति जी के लड्डू बना रही हैं, क्या बात है, एक लड्डू मेरी ओर से खा लेना, मैं इतना ही कह सकती हूँ। बाय द वे, ऐसा कुछ होता है ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का अपनापन हम तक नज़र आता है। अच्छा, ड्रीम डायरी आने वाला है, ड्रीम डायरी के बारे में आपको बताना है, कोई ड्रीम ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे इंटरप्रेट करना है आपके लिए, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट एज वेल। साथ साथ सिक्स वर्ड स्टोरी थोड़ी देर बाद अगले घंटे पर होगी और रिसाइकिल में इस बार हम कुछ और ही बात करने वाले हैं। खाना बच जाता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, चलो उसी के बारे में बातें करेंगे लेकिन अगले घंटे में।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: एक बात बताऊं, इस साल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो काफी सारी फिल्म्स आई हैं जो अडल्ट फिल्म्स थी, जैसे कि धुरंधर द रिवेंज, मिर्जापुर, कॉकटेल 2, बंटवारा और 1947 ओ रोमियो, 80 और फिर बंदर, और ये कुछ रिलीजेस जो हैं ए ग्रेड के लिए, ए सर्टिफिकेट के लिए तैयार हैं। दायरा, जिसमें करीना कपूर नजर आने वाली हैं और ये फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, इसे सेंट्रल CBFC ने जो है ए रेटिंग दी है। इस फिल्म की जो लेंथ है लगभग 2 घंटे 23 मिनट के करीब है। इन द वर्ड दायरा, यू नो, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट मेघना गुलजार की इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है और करीना कपूर की 10th फिल्म है जहाँ पर इनको अडल्ट फिल्म के लिए, उनके बाकी फिल्मों में 2001 में अजनबी, फिर चमेली 2003 में, देव 2004, ओंकारा 2006, कुर्बान 2009, हीरोइन 2012, उड़ता पंजाब 2016, वीरे दी वेडिंग 2018 एंड द बकिंगहम मर्डर 2024। ये ऐसी ही फिल्म उठाती हैं, हाँ बात करनी पड़ेगी इनके साथ, मैसेज देना पड़ेगा, है कि नहीं?

0: ईट बेटर लिव बेटर, बट अभी अभी एक रिपोर्ट जो आई है उसके ज़रिए पता चला, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक आदमी जो है ओकलैंड के मिडलमोर हॉस्पिटल में एक अनएक्सप्लेन्ड गन शॉट वूंड के साथ पहुंचे, और जो डिटेक्टिव है उन्होंने बताया कि जो इंजर्ड मैन है ही वॉज एट द मिडलमोर हॉस्पिटल, बड़ी सीरियस इंजरीज हैं, ही स्टिल रिमेन्स इन द हॉस्पिटल, इंक्वायरीज आर अंडर वे, और ये सर्कमस्टांसिस अभी तक कुछ पता नहीं चल रही कि क्या है, बट अगर आप में से किसी को कुछ खबर है तो डेफिनेटली आप बताइए ज़रूर। लेकिन इसके अलावा द पोस्ट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने बताया कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हो सकता है फेल हों अंडर द गवर्नमेंट्स प्लान, जहां वो रिप्लेस कर रहे हैं NCEA के विद अ न्यू क्वालिफिकेशन। उन्होंने ये भी बताया ये कॉस्ट जो है स्कूल्स के लिए जो है ये बढ़ जाएगा अप टू 58 मिलियन इन इंसिडेंटल कॉस्ट सच एज ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा स्टाफिंग वगैरह वगैरह। तो अब कहा ये जा रहा है, इनके प्रेसिडेंट ने बताया है कि प्रोबेबली बच्चे फेल ज़्यादा होंगे, पहले इनिशियली द बच्चे वुड कम आउट नाइसली, मगर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है। और उन्होंने बताया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो नई क्वालिफिकेशन के लिए बढ़ के करीब 49 मिलियन से लेकर 58 मिलियन तक जा सकता है अक्रॉस 487 स्कूल्स। और ये जो मॉडल है इसमें जो बच्चों टीचर्स के लिए उनकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटीज़ लीडरशिप टाइम मैनेजिंग द ट्रांजिशन, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। But yes, this has been a major concern and thought that we all should know also about it.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain, 100% tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour, that's a massive acceleration.
4: That is very, that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration, yeah.
4: Amazing acceleration,
3: this
4: record,
3: is my fancy English. That's a very...
4: Aray, hota hai, sab chalta hai. Aadhi neend mein hoon main.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स Reliance Ventilation System से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट Reliance Ventilation System ऑन 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
12: Online person, phone person, or I want to speak to a real person. MTF Finance gets it. You can apply online, give them a call, or visit one of their 55 local teams around New Zealand. And because MTF knows finance isn't one size fits all, they'll talk about it the way that works for you. However you'd like to talk about your next loan, MTF will meet you there. Search MTF Finance today. Lending criteria and checks, terms, conditions and fees apply. See mtf.co.nz/terms. You're gonna see me.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: I can totally understand जब आप ये बात करते हैं कि आपको किस तरह से ड्रीम्स में गणपति जी आए, एंड दिस इज समथिंग विच ऑफ कोर्स वी ऑल नो विघ्नहर्ता है वो, एंड उनको देखने का मतलब है जो करंट आपके ब्लॉकेजेस चल रहे हैं रिलेशनशिप्स या पर्सनल लाइफ में या करियर में, वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। दे कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश चैप्टर, न्यू वेंचर, और ये एक मेजर लाइफ का ट्रांजिशन भी हो सकता है। अब पता है गणपति जी कितने विद्वान थे, और उनकी जो प्रेजेंस है आपकी ड्रीम के अंदर, ये तो एक डिवाइन गाइडेंस ही आपको मिलती है। और साथ साथ एक सक्सेस जो आपका आने वाला होता है, और अपने आप को अगर आप देखते हैं कि वो आप उन्हें प्रे कर रहे हैं, या आप मूर्ति के साथ, स्टैचू जो भी है, आइडल है, जो आप उनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं पूजा करते हुए, इट सिग्निफाइज कि आपकी स्पिरिचुअली आप कितने ग्राउंडेड हैं, आप पीसफुल हैं, और फिर आपका एक फेथ है जो रिन्यू हो रहा है. इजंट दैट एज इंटरेस्टिंग, एज ब्यूटिफुल एज अ फीलिंग लाइक दिस? थैंक यू सो मच. यू नो, आप लोगों से जब बात करती हूँ तब मैं खुद उस चीज़ पे रिसर्च करने लग जाती हूँ, एंड देन व्हेन आई कम अप टू अ कंक्लूजन आई सेड वाओ, मतलब इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, उसका मीनिंग हमें नहीं पता था. बट थैंक यू वंस अगेन 2138, एंड थैंक यू देवांग फ्रॉम स्टार प्रॉपर्टी. आप मुझे सुन रहे हैं, आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल. ऐसा होता है ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अंडर द वेदर हो जाते हैं, मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो वी ऑल शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. आई होप यू आर डूइंग फाइन. This song is coming out to you and your beloved wife.
1: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI. Shining.

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती कि मैंने ये पर्टिकुलर फिल्म जाके एक लिटरली बहुत ही छोटे से कस्बे में देखी थी. एंड वी वर ऑन अ हॉलीडे महाबलेश्वर में और ये फिल्म उस समय रिलीज़ हुई थी खामोशी. और माय डॉटर बीइंग अ बिग फैन ऑफ सलमान खान, इन्होंने कहा मुझे तो ये पिक्चर आज ही देखनी है. अब भाई क्या करें, देखना था, मजबूरी थी, जाना ही पड़ा. और फिर हम पहुँचे वहाँ पिक्चर देखने के लिए और बाद में रिक्शा में बैठ के गए. बहुत मज़ा आया. पिक्चर तो ऑफकोर्स टर्न्ड आउट टू बी ब्यूटीफुल, गाने उससे भी खूबसूरत एंड मेमोरी कमाल की. और फिल्म जब देखने गए तो पता नहीं था कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे इतने मच्छर और खटमल वो भी मिलने वाले हैं. बट स्टिल मेमोरीज आर मेमोरीज़.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: It feels like 16 degrees and the highs of 17, overnight temperature of 9. आज का forecast बताया जा रहा है, आसमान पे बादल हैं, शायद शाम के समय बारिश पड़ सकती है, 6:11 पर sunset बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आ रही है.
3: My time with Kashika.
1: स्टूडियो की घड़ी में इस समय 11:03 हो चुके हैं. आपका साथ निभा रही हूँ मैं काशिका, ऑल द वे अप टिल मिड डे. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मैं आपके साथ मुझे लगता है शेयर करना चाहिए. तो भाई, एज आई प्रोमिस्ड, आई गॉट समथिंग विच इज़ घर में राजमा बनते हैं, उसके बाद राजमा घर में बच जाते हैं, फिर क्या करें क्या ना करें. चलो ठीक है, इसी के बारे में कुछ बातचीत हम करने वाले हैं. ऑफकोर्स 6 वर्ड की स्टोरी आपकी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आपको लगता है रिलीजियस, एक क्योंकि आज भी और कल भी कहा जा रहा है, 2 दिन में एक संघर्ष है कि कौन से दिन गणेश जी की चतुर्थी है, कौन से दिन चतुर्थी मनाई जाने वाली है. तो ये कुछ पंडित जो हैं डिफरेंट मंदिरों में अलग अलग बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आज है, कुछ कह रहे हैं कल कर रहे हैं. कोई आपकी कोई ऐसी एक डिवाइन 6 वर्ड स्टोरी है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं 5599 पे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट. बातचीत तो मैं कर ही रही थी, लेकिन चलिए गाना बजाने का टाइम ही आ चला है.
0: बचाओ क्या?
1: वैसे कहाँ से सुन रहे हैं, कौन सी जगह से हमें सुन रहे हैं आप, हमारे म्यूजिक स्टेशंस को भी रोवा ऐप के जरिए सुन रहे होंगे. अब रिवाइंड, आपको पुराने गाने सुनने हैं, 80s के जूक बॉक्स को सुनना है, फिजी कीर्तन या फिजी कीर्तन संग्रह, पंजाबी हिट्स या फिर राहत फतेह अली खान के गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो रोवा ऐप के जरिए आप जब हमें सुन ही रहे हैं डेफिनेटली सुन सकते हैं. आगे भी बातें करेंगे इसके बारे में.

0: Sister. एक बात तो है कि इंडिया वुमन आर बैक ऑन टॉप ऑफ एशिया. हरमन प्रीत जो है, इन्होंने एक बहुत ही कमांडिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और श्रीलंका को बीट किया बाय 72 runs. और साथ साथ वुमेन्स T20 एशिया कप जो है, इसके फाइनल में भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने ये क्राउन जो है फिर से हासिल किया है. ऑल राइट, आई हैव सम एक्स्ट्रा न्यूज़ फॉर यू. जहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जितने लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो फेबियन कुल्थार्ड ये जो हैं, इन्होंने अपने फर्स्ट 500 विन में अलॉन्ग विद हिज मेट शाज मोस्टर्ट के साथ ये ड्रीम पूरा किया है, जहाँ पर इन्होंने ये चैम्पियनशिप जीत ली है. एंड दिस इज़ सच अ प्राउड मोमेंट. एंड दिस इज़ एट द बैथर्स्ट, जहाँ पर एक अनबिलीवेबल इनकी ड्राइव जो थी इन द वर्स्ट कंडीशंस. और ये कीवी वेटरन जो थे, इन्होंने क्या कमाल का एक नियर परफेक्ट ट्यून किया फॉर द बाथर्स्ट 1000. सो बिग कंग्रेचुलेशन, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द कीवीज हेयर एज वेल. और ये पता ही है कि ये जो एक ड्रामा था, किस तरह से खुला, किस तरह से चला, लेकिन यस, ये बाय लैप 25 जो रेंज जो थी वो काफ़ी विजिबल हो गई थी, लेकिन मल्टीपल कार्स जो थी वो इतनी शायद सेफ्टी उस पर नहीं पहुंच पाई थी. बट एट दैट स्टेज कुल्थार्ड जो थे, ही क्लाइम्ड अप टू द थर्ड आफ्टर ही एंड मोस्टर्ट जो है, ही स्टार्टेड फ्रॉम ग्रिड 11. तो ये वेट वेदर स्पेशलिस्ट अपने आप को मानते थे, और ख़ास तौर पे इनको लगता था कि ऑफकोर्स कीवी कंडीशंस आर सच दैट ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक खिताब जो है इन्होंने जीता. कॉन्ग्रेट्स. एंड नाउ माय 6 वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट.
1: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.
2: पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए तेरा.

0: Idea. Streaming on Rover.
1: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
2: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months, 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz

0: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz.
2: You know Elite Bathroom Wear? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range, curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroom Wear. Kiwi owned and operated. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
4: Wow, I love your six word story definitely. And इन्होंने लिख के भेजा है 7545, नाम लिख दो please, अच्छा रहेगा. Skipped their meal, so I succeeded. Skipped their meals, so I succeeded. इस पूरे हफ्ते का मेरा एक सिक्स वर्ड स्टोरी का थीम जो है वो डिवाइन रहने वाला है. So skipped their meals, so I succeeded. अब ये इट कुड बी probably फॉर द पेरेंट्स, इट कुड प्रॉबेबली फॉर समथिंग एल्स, बट बहुत सारा डीप मीनिंग होगा इसके पीछे आई एम श्योर. एंड देर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस आई कैन प्रॉबेबली यू नो फील ओवर देर. लेकिन कोई और अगर आप में से बताना चाहता है कोई सिक्स वर्ड स्टोरी तो डेफिनेटली आई वुड बी वेरी वेरी कीन. बाय द वे, जो वानुआटू जाने के लिए हमारा एक ड्रॉ होगा वो अब बस थोड़ी देर बाद हो जाएगा शायद. आई एम वेरी श्योर ये पूजा एंड विजय ने या तो कर ही दिया होगा. आई एम नॉट टू अवेयर बिकॉज आई वॉज अवे इन अ मीटिंग, बट यू विल बी गेटिंग द अपडेट सून.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
4: पूजा विजय की बात करें तो बियॉन्ड द डेट व्हाट डज सक्सेसफुल सक्सेस एक्चुअली मीन. एक सोसाइटी को मेजर किया है फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज, व्हाई शुड लिसनर्स रीडिफाइन द वर्ड सेटल्ड. तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए बीएफ लिख के भेजिए 5599 पर.

0: Klassiker.
1: Boah.
2: Hau.
1: An Gott.
3: We all are in love with animals, aren't we? और एक लेपर्ड सील ने बहुत सारे क्राउड को वेलिंगटन में दो हफ्ते पहले अट्रैक्ट किया था, जहाँ पिटोनी बीच पर उनको मरा हुआ पाया गया था. हंड्रेड्स वर देयर, जहाँ पे उन्होंने उसको यू नो लेपर्ड सील की फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की. डॉग वर्कर्स, फोटोग्राफर्स, फैमिलीज, और उन्होंने देखा. लेकिन ये 3 मीटर लॉन्ग जो थी, ये हट रिवर के आसपास सैटरडे के आफ्टरनून को पाई गई थी. और साथ साथ इतना दुख होता है जब यू नो आप देखते हैं कि शायद वो क्या रीज़न रहा होगा कि वो शोर पर आ गई और क्या हुआ. ये जो लेपर्ड सील्स होती हैं, दे आर प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड टू अंटार्कटिका, और उसके सराउंडिंग जो है आइस बहुत सारी होती है, एंड दैट इज़ हाउ दे सर्वाइव. और ये बहुत कम है नंबर्स में सदर्न ओशन में, लेकिन न्यूजीलैंड में हमेशा पाई जाती हैं. अब कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं न्यूजीलैंड के वाटर्स में रह जाती हैं फॉर मोर देन अ ईयर और सो, बट उसके बाद नहीं. तो मे बी दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स. एंड थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, आपने बताया. एंड जब इस तरह की बातें पता चलती हैं ना, तो और दुख होने लग जाता है. बट यस, इंटरेस्टिंग इजंट इट टू सी दैट हमारे अपने शोर्स पर कितनी सारी, अभी कुछ दिन पहले आई थिंक कितनी बड़े साइज की वेल नजर आई थी, इजंट इट.
4: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
6: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा.
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
8: हेलो एवरीबॉडी.
4: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better.

0: आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है, हमारे घर में हम लोग राजमा ज़रूर बनाते हैं। अब जब राजमा बनाते हैं तो राजमा का पराठा कैसा रहेगा? अब राजमा का पराठा बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। देखो, ऑलरेडी आप कुछ समझ में आ गए, लेकिन आइडिया तो चाहिए था ना कोई देने वाला, मैंने तो आइडिया आपको दे दिया। तो ये जो आपके राजमा के जो किडनी बीन्स होते हैं, इनको अच्छी तरह मैश कर लीजिएगा और उसको फिर आटे के साथ और कुछ मसाले डालने के बाद आपको उसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद उसको बस आप राजमा का इमीडिएटली आप उसका पराठा बना सकते हैं। हियर यू गो, खलास हो गया काम आपका, एकदम से ये तैयार हो चुका है। भाई ऐसी चीज़ें जब मिलती हैं, जब आपको सुनने को मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए फिर इसी नोट पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गणपति बप्पा आए हैं माता पिता के चरणों में, जिन्होंने अपना ब्रह्मांड देख पाया, मैं चाहती हूँ कि भाई हमारी जो आज की जनरेशन है डेफिनेटली इस बात को ज़रूर समझे, क्योंकि एक ही चीज़ है जो हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे सभी के होने चाहिए जैसे गणपति बप्पा। उन्होंने जब उनसे कहा गया ब्रह्मांड क्या है तो उन्होंने आसपास ही घूम डाले थे अपने माता पिता के। तो भाई ऐसा ही एक शिक्षा हम चाहते हैं कि गणपति बप्पा के फेस्टिवल में आप जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी उस बात को ज़रूर समझें। तो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है दिन त्यौहार का, गणपति बप्पा का। और ऐसे में आप जितने भी लोग हैं, चाहे कहीं से भी सुन रहे हैं, आपको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ सेइंग दिस कि आने वाला हफ्ता आपके लिए जोरदार, दमदार और शानदार बना रहे। Look after yourselves. Ketan coming up next.